बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: से 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: सुबह तक का टाइम है,
2: मेरे पैसे वापस कर। पैसे
3: तेरे को शर्म नहीं आई माँ के कंगन गिरवी रखते हुए?
2: मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो तेरे घर को आग लगा दूंगा।
4: अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।
5: रुको रुको बेटा।
4: अरे बाबा कहाँ से आ गया, जल्दी कूदना पड़ेगा।
5: क्या हुआ बेटा?
4: बाबा जी, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में मैंने कर्ज ले लिया और इस कर्ज ने मुझे बर्बाद कर दिया। बाबा जी मैं हार गया, बाबा जी मैं हार गया।
5: हार गया? अरे हारे का सहारा ही तो है श्री श्याम जी।
6: श्याम जी?
5: हाँ हाँ श्याम जी, ये हैं हमारे श्री खाटू श्याम जी।

0: पर बाबा। बाबा जी, बाबा जी, भैया ये खाटू श्याम जी कहाँ आएगा?
1: अच्छा खाटू श्याम जी जनाब को यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर है।
0: 500-600 किलोमीटर दूर?
1: हाँ
2: सीधे चले जाओ,
1: सीधे।

0: भाई कहाँ जा रहे हो?
1: खाटू श्याम जी जा रहे
0: हैं। चलो रास्ते में छोड़ देता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ।
2: आ जाओ भाई आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा रास्ते में, मैं भी जा रहा हूँ। आ जाओ

0: भाई जी देखो दर्शन भी हो गए बाबा जी के, अब चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें।
1: बाबा जी अब तो मेरा घर भी यही है, सब कुछ यही है।
0: चलो अब क्या बोल सकता हूँ तुम्हें, जैसे श्याम जी की मर्जी। ठीक है फिर मैं चलता हूँ।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को UDIS यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है।

0: श्रीकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय यूपी टीईटी की समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111

धन पायो। सुबह सुबह आपसे मिलना था, इसलिए मैंने सोचा एक काजू कतली वाला गाना चला दूं। आज उनसे मिलना है, मतलब आपसे मिलना है यार। सुप्रभात, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। 8:18 का समय हो रहा है स्टेशन क्लॉक में। आज वेंसडे का दिन है, आज खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, आज मीठा है खाना, आज पहली तारीख है, आज 1 जुलाई हो गई है। आज के दिन की ढेरों मंगल शुभकामनाएं। मौसम बहुत ही औसम है आज का। इस औसम वाले मौसम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल करते हैं आपका, आप ही के फेवरेट रेडियो स्टेशन पे FM मुरादाबाद सुन रहे हैं आप, मतलब आपके शहर का अपना देसी रेडियो। दोस्तों कहते हैं जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो कल के बारे में ज्यादा नहीं सोचने का, आज का बहुत ही खूबसूरत दिन है, इस दिन को सेलिब्रेट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि आज का ये जो दिन मिला है ना आपको, ये वो सब कुछ करने के लिए मिला है जो एक्चुअली आप चाहते हैं ना। तो आज के दिन को जो है अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। बस यही कहना चाहता हूँ कि जो आपने करना है उसको आप ना लिखना भी शुरू कीजिए, क्योंकि जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं। बहुत ही प्यारा सा मौसम है, सुहाना सुहाना मौसम है, भीनी भीनी बारिश हो रही है, चारों तरफ माहौल एकदम भरा भरा है, लग रहा है कि जैसे सावन ने दस्तक दे दी है, मॉनसून ने दस्तक दे दी है। श्रोताओं और देखिए, सन 2026 के जो है 6 महीने तो निकल गए हैं और अभी 6 महीने बाकी हैं, तो इन 6 महीनों को हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना है आपके साथ, मेरे साथ, और हम खुशी के साथ इन 6 मंथ को और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। जो हमारे रेजोल्यूशन है उन पे भी हम डेफिनेटली काम करेंगे यार। 8:20 हो गए हैं और मैं अभी आपको एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन जो है कमाल की देने वाला हूँ, एक बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने वाला हूँ फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, आज जो है ना शुभ भूमि पूजन समारोह होने वाला है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं और आपका जो फैमिली है डेफिनेटली उनके लिए भी एक बहुत ही हैपनिंग चीज आज मुरादाबाद में होने वाली है, तो जिसके बारे में मुझे बात करना तो डेफिनेटली बनता है। बिल्कुल, तो भैया आपके और आपके परिवार के लिए एक नए प्रीमियम फर्स्ट प्रोजेक्ट के शुभ आरंभ का जो है आज बहुत ही खूबसूरत सा भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसकी एक भूमि पूजन समारोह है। और आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड किस चीज की शुभ भूमि पूजन समारोह की मैं बात कर रहा हूँ, तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो बहुत ही खूबसूरत सी एक ऐसी चीज जिसके विषय में मुझे लगता है कि आपको बताना जरूरी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि डेफिनेटली मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा। एक छोटा सा हल्का सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। मैंने हाई और वाइब दोनों आपको बता दिए यहाँ पर, अब आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा स्पेशल होने वाला है, तो थोड़ा सा इंतजार करो, मैं जल्दी से आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। आप कहीं मत जाओ, सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे बिंदास मॉर्निंग। बस अभी मिलते हैं हम इसी स्टेशन पे, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: हेलो, वेलकम बैक है जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कारम। मौसम बहुत ही औसम है और इस औसम वाले मौसम में आप गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा बढ़िया बढ़िया ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, चलो बहुत ही अच्छी बात है। इसी बात पे मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन भी लेकर आया हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, एंड जिसके बारे में बात करना तो बनता है आज की मॉर्निंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। आज वेंसडे की मॉर्निंग है, 1 जुलाई की तारीख है और 1 जुलाई अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। आज हमारे डॉक्टर्स को शाउट आउट देने का दिन है, उनको सल्यूट करने का दिन है। एग्जैक्टली आज डॉक्टर डे मनाया जाता है, इसके अलावा CA डे मनाया जाता है और भी बहुत सारे स्पेशल डेज हैं। आज जोक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो तमाम सारी बातें हैं आज के दिन के बारे में जो डेफिनेटली आपको पता लगेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ एक बहुत ही कमाल की चीज़ जो मुरादाबाद में आज हो रही है। एग्जैक्टली वेंसडे मॉर्निंग है, आरजे आनंद को सुन रहे हैं आप, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपके शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज FM मुरादाबाद। आगे बढ़ते हैं और क्या हैपनिंग चीज आज मुरादाबाद में हो रही है उसके बारे में बात करता हूं। तो इन्फिनिटी रेजिडेंसी बाय इमेज ग्रुप्स जो है आज शुभ भूमि पूजन समारोह जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब आज इनके प्रीमियम फ्लैट्स प्रोजेक्ट की भूमि पूजन समारोह है और ये एक बहुत ही अल्टीमेट चीज जो है आज होने वाली, जिसकी जो है शुरुआत हो रही है, इमेज प्रीमियम लिविंग की शुरुआत हो रही है। बेसिकली प्रीमियम फ्लैट्स प्रोजेक्ट का जो आज शुभ भूमि पूजन, अगर आप इमेज के इस प्रोजेक्ट में एनरोल करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप भी रहना चाहते हैं सोसाइटी में, आपको भी लगता है कि यार बिल्कुल मुझे तो यहाँ पे आना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इमेज की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड बहुत ही अल्टीमेट चीज़ जो है आज हमारे मुरादाबाद में हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये हैपनिंग वाइब तो आपको डेफिनेटली बतानी चाहिए। आज 1 जुलाई 2026 दिस इज वेंसडे मॉर्निंग, 8:30 बजे से पूजा जो है शुरू हो जाएगी और ये जो इनका लोकेशन रहेगा वो है कार्ट रोड रिंग रोड से पहले मुरादाबाद में। तो इस शुभ अवसर पर आपकी गरिमामयी उपस्थिति मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो भैया आइए इस नई शुरुआत के साक्षी बने और हमारे साथ इस सुनहरे सफर का हिस्सा बने। तो इमेज प्रीमियम लिविंग बहुत ही अमेजिंग, एक बेहतरीन कह सकते हैं कि वाइब जो अपने शहर को मिलने वाली है, और मुझे लगता है कि जब अच्छा अपने सपनों का घर मिल जाए तो फिर इससे अच्छी चीज़ और क्या ही हो सकती है यार। सो बस यही आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार क्या स्पेशल चल रहा है और मुरादाबाद में जो भी स्पेशल चीज़ें होती हैं ना वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। इन्फिनिटी रेजिडेंसी बाय इमेज ग्रुप आज ऑर्गेनाइज कर रहा है शुभ भूमि पूजन समारोह, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बहुत ही अल्टीमेट एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मुरादाबाद में होने जा रही है, तो मुझे लगा आपको डेफिनेटली बतानी चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वेंसडे की सुबह, आनंद को सुन रहे हैं आप ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चलो जी अभी मिलता हूँ मैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ऐसे ही अपना जो साथ है वो बनाए रखिए आरजे आनंद के साथ, थोड़ी सी देर में आई विल बी राइट बैक। अभी कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, कुछ अच्छे गाने कुछ अच्छी कॉन्वर्सेशन आप आगे भी सुनेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल मैं लेता हूँ, अभी जाने की इजाजत नहीं ले रहा हूँ यार, मैं अभी म्यूजिकल ब्रेक पे जा रहा हूँ। आई मीन से एक म्यूजिकल ब्रेक, देन उसके बाद वी कम बैक, डोंट गो एनी वे। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, चिपके रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। आज का मौसम इतना औसम है, ये गाना तो बनता है ब्रो। Have a great morning.

0: प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
8: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
7: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org
8: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
7: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
8: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
7: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
8: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
7: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
8: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
7: EKCC साख से समृद्धि।
8: नियम और शर्तें लागू।
9: और बहुत ही अच्छा लगता है मैम। अच्छा, एक विमेंस के लिए सही खान पान से न्यूट्रिशन का होना कितना जरूरी है? अगर मैं खुद से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक फीमेल के लिए उसकी उसका डाइट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लाइफस्टाइल को बदलने में?
10: सी यार, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये अभी हो रही, ठीक है? पुराने जमाने में आप अपनी दादी नानी से बात करो, कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो बोलते थे, मतलब माई दादी यूज्ड टू से कि हमें तो हमारे हस्बैंड छूते थे और बच्चे हो जाते थे। पता नहीं आजकल की लेडीज का क्या हाल होने लगा है। ये तो इनफर्टिलिटी ही ट्रीट कराती रहती है, IVF करा रही है। प्रॉब्लम क्या थी? सी प्रॉब्लम थी, उनका लाइफस्टाइल ऐसा था, प्लस वो इतने एक्सपोज नहीं थे केमिकल्स के लिए। बैलेंस डाइट ले रहे थे, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज इन अ सेंस, हमारे सारे काम जो होते थे मैनुअल होते थे, ठीक है? प्रॉपर स्लीप लेते थे। अब जब से ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक आ गया है, बच्चे रात भर 2-2 बजे तक ही मोबाइल ही देखते रहते हैं। दिस इज अ रेडिएशन, है ना? आप रेडिएशन एक्सपोज कर रहे हो, प्लस उनका खान पान बदल गया है। हर चीज स्विगी हो गई है, हर चीज स्विगी हो गई है, तो आप घर बैठे ही सब कुछ मंगा रहे हो, ठीक है? बाहर का खाना ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आएगा, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद जो है कोई फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है,
9: करेक्ट,
10: ठीक है? हाँ, सब चीज ऑनलाइन हो गई है, सब चीज कैब्स पे आने लगी है, तो इवन पार्क में भी यू विल गेट अ वेरी लेस गैदरिंग,
9: करेक्ट
10: ना? तो दिस ऑल लीड टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये PCOS, PMS कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इट इज ओनली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कि आपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा। आप कार लेते हो, ठीक है? कार लेते हो तो कार की सर्विस कराना जरूरी है, वंस इन अ ईयर उसकी सर्विस होना जरूरी है। आप नहीं कराओगे तो 2-3 साल बाद उसका माइलेज जीरो है। ऐसी आपकी बॉडी का हाल है। अगर आप उसको नहीं सर्विस करेंगे, उसको नहीं नेचुरल चीजें देंगे, तो ऑब्वियसली ये बॉडी नहीं रिएक्ट करेंगे। एंड आई एम गेटिंग PCOD के पेशेंट, इतनी जिद्दी PCOD कि हम सब कुछ कर चुके हैं, बहुत सारे साइकल्स ऑफ हार्मोन दे चुके हैं, बट बेसलाइन बॉडी आने को तैयार।
9: बिल्कुल मैम, यू नो मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छा, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आप अभी बता रहे हो ना, ये चीजें मुझे लगता है हमें बताने की जरूरत ही नहीं। वैसे लोगों को खुद ही इन चीजों को समझना चाहिए, बट आजकल का लाइफस्टाइल अलग ही हो गया है ना, बात ये भी है। अच्छा मैम, एक चीज और है, आजकल का स्ट्रेस, सोशल मीडिया की तो हमने बात ही कर ली, आजकल का लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस और हमारा खान पान, ये सब कुछ कहीं ना कहीं ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के रीजन कहीं ना कहीं बनी रहा है।
10: Exactly.
9: जैसे आपने बताया कि लोगों को आजकल हर चीज ऑनलाइन करानी है, शॉपिंग ऑनलाइन करनी है, फूड ऑनलाइन करना है, हर चीज की फैसिलिटी उन्हें घर बैठे ही चाहिए।
10: Exactly.
9: तो इन सब चीजों की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना। बिल्कुल, आपने ये चीज पे अभी जो आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइज, हमारा भी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी को प्लीज अब कीजिए, अगर जितना हो सकता है ना, आप प्रैक्टिकली बाहर निकलिए। छोटी छोटी चीजें जो हम अवॉइड कर देते हैं कि नहीं यार शाम को बाजार निकल जाएंगे, कल निकल जाएंगे, आज ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ये सब चीजें जो हमें उस तरफ लेके जा रही है जिस तरह हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, आज हम जहाँ पहुंच गए हैं, कहीं ना कहीं
10: तो वर्स ही होंगी।
9: एब्सोल्युटली, कहीं ना कहीं
10: इंटरवेंट, राइट?
9: करेक्ट, करेक्ट। अच्छा मैम, जो लोग अभी अगर मैं बात करूं उन महिलाओं की जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, जो प्रेगनेंसी से पहले कपल्स को किन किन बातों का और यू नो ध्यान रखना चाहिए, और कौन कौन से हेल्थ चेकअप है जो उनको डेफिनेटली दिमाग में ध्यान में रखनी चाहिए?
10: 5 मोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। एक प्री प्रेगनेंसी आप अपना चेकअप कराएं, ठीक है। दूसरी बात, फोलिक एसिड स्टार्ट करें जब भी आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड है, उसके कम से कम 3 महीने पहले हम ये कहते हैं कि आप फोलिक एसिड काम करना शुरू करें। तीसरी चीज, थायराइड शुगर, ये सब आप बिल्ड टेस्ट कराएं। चौथी चीज, हेल्दी वेट मेंटेन करें। और पांचवी चीज, यदि आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल इनटेक है तो ये बिल्कुल बंद हो।
9: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैम, सोशल मीडिया का थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, स्पेशली लेडीज बहुत ज्यादा ही चीज को मैंने देखा फॉलो करती है। तो मतलब कोई भी आ गया, किसी ने भी आके ज्ञान दे दिया, आप ये चीज करो, आप ये रेमेडी करो, ये करो, और लोग वो करते भी हैं। तो क्या ये विमेन्स को करना चाहिए, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो घर में महिला है, उनको ऐसे कुछ भी सोशल मीडिया देख के फॉलो करना चाहिए?
10: नहीं, एक्चुअली इससे ही बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट आ रहा है। मैं आपको बताऊं, कल मेरे पास एक पेशेंट आई जिसको की सीजर की हिस्ट्री थी, सीजर डिसऑर्डर है, दौरे पड़ते थे,
9: ठीक है, ठीक है।
10: पूरी टर्म प्रेगनेंसी थी, बट उसने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया, कोई इंस्टाग्राम की रील देखी, उसमें कोई दवाई जो थी वो खा रही थी। अब वो ओपीडी में एक रूटीन चेकअप के लिए आई थी और रूटीन चेकअप के लिए बाहर बैठी थी और उतने में उसको सीजर्स आने लगे एंड शी स्टार्टेड ड्रूलिंग फ्रॉम माउथ, ब्लड आने लगा और वो आने लगा। तो उस वक्त और प्लस बच्चे की धड़कन जाने लगी, तो हमें एकदम इंटरवीन करके उसको सिजेरियन में लैंड करना पड़ा। हालांकि वो सेकंड गैबिडा थी, तो आई वुड नेवर गो कि दूसरा बच्चा पहला बच्चा नॉर्मल है, तो आई वुड हैव ट्राइड कि हमें नॉर्मल कराऊंगी, बट मेरे सामने उस वक्त इट वॉज एन इमरजेंसी, डाइंग इमरजेंसी की मुझे बच्चा और माँ दोनों बचाने थे। तो उसके लिए हमने जल्दी से ओटी शिफ्ट किया गया, पेशेंट इंट्यूबेट हुई, 2 दिन आईसीयू में रही। तो दिस कुड ऑल बी प्रिवेंटेड कि अगर आप एक न्यूरोफिजिशियन का रेफरेंस कर लेते, टाइमली हम इंटरवीन करते, प्लान करके डिलीवरी कराते। सो दिस इज ऑल डिवास्टेटिंग इफेक्ट। अब उसमें सोशल मीडिया में हर कोई डॉक्टर, आप पहले उसकी डिग्री तो एटलीस्ट टैली करें।
9: करेक्ट।
10: कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट लिख रहा है तो गायनेकोलॉजिस्ट इज अ सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट। प्लस सोशल मीडिया पे कभी दवाइयां फॉलो नहीं करनी चाहिए।
9: करेक्ट।
10: कैन फॉलो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या फिर सोशल मीडिया इज ओन, आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई ओनली मेक कि ये पेशेंट के सीरियसनेस है, इसमें डॉक्टर को दिखाएं। इट इज नॉट लाइक आप दवाई खाने लगोगे उस सोशल मीडिया से ना।
9: करेक्ट।
10: सर्टिफाइड डॉक्टर्स की एडवाइस ले, क्रॉस चेक करे, डाउट्स हो तो डॉक्टर से पूछे। जितनी भी बात है, आप 10 मिनट 15 मिनट आप उस ओपीडी में बैठे हैं तो यू कैन आस्क एवरीथिंग यू वांट। तो उससे ये जो अचानक से लास्ट में डायग्नोसिस बनती है ये नहीं बनेगी। तो सोशल मीडिया का प्लीज फायदा उठाएं, इट इज ओनली टू कनेक्ट विद पीपल। आई अपडेट कि थोड़ा सा पेशेंट को ये लगना चाहिए, पेशेंट फील कि हाँ भैया मैम घर का पार्ट है, कल थोड़ा सा फनी रील्स, थोड़ा सा ये। सो इट इज ओनली टू कनेक्ट विद पीपल, नॉट कि हम उस पे ट्रीटमेंट। हमने 10 MBBS, PG, सो इट्स ऑल कंस्टिट्यूट 10 साल की मेहनत। हाउ कैन आई इंस्टाग्राम रील ऑफ 1 मिनट 30 सेकंड रिप्लेस दैट नॉलेज? एंड अब सुपर स्पेशलिटी हो रही है, पीपल आर डूइंग MCH। तो आप ये सोचो कि 13-14 साल की पढ़ाई इंस्टाग्राम की रील से अगर हो जाती है। आई हैव सीन पीपल इनफर्टिलिटी वाले, वो किसी ने बता दिया लिट्रोस से है, लिट्रोस खा रही है, 5 महीने के बाद मोटी सिस्ट है, अब वो ओवरी भी खराब हो गई है और हमें सिस्ट भी निकालनी पड़ रही है, वी हैव टू ऑपरेट हर, बिकॉज हर चीज के साइड इफेक्ट है। पीपल आर ओनली टेलिंग इफेक्ट, देर नॉट टेलिंग साइड इफेक्ट। तो प्लीज वाइसली चूज करें, अपने डॉक्टर से बात करें। एक कंसल्टेशन महीने में एक बार का कंसल्टेशन होता है, जो भी है आप अपने पेपर पे लिस्ट बना लो। आई ऑल्सो टेल माई पेशेंट की टू डू लिस्ट आप अपने पेपर पे लेके आओ, जितने क्वेश्चन से मुझसे पूछो कि मैम ये करना है या नहीं करना,
9: नहीं करना।
10: और प्लीज सर्टिफाइड डॉक्टर्स को ही फॉलो करें, यू विल गेट द इंस्टाग्राम प्रोफाइल कि कौन सर्टिफाइड है कौन नॉन सर्टिफाइड।
9: एब्सोल्युटली। और सोशल मीडिया पे कुछ रील्स और व्यूज के लिए, कुछ लाइक के लिए लोग कुछ भी डाल रहे हैं और हम कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है इट्स नॉट अ गुड। दूसरी बात, हर मेडिसिन का हर एक कह सकते हैं जो इंसान है उसके साथ कनेक्शन नहीं बन सकता है।
10: Exactly.
9: मैम, हर मेडिसिन हर इंसान के लिए नहीं बनी होती है।
10: वी इंड्यूस विद लिट्रोजोल, वी इंड्यूस विद क्लोमिफेन, वी इंड्यूस विद HMG इंजेक्शन, वी डिसाइड।
9: एब्सोल्युटली।
10: और शुगर के लिए 1000 दवाएं मार्केट में, वी डिसाइड
9: 100%।
10: एंड दैट इज ऑल्सो की वी, ऐसा नहीं है कि हमने एक दवाई लिख दी तो वो ही 100% दवाई होगी। नो, वी हैव टू चेंज। अगले पेशेंट आया, उसने कुछ कंप्लेन करी तो वी हैव टू चेंज दैट दवाई। अगर इतने से ही ChatGPT और ये सब ही बता देते तो फिर कोई फायदा ही नहीं था।
9: Important.
10: एक पेशेंट यूट्रस, वो बेबी अनोमलस, बेबी पूरा अनोमलस जिसकी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, उसने ChatGPT पे डाला, ठीक है। वो मेरे पास 26 वीक पे आया, उसका जो लेवल 2 स्कैन था 20-22 हफ्ते का, उस अगे एनोमली जो कि सर्वाइवल मोड पे नहीं था वो बच्चा, तो हमें उसका अबॉर्शन कराना चाहिए था, बट उन्होंने ChatGPT पे डाला। ChatGPT सेड कि कुछ नहीं है कि कंटिन्यू करने का, उन्होंने कंटिन्यू किया, शी गेम एट 26 वीक। अल्टीमेटली बेबी की तो प्रोग्नोसिस नहीं थी, वी हैड टू मतलब अबाउट दैट बेबी, बट अगर वो 20-22 हफ्ते पे होता तो मेडिको लीगल चीजें भी कम होती और प्लस इजी होता। अब जितना बेबी बढ़ जाएगा, प्रोग्नोसिस तो उसकी है ही नहीं। अगर मान लीजिए आप टर्म तक भी पहुंचा दीजिए, उसको पूरे टाइम पे डिलीवर कराइए, अब बच्चा आपके हाथ ही नहीं लगना है। तो फिर ऐसी चीजें चैट जीपीटी से नहीं पूछी जाती, ऐसी चीजें डॉक्टर से पूछी जाती हैं।
9: करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हमारा इसका मोटिव भी यही है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं या आपके घर में कोई चीज कर रहा है तो प्लीज ये मत कीजिए, डोंट डू दिस। एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बहुत जरूरी है मैम, क्योंकि जब तक आप सही लोगों से नहीं मिलेंगे तब तक आपको सही एडवाइस नहीं मिलेगी।
10: सी, और एक गायनी का ना ऐसा नहीं होता कि आप गए आपको गॉलब्लैडर स्टोन निकलवाना है, काम खत्म हो गया। गायनी से आपको 9 महीने का एक तालुकात बनाना पड़ता है, ताकि जब आपकी डिलीवरी होगी तो शीज योर होल सोल, क्योंकि उस चैम्बर में वही है। अगर आप फील कनेक्टेड नहीं करते हैं, लाइक आई वॉज देयर इन एन हॉस्पिटल, माई हस्बैंड गॉट शिफ्टेड टू अनदर प्लेस, आई डिडंट चेंज द प्लेस, आई लेट हिम गो कि तुम जाओ, आई विल नॉट, क्योंकि मुझे वाइब्स आ रही थी, आई कुड फील दैट गायनी एज माई ओन। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि पेशेंट्स, आप जिसको भी चूज करें उसको रिलीजियसली फॉलो करें और उससे डिलीवरी के टाइम पे कनेक्टेड रहें, सो दैट देयर इज अ स्मूथ डिलीवरी इन पोस्टपार्टम।
9: एब्सोल्युटली। और आजकल तो सोशल मीडिया है अच्छी चीजों के लिए, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो देंगे बैक टू बैक। बट हमारी भी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, इन सब पे प्लीज अपनी हेल्थ को लेकर तो बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। मैम थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने इतना टाइम हमारे साथ शेयर किया, हमारे लिसनर्स को तमाम इन्फॉर्मेशन दी। आई एम श्योर जितने भी लोग ये सुन रहे हैं सभी को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिला होगा और जानने को मिला होगा। आई एम थैंक्सफुल टू यू, इतना टाइम आपने निकाला, बिकॉज यू हैव ऑल्सो वेरी बिजी, शी इज नॉट फ्री भाई, जब भी जाओ मैम बिजी इतना ऑक्यूपाइड रहता है आपका। बट अभी भी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कल का बना, फिर उसके बाद आज का बना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैम, आपका लाइफ स्टाइल भी बहुत बिजी रहता है आई नो, एंड फिर भी आप इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ पे आए, आपके लिए दिल से थैंक यू मेरी ओर से और FM मुरादाबाद की ओर से भी। जाते जाते हमारे लिसनर्स को क्या संदेश आप देंगी, जो लेडीज या जो जेंट्स आपको सुन रहे हैं?
10: यार आई वुड से भैया मैं लेडीज की डॉक्टर हूँ तो एडवाइस तो सिर्फ लेडीज को ही देनी है,
9: ठीक है।
10: लेकिन जेंट्स को भी एक एडवाइस देनी है कि देखो लेडीज, आप इग्नोर मत करो अपने आप को, अपनी बॉडी को इग्नोर मत करो, सिम्टम देगी वो सिग्नल देगी और उसको आप एक्नॉलेज करो और उसके लिए ट्रीटमेंट करो। और जेंट्स को सिर्फ यही संदेश है कि अगर आपसे लेडीज कुछ कह रही है तो डोंट टेक हर फॉर ग्रांटेड, ये नहीं कि वो आपका सब्स्टिट्यूट है, गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों चलेंगे तब गाड़ी अच्छी चलेगी। सो अगर वो कुछ कह रही है तो प्लीज, बहुत सारी फैमिलीज मैंने ऐसे देखा जहां मेल्स ही होते हैं उसे, अरे अरे अरे ठीक है सबको ही होता है, क्या हो गया, ब्लीडिंग ही तो हो रही है, सबको होती है, मेरी मम्मी को भी होती थी। नो प्लीज, जस्ट टेक केयर ऑफ हर, वो आपके घर की अन्नपूर्णा है, उसके बिना घर नहीं है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपसे वो कुछ कह रही है तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, उसको भी लगना चाहिए शी इज इम्पोर्टेंट, तो हर किसी का ध्यान वो रख पाएगी, उसको और भी अच्छा लगेगा। आई हैव सीन पेशेंट्स विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आई हैव सीन लेडीज जिनकी शादियां हो गई होती है इनफर्टिलिटी विद डिप्रेशन। तो मेल्स के लिए सिर्फ इतना ही है कि कोई भी प्रॉब्लम उसकी अलग नहीं है, यू बोथ आर गाड़ी के दो पहिए, तो दोनों को एक साथ ही चलना होगा, उसको समझना होगा और उसकी बात आपको सुननी होगी। एंड फीमेल्स प्लीज डोंट हेजिटेट, सामने आइए और अपनी प्रॉब्लम को प्लीज बताइए।
9: थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल मैसेज, सच अमेजिंग मैसेज, एंड इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए एंड आपने तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करी, एंड आई एम श्योर आप आगे भी आते रहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए।
10: या
9: सो गाइज प्लीज आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, प्रोग्राम था हेलो डॉक्टर, और आज एशियन हॉस्पिटल से डॉक्टर राशिका गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में थे। मैम से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपको कैसे लगा ये प्रोग्राम, आपको कैसे लगी ये कॉन्वर्सेशन, डू शेयर योर फीडबैक हमारे इंस्टाग्राम पे, आप आके मुझे शेयर कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता है, और हमारा FM का ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से आपको मिल जाएगा। सो प्लीज आइए फॉलो कीजिए। अच्छा मैम आपका इंस्टाग्राम, आप सोशल मीडिया पे इतनी देर से बातें कर रही हैं, सो प्लीज डू शेयर योर सोशल मीडिया।
10: आई डोंट हैव मेनी फॉलोअर्स, ऐसा नहीं है, बट आई फील रिलैक्स्ड कि मेरे दिन में जो एक्टिविटी हुई है, आई लाइक पीस शेयरिंग विद पीपल, नॉट टू मिसगाइड एनीबॉडी, बट ये दिखाने के लिए कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो उस 15 मिनट में आप मुझसे नहीं पूछ पाते हो। लाइक कल ही मुझसे कोई पेशेंट पूछ रहा था कि मैम आम खाना होता है प्रेगनेंसी में, सो आई पोस्ट स्मॉल स्मॉल रील्स बस इसीलिए कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ जाए, आपको भी अच्छा लगना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि हाँ डॉक्टर राशिका कोई है, सो इट इज ओनली टू मेक अ प्रेजेंस इन योर होम। ठीक है। और बाकी
9: एक सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का भी एक जरिया तो है ना मैम सोशल मीडिया पे, आप जैसे लोग ही हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं। हाँ, जैसे मेंटोर, ये चैट जीपीटी और इंस्टाग्राम से तो बेटर है कि आप सही इंसान को फॉलो करेंगे तो वो डायरेक्शन तो देगा।
10: देयर आर मेनी मिसगाइड्स ऑन सोशल मीडिया ना, तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये लगेगा कि वो सही बोल रहे हैं क्योंकि हम ही नहीं रहे।
9: एब्सोल्युटली,
10: तो पीपल विल थिंक। तो अब कोई भी ए बी सी डी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेहनत। प्लस हम भी गायनेकोलॉजिस्ट विद डिग्री नहीं बने, विद आर एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स हम भी फंस जाते हैं। वी आस्क आवर सीनियर्स, वी आस्क सर्जन की हमें वो लेनी पड़ती है। सो नोबडी इज कम्प्लीट, इट इज ऑलवेज। जैसे हमारा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आई एडमिटेड अ पेशेंट जिसको एक्यूट ब्रेंकाइटिस थी, तो एक गैस्ट्रो इन्वॉल्व हुआ उसमें, उसको सीजर डिसऑर्डर था, तो उसमें एक न्यूरो फिजन इन्वॉल्व हुआ, प्लस एक गायनी थी और वो एक AI में चली, तो एक न्यूरो सर्जन इन्वॉल्व हो गया। तो दिस कैन नॉट बी, एक कोई ले मैन ये सब चीजें नहीं संभाल सकता है। तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप जो है डॉक्टर्स से ही कनेक्ट करें, उनकी बातों को। आजकल लोगों का एक्चुअली विश्वास कम हो गया है, ठीक है। विश्वास कम भी इसीलिए हुआ है क्योंकि ये जो ABCD बीच वाले लोग है ना, दीज पीपल डू रैंडम थिंग्स, बट वो ग्रॉस ये आ जाता है कि डॉक्टर्स ने किया, बिकॉज दे आर अल्टीमेटली डॉक्टर्स।
9: राइट। अच्छा मैम, जो लेडीज आपको सुन रही हो या आपसे पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहती हो या आपको विजिट करना चाहती हो, तो कहाँ आप उनको मिल सकते हैं?
10: आई सिट एट एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल, 10 to 4 एवरी डे, ठीक है। Sundays are off days,
9: okay.
10: तो you can come
9: Monday to Saturday, मतलब वो आ सकते हैं आपके,
10: exactly, Monday to Saturday आ सकते हैं। So we have a very reasonable price for normal deliveries, for cesarean sections, with a expert care, तो anybody can come anytime.
9: आपका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आपने बताया?
10: हाँ, आई एम, मुझे मेरा तो डॉक्टर राशिका के नाम से ही है।
9: तो गाइस प्लीज फॉलो कीजिए, छोटा सा अकाउंट बड़ा अकाउंट तभी होगा जब हम और आप फॉलो करेंगे, क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन को हमें आगे डिलीवर भी करना चाहिए। वो कहते हैं ना, ईच वन टू कीच वन, मैं हमेशा कहता हूँ आप भी फॉलो करें औरों को भी कराएं, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक डिलीवर होना बहुत जरूरी। सो अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत, वेरी वेरी सून फिर मिलेंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।
6: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
11: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
12: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
13: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
12: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
9: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
14: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
9: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
14: कॉल 9045912348।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।

हेलो जी, हेलो। गुड वाली मॉर्निंग है आज जरीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और गुड वाली मॉर्निंग है जी आप सभी को मुरादाबादीज। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे

होंगे और आज सुबह से ही सूर्य भगवान ने कह रहे हैं कि अब मैं एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर चला जाता हूँ क्योंकि मेरी बहन आ रही है धरती पर, तो वो हमारे धरती पर प्रस्थान कर चुके हैं, जो कि सुबह सुबह भाई ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बारिश के जो फुहारे फेस पर पड़ते हैं ना, तो समझो सुबह अपने आप खूबसूरत हो जाती है और हर सुबह हमें एक जीने का मौका मिलता है। तो इस सुबह यानी कि देखिए 1 वीक तक बारिश बताया गया है श्रोताओं, यानी कि अगले 1 घंटे तक आप सभी के साथ में रहने वाली हूँ, ढेर सारी बातें करने वाली हूँ। सो आरजे रीना के साथ बिंदास मॉर्निंग करिए क्योंकि अब हो चुकी है आपकी बिंदास वाली मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी ने चाय पी ली होगी, है ना, और बाहर से यही कह रहे होंगे कि आज यार ब्रेकफास्ट छोड़ो, आज बस चाय और पकौड़े कर लेते हैं ना, ब्रेड पकौड़ा होना चाहिए उसके साथ, यानी कि जो बारिश का मज़ा है ना वो अलग ही नेक्स्ट लेवल वाला हो जाता है। सो आज क्या है कि यानी ये हर चीज़ के बारे में बताएंगे आप सभी को। फिलहाल आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट रहिए क्योंकि देखिए जब आप कनेक्ट रहेंगे तो ढेर सारी बातें यहाँ पर सुनने को मिलेगी आप सभी को, इसीलिए कहते हैं कि रेडियो की सुई बिल्कुल भी नहीं घुमाना चाहिए। आरजे रीना के साथ आपने कनेक्ट रहना है और एक बहुत ही शानदार गाना आप सभी के लिए, उसके बाद कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और करेंगे आज का जो डे है क्या स्पेशल है क्या स्पेशल नहीं है, हर उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना जी, बस आरजे रीना के साथ ट्यूनिंग करके रखना है। और एक ये बहुत ही शानदार खूबसूरत गाना, क्योंकि बारिश भी पड़ रही है और बारिश के मौके पर ये गाना ना सुना तो क्या ही सुना जी।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। बरसात के दिन आए, वैसे भी सावन बहुत ही जल्द शुरू होने वाले श्रोताओं, और आज की तारीख हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज 1 जुलाई और एक नया महीना, नए महीने की शुरुआत हो गई है, और आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है। आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है बिंदास मॉर्निंग शो में श्रोताओ, और समय की बात करूँ तो 9:23 हो चुके हैं, और आज का जो डे है हमारे लिए बेहद बहुत ज़्यादा खास है। वो खास इसलिए है, देखिए हर दिन हमारे लिए खास होता है ना, लेकिन उन दिन में से आज पहली तारीख और 1 जुलाई को बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंजेस हुए हैं, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि हमें राहत मिलने वाली है, और उसमें से आज का खास डे है यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे, यानी कि आज नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। जब भी जिंदगी मुश्किल में होती है, सबसे पहले जिस चेहरे पर भरोसा होता है वो होते हैं एक डॉक्टर का। दिन हो या रात, त्योहार हो या छुट्टी, डॉक्टर बिना रुके हमारी सेहत और हमारी जिंदगी की हिफाजत से जुटे रहते हैं। यानी कि चाहे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्यौहार हो, छुट्टी हो, संडे हो, कुछ भी हो, हमारे लिए डॉक्टर हमेशा अवेलेबल होते हैं। देखिए भगवान ने 2 चीज़ें बहुत अनमोल बनाई हैं, एक तो माँ, जो कि भगवान हमारे साथ नहीं रह सकते थे इसीलिए उन्होंने माँ को भेजा, और एक तो वैद्य, यानी कि हमेशा जो भगवान है वो भी नहीं रह सकते थे तो इसीलिए उन्होंने डॉक्टर्स के रूप में इनको भेजा, ताकि माँ हमारी रक्षा करे और डॉक्टर्स जब हमारी सेहत खराब होए तो वो हमारी रक्षा करे। तो आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसी की शुरुआत यानी कि 1991 में हुई थी। यह महान चिकित्सक एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर धनंजय चंद्र रॉय ने किया था, और आज उनकी जयंती भी है, पुण्यतिथि उनकी इस दिन याद किया जाता है। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर हमें कुछ भी हो जाता है, हमारी ज़िंदगी संवरती है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की वजह से। तो शो श्रोताओं और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे, फिलहाल मैसेज भी बहुत सारे हैं तो चलिए एक बार मैसेज भी देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसे हैं आप? आयुब जी रामपुर से कनेक्ट होते हैं, मुरादाबाद से रणवीर सिंह कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है महीने के पहले बुधवार सुबह का फूल आपके लिए आए है। राजा कश्यप जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनके साथ इन्होंने अपने दोस्तों के नाम भी मेंशन किए हैं, आनंद जी। और गुड मॉर्निंग, एक बात आपको बताऊं कि आज का दिन बहुत खास है, और यही कहना चाहेंगे पहला महीना है कि बुरी आदतें हैं वो बस छोड़िए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। गीता कश्यप जी कनेक्ट होती है बबली, और शुभ बुधवार, सुबह की राम राम जी आपको, और आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जोन रोजेस परवली जी, और इनका कहना है कि हमारी ओर से सभी दोस्तों को नमस्कार, हिसाब रखा करो, आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने लाइनें लिखी हैं, और मुझे लगता है कि याद रखना बहुत ज़रूरी है। रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती हैं, चलिए जी लौट कर आते इसी स्टेशन पर, बस आपने कहीं नहीं जाना है जी, आज रीना के साथ कनेक्ट रहना है क्योंकि गाने, आज देखिए बरसात का दिन है और बरसात वाले गाने ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो एक और गाना आप सभी के लिए, क्योंकि सुबह सुबह तो बस हल्की हल्की ठंडी ठंडी फुहारें चल रही थी बारिश की, लेकिन अब बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, तो ये गाना आप सभी के लिए। अगर आप ऑन द वे हैं, ऑफिस के लिए निकल गए हैं तो वेल डन, बस आराम से गाड़ी चलाइएगा यही कहेंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में और खासकर जो स्कूटी चलाते हैं उनके लिए कि स्कूटी इस बरसात के महीने में अपने कभी आप ज़्यादा रेस दे दो, तेज़ नहीं चलानी होती है क्योंकि स्कूटी का जो पहिया होता है वो बहुत ही
मतलब क्या क्या क्या फूल की खली कह सकते हैं उसको, स्लिप खा जाता है, इसीलिए उसको ध्यान से चलाना है। क्योंकि आप ध्यान से चलाएंगे तो सेफ रहेंगे और अपनी मंजिल तक भी आप सेफ पहुंच जाएंगे। तो चलिए जी ये गाना सुनते हैं। और आज 1 जुलाई को बहुत से बच्चों की स्कूलें खुल चुकी हैं और आज से शुरू हो चुका है यानी कि स्कूल चलो अभियान भी शुरू हो चुका है श्रोताओं। तो फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं और बताएंगे 1 जुलाई से क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो गए हैं।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा सीट PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111
4: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना है। सही बात है, जब बारिश आती है ना तो बस छतरी मत खोलिए, भीग जाने दीजिए। और आज सच में बहुत से बच्चे हैं वो नहा रहे होंगे। और बचपन की अगर मैं बात करूँ, जब भी बारिश आती थी ना, बस गली मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और हर गली में भैया घूमने लगते थे, नहाते थे, बरसात का आनंद लेते थे। सो गुड वाली मॉर्निंग है जी, बिंदास मॉर्निंग शो में आरजरीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 9:35 हो चुकी हैं और आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है। बहुतों की भैया सैलरी आ गई होगी और बस सैलरी आती लेट है, लेकिन जाती कब है भाई पता ही नहीं चलता है, कब पॉकेट खाली हो जाता है ना। क्योंकि इतने सारे बिल पे करने होते हैं, रूम रेंट देने होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसका पेमेंट हमें करना होता है, यानी कि जो आती लेट से पर जाती बहुत जल्दी है। सो आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई को बहुत सी चीजें हैं जिसमें चेंजेस आ गए हैं। अगर मैं बात करूं तो फ्री में आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट कर सकेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 31 मतलब अब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। और वहीं अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो अब आपके पॉकेट

0: के खर्चे पर थोड़ा सा बर्डन पड़ने वाला है। अब जब भी आप पासपोर्ट बनवाने जाएंगे ना, तो बोलेंगे यार पैसे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1500 से लेकर 2500, यही अगर मैं बात करूँ तो 5000 से लेकर 3500 तक की बढ़ोतरी है अगर आप चेंजेस करवाते हैं और बनवाते हैं तो। और आगे बात करूँ तो, यानी कि देखिए आजकल हर किसी के घर में गाड़ी है, कार, तो अब कारों की जो कीमतें हैं ना, उसमें भी बढ़ोतरी आ चुकी है। तो जब भी आप गाड़ी खरीदने जाए, थोड़ा सोच समझ के खरीदिए, क्योंकि टाटा मोटर्स ने भैया बढ़ा दिया है दाम ही। वही क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव आ चुका है। एलपीजी की कीमतों में भी थोड़ी सी राहत हमें मिलने वाली है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ट्रेन की टिकट से लेकर हर चीज में चेंज होता है, यानी कि हर पहली तारीख को कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं श्रोताओं। सो और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे, बस आर्जुरीना के साथ आप कनेक्ट रहिए। और कुछ मैसेज है, यानी कि वॉइस मैसेज आ चुके हैं हमारे पास, सो चलिए उनको भी सुनना बहुत जरूरी है।
1: नमस्कार शहरवासियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त गोपी शर्मा नगर पंचायत पाक बड़ा से बोल रहा हूं। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आरजे रीना के साथ प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हर रोज की तरह एक सुंदर सा प्यारा सा विचार आपके लिए। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है, उम्र भर किसी को अपना समझना बस वहम है। इंसान तो विकल्पों का आदि है, विकल्प मिलते ही उसे नए में खूबियां और पुराने में कमियां नजर आने लगती हैं। नमस्कार, राधे राधे, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगा, और भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज वॉइस नोट। मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा नगर पंचायत पाग पड़ा से, और सभी धरती पर उपलब्ध डॉक्टर्स को आज डॉक्टर्स दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना कर्तव्य निभाते रहें और लोगों के काम आते रहें। नमस्कार, राधे राधे, हैप्पी डॉक्टर्स डे।
0: क्या बात है जी, राधे राधे। मतलब जो भी आप मैसेज डिलीवर करते हैं, सच बताओ बहुत ही शानदार होते हैं सर। और अगले मैसेज की तरफ बढ़े तो अगला मैसेज आता है हमारे पास। जय श्री राम रीना जी, राम राम। दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि रीना जी आज सुबह 6 बजे से ही बारिश पड़ रही है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। और अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास बेबी राधिका, और इनका कहना है कि रीना मैम हेलो, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हो? मैंने पकौड़ी बनाई है आपके लिए। अरे धत तेरी की, अगर आपने मेरे लिए बनाई है तो ऑफिस भिजवा दीजिए प्लीज़, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। जब आपके हाथ के जो पकौड़ी होंगी, ओए होए कितनी टेस्टी टेस्टी होंगी ना। तो चलिए श्रोताओं और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे, बस मैं कह रही हूँ ना आपको कहीं नहीं जाना है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है जी, रेडियो की सुई बिल्कुल भी नहीं घुमानी, क्योंकि यहाँ पर बातें ढेर सारी होती है और काम की बातें होती है, जो कि जानकारियाँ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।

0: हेलो जी, हेलो। अर्ली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में, और समय की बात करूँ तो 9:44 हो चुके श्रोताओं। और अब आरजे रीना को सुन रहे थे, है ना, लेकिन ये शो मेरा नहीं है, आनंद का शो है। तो मुझे मौका मिला, भैया मेरे पास सुबह सुबह ही फोन आ चुका था कि भाई रीना आ जाओ नीचे शो करने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, चल आ जाती है जी, क्योंकि जब मौका मिलता है ना तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। क्योंकि जब तक आपसे बात ना करे ना, मन लगता ही नहीं। ऐसा लगता है कुछ मतलब दिन में ना अधूरा अधूरा सा फील होता है। तो देखिए, अब मैं अकेली नहीं हूँ, जिनका शो है आनंद जी पधार चुके हैं स्टूडियो में। तो आनंद प्लीज कुछ बोलो, आप बाहर से आए हो और देखिए
1: यार आज
0: बरसात
1: आज एक
0: बहुत।
1: तारीख है, आज 1 जुलाई है ना। और 1 जुलाई को मैंने सोचा था मेरे पास पैसे आएंगे, लेकिन इधर उल्टा मेरी जेब से कट गया सुबह सुबह। तो मेरे को यही बड़ा लॉस हो रहा है कि यार मेरे 1 जुलाई को मैंने पैसे दे दिए। चलो कोई नहीं, किसी की हमने सुबह
0: मतलब
1: अच्छी
0: सुनने
1: बना ली।
0: तुमने दिया ना तो हर साल देते रहोगे।
1: ऐसा भी होता है? हर साल का है तो
0: हाँ।
1: महीना है यार,
0: अरे मतलब पूरा ये जो जुलाई का महीना है तुम पैसे पेमेंट करते ही रहोगे,
1: एक
0: और
1: छह
0: भगवान करे
1: महीने।
0: तुम करते ही रहो,
1: सही बात है,
0: तुम्हारे
1: छह
0: झोली भरती रहे और पेमेंट करते रहो।
1: ये ऐसी ऐसी दुआएं दे रही है, तुम्हें पता नहीं है। इसकी दुआएं बहुत अच्छी होती हैं वैसे। आज आज पता है 6 महीने बीत गए यार, अब 6 महीने बचे हैं सिर्फ।
0: हाँ यार ये तो
1: जुलाई से
0: है,
1: लेके दिसंबर तक
0: पता नहीं
1: सिक्स
0: चला
1: मंथ है।
0: कैसे
1: हाँ, अब
0: महीने
1: छह
0: बीते जाए।
1: महीनों में हमें वो करना है जो पिछले 6 महीनों में नहीं किया है। जिसको वेट कम करना है वो आज से डिसीजन ले सकता है, जिसको बढ़ाना है वो ले सकता है, जिसको बाइक नहीं आती वो सीख सकता है, जिसको स्कूटी नहीं आती वो चला सकता
0: महंगाई बढ़ चुकी है कार और बाइकों की।
1: है। हाँ वो तो है यार। और अभी सिलेंडर का रेट कम हो गया, पता है
0: हाँ
1: ना,
0: वो थोड़ी
1: वन
0: राहत
1: एटी
0: मिली
1: थ्री
0: है।
1: रुपीज कम हो गया। चलो ठीक है, हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा फायदा हुआ या
0: हाँ
1: नहीं आई डोंट नो। और
0: बिल्कुल।
1: लेकिन यार
0: जो
1: कांठरोड
0: घर से
1: पे,
0: बाहर रहते हैं उनको थोड़ी राहत
1: हाँ
0: मिलेगी
1: ये तो है,
0: सिलेंडर
1: लेकिन
0: के लिए।
1: कांठरोड से मैं आ रहा हूँ गाइस, बहुत तेज बारिश हो रही है वहां पे। अगर आप लोग गाड़ी में सुन भी रहे हैं उधर के एरिया में, आप पता नहीं क्या माहौल है, लेकिन वहां पे बहुत झमाझम बारिश हो रही है। और अपन रामलीला ग्राउंड से निकल के आ रहे हैं, इतना पानी भर गया है कि वहां तैर के आ सकते हो आप। इतनी स्विमिंग पूल कर लो, स्विमिंग कर लोगे, इतना पानी भर गया है, इतनी वाटर लॉगिंग हो गई है। तो अगर आप गाड़ी वगैरह इधर से निकाल रहे हो, रामलीला ग्राउंड का जो मेन सेंटर है जहाँ पे अपन का स्टूडियो के बाहर ही आप देखोगे, तो वहां हर बार पानी भर जाता है। आज भी पानी भरा हुआ है, तो वहां पे अगर आप अपनी गाड़ियां ला
0: आज
1: रहे हैं,
0: नहीं, जब भी बारिश आती है पानी भर जाता है।
1: आज आज कुछ ज्यादा ही भर गया है। लेकिन यार सबको उम्मीद थी कि बारिश आएगी तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन जब बारिश अति से ज्यादा हो जाती है तो फिर लगता है यार बंद क्यों नहीं हो रही
0: लेकिन ये एक हफ्ते तक चलने वाली है
1: है ना ये
0: बारिश।
1: बारिश। अरे
0: हाँ
1: वाह, लेकिन जुलाई आते ही देखो सावन जैसी फीलिंग आ गई ना।
0: क्योंकि अरे भगवान आने वाले हैं धरती पर, तो स्वागत के लिए इंद्रदेव भगवान है, वो एक
1: हाँ
0: महीना पहले
1: इंद्रदेव
0: से ही
1: भगवान प्रसन्न होंगे।
0: भोले बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं वो।
1: सही कह रही हो, सही। चलो आप लिसनर को प्रसन्न करो, कौन कौन पकौड़ी खिला रहा था आपको, मेरे को बताओ जरा।
0: राधिका जी का मैसेज आया था कि पकौड़ी खाने आ जाओ,
1: अरे
0: तो
1: वाह, अरे वाह, क्या बात है।
0: अभी तक सुबह सुबह हमने देखे चाय भी नहीं पिया ना, है ना।
1: हाँ बारिश के मौसम में तुम्हें क्या अच्छा लगता है वैसे रीना?
0: मुझे पकौड़ी सबसे ज्यादा, पकौड़ी हो और इलायची वाली अदरक वाली कड़क चाय हो तो मजा आ जाता
1: हाँ
0: है।
1: ये भी अच्छा है यार, सुबह सुबह चाय पकौड़े खाने की बातें हम कर रहे हैं, कुछ लोग खा भी रहे होंगे। आई डोंट नो, इस टाइम पे
0: हंस भी रहे होंगे सुन के
1: हंस भी रहे होंगे,
0: हमें।
1: ब्रेकफास्ट का टाइम है तो नो डाउट। तो तुम अभी क्या बता रहे थे, आज डॉक्टर डे भी है, मैंने भी बताया
0: हाँ
1: था साढ़े
0: हाँ
1: आठ बजे
0: डॉक्टर्स
1: के समथिंग।
0: डे मैंने भी बता
1: आज
0: दिया था ना,
1: सीए डे भी मनाया
0: सीए
1: जाता
0: डीए भी है
1: है, और
0: बिल्कुल,
1: आज जोक डे भी है।
0: सरस्वती। और आज सरस्वती का जो हमारे ज्ञान की भंडार है,
1: हाँ
0: आज
1: हाँ
0: उनका भी मतलब उनकी भी आज पूजा की जाती
1: अरे
0: है।
1: वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया है, मुझे पता नहीं था, मैं जाते ही पूजा करूंगा अभी यहाँ से। और आज जोक डे भी है।
0: जोक डे।
1: हाँ
0: अच्छा
1: तो कोई जोक सुना सकती है तुम्हारे लिसनर को, अगर तेरे पास है तो।
0: अभी तो मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है, बस
1: मेरे
0: यही
1: पास भी नहीं आ
0: कहूंगी
1: रहा है,
0: कि
1: सच बात
0: पकौड़ी
1: तो ये
0: बना वो
1: है।
0: भेज दीजिए हमारे स्टूडियो में।
1: ये बात भी सही है। खैर अब
0: और
1: और आज क्या क्या अपडेट दे दिया है तूने हमारे
0: आज
1: लिसनर्स
0: मैंने
1: को?
0: डॉक्टर्स डे के बारे में बता दिया, 1 जुलाई से क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो बता दिए मैंने। और बबलू जी का मैसेज आ गया तुम्हारे लिए, आनंद भाई।
1: जय
0: रीना
1: श्री राम
0: जी
1: जी,
0: क्या
1: क्या हाल
0: हाल है
1: चाल
0: आपके?
1: है?
0: बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से
1: हाँ
0: कनेक्ट
1: ये
0: होते
1: विक्की
0: हैं।
1: जी लिखते हैं, देखो अपने फैमिली की फोटो शेयर कर रहे हैं। और हेलो गुड मॉर्निंग रीना जी, आज कैसे सुबह सुबह? रीना जी मूवी बहुत अच्छी थी,
0: अच्छा
1: आप
0: ये जंगल 2 मूवी देखने गए थे कल,
1: पता नहीं
0: तो
1: यार।
0: इनको अच्छी लगी मूवी, अच्छी बात है अच्छी लगी। तो अक्षय पाजी की मूवी है भैया, और उनकी मूवी जो ना हंसे इंसान उनको भी हंसा देते हैं।
1: अच्छा वेलकम टू द जंगल, ये कह रहा जंगल
0: हाँ
1: टू कौन सी आ गई है? इसने बोला जंगल 2 देखने गए थे, मन की कोई नई खुल गई है क्या, जंगल 2 मूवी? वेलकम
0: जंगल
1: टू,
0: में
1: अच्छा
0: मंगल।
1: वेलकम टू द जंगल, अक्षय कुमार
0: हाँ
1: की मूवी देख के आए हैं। अरे वाह वेरी गुड यार, बहुत
0: विकी
1: बढ़िया।
0: सागर जी कनेक्ट होते हैं, और श्रोताओं मिलते हैं क्योंकि एड ब्रेक का टाइम हो गया भैया। पता चले हमारे बॉस बोले कि यहाँ से निकलो, तुम एड नहीं प्ले करते हो।
1: हाँ बजा दो यार बजा दो।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
4: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
3: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। पति पत्नी मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है। आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है बिंदास मॉर्निंग शो में। और समय की बात करूं तो 9:54 हो चुके हैं श्रोताओं, और इसी बीच बिंदास मॉर्निंग शो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एक प्यारा सा म्यूजिक जिसे आपने सुनना है और बताना है कि
1: यार, उससे पहले हम चाय पकौड़ी की बात कर रहे थे तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहा है किसी भाई का, कह रहा है चाय पकौड़ी जोमेटो से भेज रहा हूँ। बताओ यार, इतनी मोहब्बत। रीना तो कह रही है मैं तो बिल्कुल दिल खोल के बैठी हूँ, भेजो आप पकौड़ों की प्लेट और चाय। चाय मैं खुद ही बना लूंगी, आप चाय मत भेजो, चाय ठंडी हो जाएगी। आप सिर्फ पकौड़े भेज दो, और भैया मेरे लिए ब्रेड पकौड़े भेज देना। तू क्या खाएगी, पकौड़ी?
0: नहीं नहीं पकौड़े।
1: अरे बिल्कुल बेशर्मों की तरह बोल डाल भी तुम, चलो वो ऑर्डर कर रहा है यार हमारे लिए। वेल भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आपके प्यार के लिए शुक्रिया। हम जस्ट मजाक कर रहे हैं, हमें पकौड़े खाने होंगे, तुम खुद बनाएंगे और तुम्हें भी खिलाएंगे। तुम आ जाओ यार।
0: बिल्कुल,
1: बट वो अभी ऑफिस जा रहा है, मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन यार इतनी अच्छा लगता है कि हम यहाँ बोल रहे हैं, लोग इंस्टेंट हमें मैसेज करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है। भले वो लेके ना आ रहा हो बट उसने बोला यार,
0: यार
1: अच्छा लगा।
0: कहते हैं ना प्यास लगी ना हो लेकिन पानी जरूर पूछ लेनी चाहिए,
1: वो वाली बात जरूर है। ये बिल्कुल दादी नानी की बात यही कर सकती है क्योंकि हरियाणा की यही है। तो सवाल पूछ अपना, क्या पूछ रही है?
0: नहीं नहीं तुम, अरे देखो गाइस ये जा रहा है, कहाँ जा रहे तुम? ये अकेले अकेले चाय पकौड़ी खाने जा रहे हैं।
1: करता हूँ कुछ, बनाता हूँ जल्दी जल्दी। वो अपना वो जीव वाला इमोजी भेज रहा है इसका, उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे लाइव,
0: तो चलो तुम इसी की इमोजी बनाओ।
1: अब तुम जो है फटाफट से सवाल करो अपना।
0: तो एक म्यूजिक है श्रोताओं, ये मैं प्ले करूंगी, आपने बस गेस करना है कि कौन सी मूवी का गाना है और गाने का नाम भी बताना है आपने। हाँ जी हाँ जी, सोचिए सोचिए जल्दी जल्दी। और हमारा प्यारा नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करके बताना है कि भैया ये जो म्यूजिक प्ले किया है ना मैंने, इस म्यूजिक का गाने का क्या नाम है, जल्दी सोच के बताओ रे बाबा। चलिए जी, आप मैसेज करिए, बस इतना ही मिलेगा बस। इसके बाद एक और शानदार गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं। श्रोताओं आपसे यही कहना चाहेंगे कि कितने वक्त चाहिए जी, गाने सुनते रहिए।

बिल्कुल जी, आपने बताना है हमें मैसेज करके आखिरकार जो मैंने म्यूजिक आप सभी के बीच में प्ले किया है वो कौन सी गाने का क्या नाम है उसका। चलिए आप सोच रहे होंगे कि एक बार और मैं रिपीट करूं, तो बिल्कुल अभी आपके पास मौका है, एक और चांस है कि आप इस म्यूजिक को सुनिए और बताइए आखिरकार इस म्यूजिक का जो इस गाने का क्या नाम है।

0: देखिए जी, जल्दी सोचिए जल्दी जल्दी, क्योंकि बारिश आने वाली है, अगले एक हफ्ते तक बारिश चलने वाली है। श्रोताओं, अगर आप मैसेज नहीं भेजेंगे ना तो बारिश भी नहीं आएगी, भगवान जी रूठ जाएंगे आपसे। तो भेजिए मैसेज। चलिए जी, आप सोचते रहिए, कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है और फिर मिलते हैं आप सभी से, और आप सभी के मैसेज शामिल करने वाले हैं और लेने वाली हूँ यहाँ से मैं क्या फर्र होने की इजाजत, क्योंकि शाम को भी आना है ना यूनिंग मस्ती शो में आप सभी के जो शाम है वो शानदार करने के लिए, यानी कि 5 से 7 बजे तक।
1: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: गुलाम लिखे हुए रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिला करे।

उठा माजा की। हेलो जी, गुड गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में। और देखिए बिंदास तो हो चुके, क्योंकि समय की बात करूँ तो माय गॉड 10:04 हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा क्या यार, जाऊंगी यार तभी तो आऊंगी शाम को। और एक आप सभी को यानी कि राम राम जी, सत श्री अकाल जी, तुसी आई हाय, बहुत अच्छे हो जी, चंगे हो जी, चेहरे पर आज मुस्कान आ गई बारिश को देख कर। आनी चाहिए बारिश को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, अब थोड़ी सी हमें राहत मिल गई है। फिलहाल मैंने आज आप सभी के बीच म्यूज़िक प्ले किया था, जिसको आपने सुनना था और बताने था कि ये कौन से गाने का म्यूज़िक है। चलिए जी, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ गए हैं, तो बढ़ते हैं आप सभी के मैसेजेस की तरफ। मयंक शर्मा जी कनेक्ट होते हैं पीतल बस्ती से कनेक्ट होते हैं, और ये कहते हैं राम राम रीना जी एंड आनंद भाई। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से, और इनका कहना है कि गाने जो अभी म्यूजिक आपने प्ले किया है वो है मनवा लागे। ओहो, बारिश में तो मन लग ही जाता है जी। भूपेश शर्मा जी का मैसेज आता है और इनका कहना है कि मनवा लागे। ओके,

0: मुरादाबाद से रणवीर सिंह हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और इन्होंने लिखा है कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता, बस मन भर जाता है तो लोग बात करना तो दूर, याद करना भी भूल जाते हैं। यही आजकल की सच्चाई है साथियों। क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने लिखी है सर, और सही बात है, कोई याद नहीं करता, जब काम पड़ता है तभी कोई आपको याद करता है। चलिए फिलहाल एक मैसेज आ चुका है, वॉइस मैसेज है, इसको सुनते हैं और इनकी मधुर आवाज आप सभी तक पहुँचाते हैं। चलिए जी।
1: राधे राधे रीना जी और आनंद जी, ये जो म्यूजिक चल रहा है, ताल मूवी से म्यूजिक लिया गया है। इसके बोल हैं, दिले बेचैन वे रस्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेताल है सुर है ना ताल है, आजा समरिया आ आ आ आ, ताल से ताल मिलाओ। आनंद जी मेरी आवाज बहुत ही बुरी है, वॉइस मैसेज मत सुनाइएगा।
0: अरे अरे मैम, किसने कहा कि आपकी आवाज बुरी है? आपकी आवाज तो इतनी मधुर है कि भाई हर कोई सुने तो मधुर मैं हो जाए। और जो आपने म्यूजिक जो सुना है, आपने बताया मैम, वो थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि ये ताल से ताल वाला नहीं है, मनवा लागे वाला है, ये हम मन लगाते हैं।
2: फ्रॉम द मूवी चेन्नई एक्सप्रेस।
0: हाँ, और आपकी आवाज सच में बहुत ही खूबसूरत है। कभी भी हमें अपने अंदर कमियां नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि हम जब खुद को पसंद नहीं करेंगे तो दूसरों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए खुद को पसंद करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। और टेक्स्ट मैसेज है उनको भी शामिल कर लें। गुड मॉर्निंग जी, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, भैया क्या बात है, नाम नहीं बताते हैं।
2: एक बात मैं कहना चाहती हूं,
0: एक मिनट। हाँ,
2: कि अलका जी ने गाया बहुत ही खूबसूरत।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत गाया। और ये इनका लास्ट 4 डिजिट है नंबर के, 1416। और आगे बढ़ते हैं। सो अगला मैसेज आता है हमारे पास। हाय रीना, आरजे रीना, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और ये कार्तिक गुप्ता मुरादाबाद लाइन पार से कनेक्ट होते हैं। सुबह में आपको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, आज वाटर कितना, यानी कि आज बरसात हो रही है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ अमरोहा से कनेक्ट होते हैं, नेहा जी, और गाना प्ले कर दीजिएगा जी। अरे क्या बात है जी। और इन्होंने भी आंसर बताया है, मनवा लागे।

0: हमारे पास यहाँ सबसे पहले मैसेज पहुंचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से, तो आप बनते हैं आज बिंदास मॉर्निंग शो के विनर। और आज आपने क्या करना है जी, आप वैसे लेकिन आज पकौड़िया खा लीजिए।
1: अच्छा।
0: नहीं नो दही बड़े, जब मैंने पूछा था क्वेश्चन तो इन्होंने कहा मैं दही बड़ा खा रहा हूँ, तो आज आप चाय पकौड़ी खाइए सर। क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश में चाय पकौड़ी ना हो तो मजा नहीं आता है, अधूरा अधूरा सा फील होता है। सो खुशी भी आ गई श्रोताओं, अगला जो शो है वो इन्हीं के साथ एंजॉय करेंगे। आप सभी की जो फरमाइश है वो पूरा करने के लिए भाई हाजिर हो चुकी है,
1: साथ साथ हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आए हैं अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए। एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एडवांस में हम गुड मॉर्निंग अभी विश कर रहे हैं। अभी रीना जी बोल रही थी लेकिन बीच में खुशी भी आ गई, अब जब ये आ जाती है ना तो रुकने का नाम नहीं लेती, तो मैंने कहा चलो हम भी गुड मॉर्निंग विश कर ही देते हैं।
0: और बैठी बैठी लड़की भाई क्या कर रही है, अपने फोटो को चेंज कर रही है, फोटो की रूप रेखा चेंज कर रही है।
1: हाय रब्बा, मैं वैसे ही इतनी सोनी हूँ।
0: सोनी सोनी लड़की है फिर भी उसको सोनी बना रही है फोटो को। आए होए क्या करे जी, आजकल सच बताओ बिना फिल्टर के काम चलता नहीं है ना।
1: हाँ ये तो आपने सही कहा है,
0: बिना फिल्टर के काम नहीं चलता भैया। आप सभी के मैसेज आ गए भाई, मेरे गाने प्ले कर दो। अच्छा आपने बताना है रीना जी हम चाय नहीं पीते हैं पकोड़े खाते हैं, क्या बात है जी, चाय मत पीजिए ब्लैक कॉफी पीजिए, लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लीवर पे जो भी फैट जमा होता है उसको छू मंत्र में वो गला देता है, तो चाय ना पिए क्योंकि चाय पीना गलत बात है। वैसे भी सुबह सुबह हम खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, गैस बन जाती है, उससे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है बॉडी के अंदर। तो आप ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, लेमन टी पी सकते हैं, लेमन टी बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए आप पकौड़ी खाइए क्योंकि आप विनर बन चुके हैं बिंदास मॉर्निंग शो के। और अभी मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत क्योंकि शाम को भी आना है भैया, अभी तक आपने भी चाय नहीं पीते तो मैं भी नहीं पीती।
1: अच्छा रीना एक बात मुझे बताओ, आप सुबह से ऑनियर आए हैं जब से और पकौड़ी की बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, तो क्या इरादा है आज बताओ।
0: नहीं इरादा कुछ नहीं है, देखो मैं ऑयली चीज छोड़ चुकी हूँ।
1: अगर अभी कोई खिलाए तो खाने में मन
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

0: श्रोताओं से भी इजाजत ले लेते हैं,
1: अब आपसे भी इजाजत लेते हैं और जाते हैं यहाँ से, मिलेंगे इवनिंग में जी।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। 1 जुलाई है आज और दिन भी बहुत ही खूबसूरत सा है, बुधवार का। जी हाँ, गणेश भगवान का दिन है और कहते हैं ना कि कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तो सबसे पहले प्रथम गणेश भगवान को ही मनाते हैं। जी हाँ, 2026 के 7वें महीने का पहला दिन है आज और आप सभी को जुलाई के मंथ की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड अभी मैं आपको बताती हूँ श्रोताओं, शो का नाम मॉर्निंग मसाला। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी, वक्त बताती हूँ 10:18 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। एंड और क्या कुछ बताना है वो अभी धीरे धीरे पता लगेगा आपको। आज मौसम भी बहुत ही औसम है, रिमझिम बारिश है, ऐसे सुहाने से मौसम में दिल करता है कि थोड़ा सा और सो लिया जाए, पर ऐसा मुमकिन नहीं होता है। अच्छा दोस्तों, मैंने सोचा कि जैसे सुबह सुबह बारिश हो रही थी और आज एक तारीख भी है, बच्चों के स्कूल भी ओपन हो चुके हैं। बच्चों के बहुत सारे ड्रीम्स थे, बच्चों ने बहुत सारे सपने सजाए थे। आज 1 जुलाई है, मैं स्कूल जाऊंगा, नई यूनिफॉर्म, नए कोर्सेज, नए फ्रेंड्स, नया क्लास, सब चीज़ें नई नई होंगी। और बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट था, लेकिन बहुत सारे बच्चे पहुँच चुके हैं स्कूल और बहुत नहीं गए क्योंकि आज बारिश हो गई है। तो दोस्तों, आज 1 जुलाई है और एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ करते हैं अपने शो की शुरुआत कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ लाइफ में चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और लिखा है तकदीर में। अक्सर हम कहते भी हैं ना दोस्तों कि लाइफ में मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि दोस्तों जो ऊपर वाले देते हैं ना वो बेहतर से बेहतरीन होता है। तो सब्र कीजिए, जो नहीं मिला है उसका अफसोस मत कीजिए, अफसोस मत करिए, एंड जो मिलने वाला है उसका इंतज़ार कीजिए क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। जितना आपने सोचा है ना उससे कहीं ज़्यादा आपको अच्छा मिलने वाला है। तो निश्चिंत रहिए, परेशान बिल्कुल भी मत होइए, खुश हो जाइए क्योंकि खुशी यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई है एंड खूबसूरत गाने भी लेकर आई है। तो चलिए करते हैं अपने शो की शुरुआत एक बेहतरीन गाने के साथ। मैं लौट कर आती हूँ, फिर आप भी अपने मैसेज मुझे पहुँचा दीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस सुहाने से मौसम में गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी विंडो के पास बैठकर आनंद लीजिएगा। मैं आपको सुनवाती हूँ बेहतरीन ट्रैक जो आपकी मॉर्निंग को बनाएंगे और भी ज़्यादा अमेजिंग।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
3: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
0: अरे तो परेशान क्यों होना है, ना धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
4: जय सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुझाव।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और ये अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना श्रेया घोषाल जी की बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस में। ए आर रहमान जी का म्यूजिक था एंड गुलजार जी के लिरिक्स थे और ऐश्वर्या जी ने क्या परफॉर्म किया यार, अमेजिंग। दोस्तों आपके यहाँ पर बैक टू बैक मैसेज आ रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर वक्त हुआ है 10:31 और हमारे पास सबसे पहले मैसेज आया है अलका वर्मा जी का बुद्धि विहार से। कहती हैं राधे राधे खुशी जी, राधे राधे। आज मौसम बहुत ही औसम है, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ जी मैम, और आपने गाना सुना, आपको बहुत आनंद आया होगा, उम्मीद तो यही करते हैं हम। एंड और भी मैसेज यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन दोस्तों मैसेज से पहले हम आपको आज के विषय के, आज के दिन के बारे में बता देते हैं। एंड 1 जुलाई है, क्या कुछ स्पेशल है, सारी अपडेट भी आपको मिलनी चाहिए ना। एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है। दोस्तों जुलाई का महीना सिर्फ बारिश के फुहार ही नहीं लाता बल्कि हरियाली का एक खूबसूरत संदेश भी लेकर आता है। यही वजह है कि हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत साल 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री के एम मुंशी ने की थी। इसका उद्देश्य था लोगों को पेड़ों के महत्व के प्रति जागरूक करना और अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना। बारिश के मौसम पौधे लगाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इस समय पौधों के प्राकृतिक रूप से पर्याप्त पानी मिलता है और उनकी वो जल्दी बढ़ते भी हैं। तो दोस्तों इस मौसम में आप भी अगर पेड़ लगाने के शौकीन हैं, आप भी प्रकृति से नेचर से प्यार करते हैं, तो आप भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पौधे अपनी बालकनी में, अपनी छत पर एंड अपने घर के गार्डन जो आपका है वहां पर भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों एक पेड़ सिर्फ हमें छाया ही नहीं देता बल्कि शुद्ध हवा, ठंडा वातावरण, पक्षियों का घर, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य भी देता है। इसीलिए अगर आपने अभी तक इस बारिश में एक भी पौधा नहीं लगाया है तो आज ही एक पौधा जरूर लगाइए। हो सकता है आपकी छोटी सी पहल आने वाले वर्षों में किसी की जिंदगी को ठंडी छाव दे। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगी पेड़ लगाने से क्या लाभ मिलता है। जी हाँ, कौन कौन से पेड़ हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। वैसे तो सभी वृक्ष बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ वृक्षों की अगर बात करें तो उनकी विशेषताएं क्या हैं वो मैं सब आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और यहाँ पर हमारे पास जो संदेश आए हैं मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है एंड हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर अगला मैसेज आया है आदरणीय प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से हमें सुनते हैं और रेगुलर अपना संदेश हमें पहुंचाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दुर्गेश सैनी जी का कल्याणपुर मुरादाबाद से। कहते हैं खुशी जी जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। आज उन्होंने मौसम को लेकर एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट की है, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करने की। थैंक यू सो मच, आपने अपना मैसेज हमें पहुंचाया है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो खुशी, मेरा नाम नीतू है। नीतू सिंह जी हमें मैसेज पहुंचाती हैं लाइन पार से। तो
आज आपने इतने दिनों के बाद हमें मैसेज किया है, हमें भूल गए थे क्या आप? हाँ देखिए नीतू जी, हम आपको रेगुलर याद करते हैं लेकिन आप हैं कि हमें भूल गई थी। अब हम आपसे नाराज हो जाते हैं पर अब नहीं होंगे क्योंकि अब आपने अपना मैसेज हमें पहुंचा दिया है। हाँ जी, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है फिलहाल, मतलब गर्मी से तो राहत मिल चुकी है। एंड इन्होंने एक प्यारे सी गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है। बिल्कुल मैम, पूरा प्रयास करेंगे हम नीतू जी इस ट्रैक को सुनवाने की। धन्यवाद, आपने अपना मैसेज हमें पहुंचाया है। अगला मैसेज मुझे यहाँ पर मिला है। जय श्री राम खुशी मैम, कैसे हालचाल है आपके? हम तो बिंदास हैं एकदम, बहुत खुश हैं आप सभी के जब यहाँ पर मैसेज आते हैं, आप सभी से रूबरू बात करने का मौका मिलता है यहाँ पर, तो खुश हो जाते हैं। एंड

दिन भी खूबसूरत हो जाते हैं। और इस पते हैं दोस्तों, आपसे बातचीत करने के लिए ना हमें पूरी एक रात का इंतजार करना पड़ता है। एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से, और ये कह रहे हैं कि मैम मुंबई में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इन्होंने भी एक बहाने की रिक्वेस्ट भेजी है प्यारे से बारिश के मौसम की। एंड हमें थैंक्स पहुंचाती हैं अलका वर्मा जी बुद्धि बिहार से, मोस्ट वेलकम मैम। आप हमें बस अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, आप ये हमारे लिए इससे बड़ा और कोई अनमोल तोहफा नहीं हो सकता है। सो बस आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। बाकी कुछ खूबसूरत गीत मैं आपको सुनवाती हूँ दोस्तों, लौट कर आती हूँ। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और अपने मैसेज भी हमें पहुंचाइएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस मौसम का आनंद उठाते रहिए।

0: 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई BP, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है. और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कौन सा पेड़ लगाने से क्या लाभ मिलता है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं. जी हाँ दोस्तों, अगर आप नीम का पौधा लगाते हैं, नीम का पेड़ लगाते हैं, तो नीम का पेड़ जो है ना साथियों, वो हवा को शुद्ध करता है, औषधि गुणों से भरपूर है और मच्छरों को दूर रखने में भी मददगार माना जाता है. एंड वहीं अगर आप पीपल का पेड़ लगाते हैं, तो ये वातावरण में ऑक्सीजन के महत्व के कारण इसे विशेष माना जाता है और ये जैविक विविधता को भी सहारा देता है. नेक्स्ट, अगर पेड़ की बात करें तो बरगद का विशाल पेड़, जी हाँ, बरगद का विशाल जो बरगद का पेड़ होता है, वो विशाल छाया देता है, मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है और कई पक्षियों व जीवों को अपना जीवों को आश्रय बनाता है. दोस्तों, अगर हम बात करें आम के पेड़ की, जी हाँ, जो अभी इस मौसम में आम मार्केट में खूबसूरत तरीके से आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट आम हैं. एंड आम जो स्वादिष्ट फल देने के साथ साथ अच्छी छाया भी देता है, तो आप आम का पेड़ भी लगा सकते हैं साथियों. एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम आंवले के पेड़ की, जी हाँ, जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और आयुर्वेदा में इसका विशेष महत्व है. एंड बात करें अगर हम अशोक के पेड़ की, तो सुंदरता बढ़ाता है, हरियाली को समृद्ध करता है और सजावटी वृक्ष के रूप में भी लोकप्रिय है. बात करें नेक्स्ट पेड़ की, तो गुलमोहर अपने लाल नारंगी फूलों से वातावरण को बेहद ही बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत बनाता है. तो दोस्तों, इन वन महोत्सव पर आप भी संकल्प लीजिए, एक व्यक्ति एक पौधा, क्योंकि जब पेड़ बढ़ेंगे तभी प्रकृति मुस्कुराएगी और हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा. तो पेड़ ज़रूर लगाइए, अपने घर में आप पौधे लगा सकते हैं एंड उनकी अच्छे से केयर भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल करना भी बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है. तो चलिए कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं. आपके यहाँ पर और भी संदेश आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ. बातों के साथ साथ, जानकारियों के साथ साथ आपके मैसेज भी बहुत जरूरी है. और हमारे पास यहाँ पर संदेश आया है. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सुहानी, शिवपुरी मुरादाबाद से. सुहानी हमें मैसेज पहुंचाती हैं. थैंक यू शिवानी, आपने हमें अपना मैसेज पहुंचाया है. सुहानी ने मैसेज पहुंचाया है, हमने शिवानी बोल दिया. देखिए सुहानी, हमने नया आपका नामकरण कर दिया है. और अगला मैसेज हमारे पास आया है. हेलो मैम, काशीपुर से मैसेज हमें पहुंचाते हैं. इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, बट गुड मॉर्निंग हमें विश किया है. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है. नमस्कार राधे राधे, आपको भी राधे राधे. ये हमें मैसेज पहुंचाते हैं भूपी शर्मा.

जी नगर पंचायत बागवाड़ा से कहते हैं, दोस्तों जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है, दोस्तों जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमें लगता है कि अब हमसे ना हो पाएगा, लेकिन उसी वक्त कोई एक सोच या कोई एक इंसान हमें फिर से हिम्मत देता है, तुम कर सकते हो, ये काम तुम्हारे लिए ही बना है। एंड एग्जैक्टली ये लाइनें जो है ना, इतनी खूबसूरत आपने जो लिखी है सर। एंड हमेशा हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं जब हम हार मान लेते हैं, या फिर कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड, कोई ऐसा दोस्त जो हमेशा हमें हिम्मत देता है कि नहीं आप कर सकते हो, आप ट्राई तो करो, अरे कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं कर सकते हो। तो इंसान को जब कोई ऐसे मोटिवेट करता है, जब कोई सपोर्ट करता है ना, तो वो आधी हार तो वही हार जाता है एंड उसकी आधी जीत वहीं पक्की हो जाती है। तो दोस्तों मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में खुद भी आगे बढ़िए और सामने वाले व्यक्ति को भी सपोर्ट कीजिए, वो भी आगे लाइफ में अच्छा करें, क्योंकि जब हम किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। कोई अच्छा करे या ना करे, लेकिन ईश्वर हमारे हर कार्य को देखते हैं और वो हमेशा हमारी पुण्य का हमें फल जरूर देते हैं, और मिलता भी है, देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। तो आप भी अच्छी कर्म करते चलिए, अच्छे कार्य कीजिए, जीवन में खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये कश्मीर से हमें मैसेज पहुंचाते हैं मेहराजुद्दीन जी का मैसेज हमारे पास आया है। कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। और इन्होंने लिखा है कि हमें एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल सर, आपको गाना हम जरूर सुनवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। अगला मैसेज हमारे पास आया है बबली अनजान जी का, गीता कश्यप जी का, गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम टू जुलाई, एंड नया महीना नया दिन, नई सुबह नई किरणें, नई उम्मीद नई आशाओं के साथ आपको जुलाई माह की हार्दिक शुभकामनाएं। बरसात का कोई भी गीत आप सुनवा दीजिएगा, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। एंड थैंक यू सो मच, आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज पहुंचाते हैं ना, तो बस मेरा दिल करता है कि यहीं ठहर जाऊं, आगे ना बढ़ूं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ना तो जरूरी है ना। और कुछ ट्रैक हैं जो आपका भी सब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए दोस्तों कुछ खूबसूरत गाने सुनते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। और ये जो अगला ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं, इस ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी है हमें नीतू सिंह जी ने लाइन पार से, तो सुन लेते हैं उनकी पसंद का गाना।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
5: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: कॉल 9045912348।

दोस्तों आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला। समय हुआ है 11:05 और अभी आपने खूबसूरत गानों का आनंद लिया है, कुछ एड ब्रेक का भी आपने सुना। एक्चुअली एड ब्रेक भी बहुत जरूरी है। और दोस्तों आज और क्या कुछ स्पेशल है वो भी आपको मैं बताती हूँ। मुझे पता है आप सबको इंतजार रहता है कि खुशी जी आएंगी तो कुछ न्यू जरूर हमें बताएंगी। कौन दोस्तों, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास आप तक डिलीवर करने के लिए। एंड दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, आज 1 जुलाई है और आज का दिन उन लोगों के नाम जो सिर्फ चिट्ठियाँ या पार्सल नहीं पहुँचाते बल्कि खुशियाँ, उम्मीदें और अपनों का प्यार भी हमारे दरवाजे तक लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज नेशनल पोस्टल वर्कर डे मनाया जाता है। ये दिन उन सभी डाक कर्मचारियों को धन्यवाद कहने का दिन जो धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, हर मौसम में अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। इस दिवस की शुरुआत 1997 में अमेरिका के एस्टल शहर से हुई थी ताकि डाक कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण को सम्मान दिया जा सके। भारत में भी डाक सेवाओं का इतिहास बहुत बहुत समृद्ध रहा है और हमारे पोस्टमैन हमेशा लोगों के जीवन का अहम हिस्सा भी रहे हैं। दोस्तों एक ज़माना था जब मोबाइल नहीं थे, तब एक छोटी सी चिट्ठी का इंतज़ार पूरे परिवार को रहता था। जैसे ही पोस्टमैन की साइकिल की घंटी सुनाई देती थी, हर कोई दौड़कर दरवाजे तक पहुंच जाता था। उस एक लिफाफे में किसी की नौकरी की खबर, होती थी किसी का प्यार, किसी की दुआएं और किसी का हालचाल। सच में वो एहसास ही अलग था ना दोस्तों। दोस्तों कागज पर लिखे अल्फाज में जज्बात बस जाते थे कि कागज के लिखे अल्फाज में जज्बात बस जाते थे, एक चिट्ठी से ही अपने दिल के पास आ जाते थे। सलाम है उन डाक कर्मचारियों को जो हर घर तक मुस्कुराहट और उम्मीदें पहुंचाते थे। अच्छा दोस्तों, मैं भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ आज की सुबह। एंड इतना खूबसूरत सा दिन आज सेलिब्रेट किया जाता है, तो कुछ आपकी भी पुरानी यादें हैं ना, उनको हम फिर से ताजा करते हैं। एंड आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आज की सुबह, थोड़ा सा तो एंड आपके दिमाग को दौड़ाना चाहिए ना। आज वैसे भी सुहाना सा मौसम है और दिमाग आपका और ज्यादा वर्क करेगा, क्योंकि कभी कभी तो गर्मी में परेशान हो जाते हैं लेकिन इस सुहाने से मौसम में परेशान नहीं होते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपने कभी अपने हाथों से किसी के लिए चिट्ठी लिखी है? हाँ, क्या आपने कभी अपने हाथों से किसी के लिए चिट्ठी लिखी है? किसके लिए लिखी है और क्यों लिखी है, जरा ये भी बता दीजिएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी अपने प्यारे प्यारे हाथों से किसी के लिए चिट्ठी लिखी है? बताइए हमें भी, कौन है वो जिनके लिए आपने प्यारे से हाथों से चिट्ठियाँ लिखी हैं? अपना संदेश हमें पहुंचाएगा, हमें बेसब्री से इंतजार है आपके प्यारे प्यारे संदेशों का। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और यहाँ पर और भी संदेश आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवली जी का, और ये कहते हैं आरजे खुशी जी को गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रणवीर सिंह जी का मुरादाबाद से, एंड ये कहते हैं हेलो खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये कहते हैं मैसेज करने की कोई वजह नहीं, कुछ खास लोग होते हैं जिनकी आवाज़ सुनकर ही सुकून मिल जाता है। एफएम मुरादाबाद सुनते रहिए और बारिश का आनंद लेते रहिए। अरे वाह वाह, क्या बात है, सुबह सुबह आप तो छा गए सब।
अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी का, और ये कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, मौसम बहुत ही प्यारा है, इस सुहाने से मौसम में एक गाना हमें सुनवा दीजिएगा। श्योर मैम, पूरी कोशिश करेंगे हम एक प्यारे से गाने की आपको सुनवाने की एंड सभी श्रोताओं को सुनवाने की। तो श्रोताओं, आप भी मुझे मैसेज पहुंचाइएगा कि आपने कभी किसी के लिए चिट्ठी लिखी है, किसके लिए लिखी है, ये भी बताइएगा। जी हाँ, मैं आपको ना एक स्टोरी बताने वाली हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, बहुत प्यारी सी है, एंड वो कौन सी और किन की स्टोरी है वो मैं आपको आकर बताऊंगी, अभी नहीं सब कुछ बताने वाली हूँ, तो इंतजार कीजिए और एक सुहाना सा खूबसूरत सा ट्रैक यहाँ पर सुनिएगा। बस मैं आती हूँ कुछ खूबसूरत प्यारे से गीतों के इस पार, यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6।

0: हेलो दोस्तों, सुबह की ठंडी हवाओं के साथ एक बार फिर से खुशी आपका स्वागत करती है आपके अपने एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों वक्त हुआ है 11:20 और ये खूबसूरत सा ट्रैक अभी आपने सुना, क्या मौसम आया है। वैसे मौसम बहुत ही औसम है आज का, और ये ट्रैक अभी आपने सुना साधना सरगम साथ में उदित नारायण जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में फ्रॉम द मूवी अनाड़ी से जो 1993 में आई थी। और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी दुर्गेश सैनी जी ने कल्याणपुर मुरादाबाद से। और दोस्तों आज मैंने आपसे मालूम किया था एक प्यारा सा क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था कि आपने कभी किसी के लिए चिट्ठी लिखी है, क्या आपने कभी अपने प्यारे हाथों से किसी के लिए चिट्ठी लिखी है, किसके लिए लिखी है, कौन है वो बताइए बताइए, इतना मत शर्माइए। ओहो आप हमसे भी शर्माते हैं, बताओ हम तो आपके मित्र हैं ना, अब दोस्तों से थोड़ी अच्छी बातें हैं, तो बताओ आपने किन के लिए चिट्ठी लिखी है। दोस्तों यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे संदेश तो आ ही रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जब लौट कर आऊंगी तो आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी है। जी हाँ, आज नेशनल पोस्टल वर्कर डे है, एंड इसी पर मुझे अपने बचपन की खूबसूरत कहानी याद आ रही है। एंड ये रियलिटी है, एक बार मेरी मम्मी एंड नानी जी के घर गई थी, एंड पापा काम की वजह से समय पर मम्मा को लेने नहीं जा पाए, एंड देखते देखते लगभग 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। उस समय मोबाइल नहीं था, ना वीडियो कॉल का कुछ ऐसा था लाइक, तो बस मम्मी ने चिट्ठी लिखी, और जो दोस्तों चिट्ठियां होती है ना वो दिलों को जोड़ती हैं। तो मम्मी ने पापा जी को एक चिट्ठी लिखी, जब वह चिट्ठी पापा जी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत जाकर मम्मी को लेकर आए, और मम्मी बताती हैं कि उस दिन जब उन्होंने मतलब पापा जी उनके सामने वहां पर पहुंचे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी और आंखों की खुशी शब्दों में बयां नहीं करी जा सकती है दोस्तों आज भी। एंड लाइक मम्मी जब वो चीज़ें हमें बताती है ना तो हम इतना खुश होते हैं, और कहते हैं कि पहले का टाइम कितना खूबसूरत था ना, इंसान भले ही दूर हुआ करते थे लेकिन एक चिट्ठी एक लेटर वो प्यार से लिखा हुआ कितने संभाल कर रखते हैं ना, और कितना प्यारा होता है। एक्चुअली 15 दिन महीनों तक इंतज़ार करना, फिर वो चिट्ठी मिलना, उसके बाद फिर से चिट्ठी लिखना, फिर से वही सिलसिला मतलब चलता था, और कितना खूबसूरत होता ना, कितना इंतज़ार करना पड़ता था। अब तो जब से सोशल मीडिया आया है 1 सेकंड नहीं लगता है, फटाक से मैसेज पहुंच जाता है। दोस्तों तब एहसास हुआ कि एक छोटी सी चिट्ठी सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं होती थी, वह अपनेपन, इंतज़ार और प्यार का संदेश होती थी। इसलिए आज मैं दिल से उन सभी डाक कर्मचारियों को धन्यवाद कहना चाहूँगी जिनकी वजह से न जाने कितने परिवारों की खुशियाँ एक दूसरे तक पहुँचती थी। दोस्तों चिट्ठी लिखने का भी एक अलग ही यू नो अनुभव होता है, एक अलग ही खुशी होती है ना। मैंने भी आपसे जानना चाहा है, आप मुझे बताइए कि आपने कभी किसी के लिए चिट्ठी लिखी है, जल्दी जल्दी से बता दूं, बहुत इंतजार करवा रहे हो आप हमें। हाँ दोस्तों वक्त हुआ है 11:24 और यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, टेक्स्ट मैसेज भी लगातार आ रहे हैं, तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। एंड बिना किसी देरी के क्या क्या पहुँचाते हैं हमारे प्यारे प्यारे श्रोता, हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अमरोहा से नेहा जी का, और नेहा कहती है नमस्ते खुशी मैम, क्या हाल है आपके, बहुत अच्छे हैं हम, आपके एंड इन्होंने कुछ लिखा है हमें आज बहुत टाइम के बाद आपको सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी आवाज सुन ली है, मन खुश हो गया है। अच्छा जी ये बात है, ओहो थैंक यू। हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहे। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करने की। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है संजू का और ये कहती हैं, कहती हैं कि माँ की कहानियां थी, परियों का फसाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, चाहत थी चांद को पाने की, लेकिन खुशी दी दिल आपका दीवाना था। ओ हो हो इतनी दीवानगी, थैंक यू। और इन्होंने ट्राई की रिक्वेस्ट भेजी है, बारिश की गाना सुनना चाहती हैं तो सुनवाएंगे बिल्कुल। अगला मैसेज हमारे पास आया है कार्तिक गुप्ता जी का मुरादाबाद लाइन पार से, एंड आज आपको सुनकर अच्छा लग रहा है। ओके जी थैंक यू। तो चलो दोस्तों अभी सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसकी बात करेंगे आपसे और भी बातें, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम भी हो गया है राइट नाउ, तो एड ब्रेक के बाद म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आरजे खुशी आएगी, आपको और भी इन्फॉर्मेशन देनी है, बस आप बने रहिए, चिपके रहिए, सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने, तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट, विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
8: करारे पीछे हैं ये सावन की रिमझिम झड़ी है, कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुहाने गानों का सफर जारी है दोस्तों, और ये खूबसूरत ट्रैक अभी आप सुन रहे थे सत्येंद्र सरताज जी की आवाज में। देखिए दोस्तों, गल तो मेरे बस में भी नहीं रहती है, जब इतने सोने गाने मैं सुनती हूँ ना, तो दिल जो है मेरा वो मतलब ना खो जाता है एक अलग ही दुनिया में। लेकिन फिर मुझे याद आया कि अपने दोस्तों से भी तो अभी बातचीत करनी है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6, और इस समय हमें बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे लिसनर्स ऑन द वे कार में हैं जो इस समय हमें सुन रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पर एक खूबसूरत से ट्रैक की रिक्वेस्ट आई है यहाँ पर ऋतिक भारद्वाज और साथ में आशीष की, एंड ये ट्रैक सुनना चाहते हैं चुनरी चुनरी। बहुत ही अमेजिंग ट्रैक, अभी न्यू जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों, इस ट्रैक को तो हम सुनवाएंगे ही, लेकिन और भी मैसेज जो आए हैं यहाँ पर उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है पूजा जी का विकास नगर से, एंड ये कहती है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा कैसे हालचाल है आपकी। और आज मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत ही खूबसूरत सा है। इस मौसम में ना अपने फेवरेट गाने हो और गर्मा गर्म कॉफ़ी हो, एंड आराम से हम बैठे हों कहाँ पर, हाँ घर के मतलब हम बैठे हों विंडो के पास, ठंडी हवाएं चल रही हो, रिमझिम बारिश हो रही हो, प्यारे गाने हो, तो माहौल अलग ही हो जाता है ना दोस्तों। चलो, बहुत सारी बातें मैंने कर ली हैं, अभी लौट कर आ रहे हैं कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक के उस पार। आप कहीं मत जाइए, यूं ही स्माइल कीजिए, और हाँ हौले हौले डांस भी कीजिए, क्योंकि गाना बहुत ही बेहतरीन है।

0: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: कोई मिल गया,
8: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हाँ जी दोस्तों, देखिए सुबह सुबह खुशी ने आपको डांस करा ही दिया। हाँ, ऐसे गाने हम प्ले करते हैं ना यहाँ पर कि हम सोचते हैं कि हमारे जो श्रोता, इतने प्यारे प्यारे जो लिसनर्स हैं, सभी का दिन खूबसूरत हो जाए। और जब एनर्जेटिक ट्रैक चलते हैं ना, तो थिरकने पर ना अपने आप मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना, जी हाँ, सिटी का नंबर वन रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी। दोस्तों कहते हैं ना कि संगीत वो भाषा है जिसे पूरी दुनिया बिना शब्दों के भी समझ लेती है। और जब बात बांसुरी की हो तो सबसे पहले जिन नाम की धुन कानों में गूंजती है वो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। दोस्तों आज 1 जुलाई को भारत के महान शास्त्रीय बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्मदिन मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि बेटा पहलवान बने, लेकिन किस्मत ने उन्हें संगीत का साधक बनाया। कहते हैं ना कि उन्होंने अपने पिता से छुपकर संगीत सीखना शुरू किया और फिर बांसुरी को ही अपना जीवन बना लिया। साथ ही वो 15 साल की उम्र में उन्होंने संगीत की शिक्षा शुरू की थी। बाद में बनारस के पंडित भोलानाथ जी से वर्षों तक बांसुरी सीखी। इसके बाद उन्हें माता अन्नपूर्णा देवी का सानिध्य मिला। अन्नपूर्णा देवी जी ने उनसे कहा कि अब तक जो सीखा है उसे भूल कर नए सिरे से सीखो। उन्होंने बाएं हाथ से बांसुरी बजाना शुरू किया और यही समर्पण उन्हें दुनिया के सबसे महान बांसुरी वादकों में शामिल कर गया। साल 1957 में आकाशवाणी कटक से जुड़े और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ मिलकर मशहूर जोड़ी शिव हरी बनाई और चांदनी, सिलसिला, लम्हे और डर जैसी फिल्मों को अपनी मधुर धुनों से अमर कर दिया। उन्होंने भारतीय बांसुरी की मिठास को दुनिया के हर कोने तक उन्होंने पहुंचाया। आज भी मुंबई और भुवनेश्वर में अपने वृंदावन गुरुकुल के माध्यम से वे गुरु शिक्षा परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और वर्ष 2000 भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी प्रदान किया गया। दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने हमें सिखाया कि अगर मन में सच्चा जुनून हो तो साधारण सी बांसुरी भी पूरी दुनिया के दिलों को छू सकती है। हम सभी की ओर से इन महान संगीत साधक को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामनाओं के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहें। और दोस्तों अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे संदेश आए हैं, उनको भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है राधिका का और ये कहती है, मेरी तरफ से खुशी मैम को गुड मॉर्निंग। खुशी मैम, मैंने अपनी मम्मा के लिए पकौड़ी बनाई है, आप भी बरसात के मौसम में चाय पकौड़ी खा लीजिएगा। थैंक यू, आपने हमें कहा उसके लिए धन्यवाद। एंड कहती है कि आज हमें एक गाना सुनवा दीजिएगा, कोई भी अपनी पसंद का, पूरी कोशिश करेंगे हम आपको सॉन्ग सुनवाने की। नेक्स्ट मैसेज रणवीर सिंह जी का आया है और ये कहते हैं, खुशी मैम हम तो रेडियो स्टेशन पर अब भी चिट्ठी लिखकर भेज रहे हैं, हमें एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा चांदनी फिल्म का, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। थैंक यू अपना मैसेज पहुंचाने के लिए सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, बाबू अंसारी जी, महराज अंसारी जी। और ये कहते हैं, खुशी मैम आपको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, आपका कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छा लगता है और आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना संदेश हमें पहुँचाया है।
नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है, नमस्कार मैम, शाबुद्दीन जी का मैसेज हमारे पास आया है हसनपुर जिला अमरोहा से, और इन्होंने भी गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है। सो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, मैं आपका ट्रैक भी आपको सुनवाऊंगी। अगला मैसेज हमारे पास आया है विकी सागर जी का मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग हमें विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन आपको मैं मिलने वाली हूँ 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हर मौसम का लुफ्त उठाइए और अपनों के साथ टाइम भी बिताइए। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन। जब आप सब मुस्कुराते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। प्लास्टिक निकलने या उसमें फंसकर मर जाते हैं।
1: जहां एक तरफ इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, वहां सालों से इसके खिलाफ मुहिम भी चलाई जा रही है। मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो स्कूल में हमें नारे लगवाने के लिए रेलियों में भेजा जाता था, धरती माँ करे पुकार, प्लास्टिक से साफ रखो इसका दरबार। हम तो घर घर जाकर लोगों के घरों से प्लास्टिक की थैलियाँ भी इकट्ठा करते थे। एक एनजीओ उन्हें हमारे स्कूल से ले लेती। इस काम के लिए हमें टी शर्ट भी मिलती थी। उस समय जब हम सोचते थे कि ये सिर्फ स्कूल के बच्चों का काम है, लेकिन आज समझ आता है कि पर्यावरण की रक्षा न स्कूल के बच्चों की न एनजीओ की है, हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: और बच्चों की बात करें तो छोटे सात सेहत सिंह भी तो अब अपने स्कूल में ग्रीन ब्रिगेड के हेड हैं। उसने तो पूरे गांव में हर घर में जाकर सबको समझा दिया, अब प्लास्टिक की थैलियां नहीं लानी, सामान लेना है अपने कपड़ों के झोले ले जाओ और उसी में सामान लाओ। आप ही के कदमों पर चल रहा है आपका बेटा।
1: हाँ जी, उसका जोश देखकर अच्छा लगता है। पर सच बताऊं तो उसकी 5 जून की स्पीच में भी मैंने उसकी काफी मदद की है। रिसर्च है कि उसमें मेरे साथ, लेकिन असली पूरी बस्ती को समझाने की चुनौती उसी ने ली है। अभी तो हर दुकान और ठेले वाले के पास जाने का बीड़ा उठाया है इन बच्चों ने।
0: बिल्कुल भाभी, वैसे एक बात बताइए, आपने तो इस विषय पर काफी रिसर्च कर ली है, ये विश्व पर्यावरण दिवस शुरू कब हुआ?
1: इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी, जब स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तभी से हर साल 5 जून को ये दिन मनाया जाता है, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों को जोड़ा जा सके। हर साल एक नई थीम अनाउंस होती है।
0: और इस साल की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण। हमने कुछ बातें तो की हैं, लेकिन आखिर प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए इतना खतरनाक क्यों है?
1: देखिए, प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या है कि ये जल्दी नष्ट नहीं होता। एक बार बना तो सैकड़ों साल बना रहेगा, और जब ये टूटता है तो माइक्रो प्लास्टिक बनता है, जो मिट्टी, पानी और हवा में मिल जाता है, और अब तो हमारे शरीर में भी घुस गया है।
0: शरीर में प्लास्टिक, भाभी ये तो डराने वाली बात है।
1: हाँ, सच्चाई तो यही है। जब हम प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीते हैं या प्लास्टिक कंटेनरों में खाना गर्म करते हैं, तो उससे निकलने वाले केमिकल हमारे शरीर में जाते हैं। इससे हार्मोन गड़बड़ हो सकते हैं, बांझपन, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।
0: और ये माइक्रोप्लास्टिक आखिर होता क्या है?
1: बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं ये। नमक, शहद, दूध या यहाँ तक कि हवा में भी पाए जाते हैं। जब जानवर इन्हें निगल लेते हैं तो वह बीमार पड़ते हैं, और जब हम वो मछली खाते हैं या दूध पीते हैं तो ये हमारे शरीर में पहुँचता है।
0: और कई गाँव में लोग प्लास्टिक जलाते हैं, कुछ महिला तो इसे ईंधन के रूप में भी

0: इस्तेमाल करती हैं।
1: ये तो और भी खतरनाक है। प्लास्टिक को जलाने से निकलती हैं जहरीली गैस डाइऑक्सिन फिरॉन जैसे, ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, बच्चों की ग्रोथ पर असर डालती है और अगर बारिश हो रही हो तो ये गैस पानी में घुलकर जमीन और फसलों को भी प्रदूषित कर देती है।
0: तो समाधान क्या है भाभी?
1: समाधान है रिफ्यूज रिड्यूज रिसाइकल रियूज। रिफ्यूज यानी जो प्लास्टिक जरूरी नहीं उसे लेने से मना कर दो। रिड्यूज मतलब जितना कम इस्तेमाल हो सके उतना कम करो। रियूज एक ऐसी चीज को बार बार उपयोग में लाओ। रिसाइकल प्लास्टिक को सही तरीके से इकट्ठा करके रिसाइकल करो।
0: अब प्लास्टिक बैंक की बात आपने की थी।
1: हाँ, प्लास्टिक बैंक एक ऐसा ढांचा है जिसमें लोग अपना प्लास्टिक डाल सकते हैं।
0: मैं समझ नहीं पा रहा कि ये बैंक कैसे हो सकता है, क्या आप समझा सकती हैं कि ये असल में क्या है?
1: बिल्कुल, आप एक ऐसे मजबूत पिंजरे जैसे संचारण की कल्पना कीजिए जो आमतौर पर पहले लोहे की जाल या बांस से बनी होती हैं। इसमें एक छोटा सा मुंह होता है जहां लोग अपना प्लास्टिक कचरा डाल सकते हैं। इस ढांचे को प्लास्टिक बैंक कहा जाता है। इसे प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर लगाया जा सकता है जैसे स्कूल मंदिर बाजार या पंचायत कार्यालय के पास, ताकि गांव का हर व्यक्ति आसानी से इसका उपयोग कर सके। जैसे बैंक में पैसे को सुरक्षित रखते हैं वैसे ही प्लास्टिक कचरे को एक जगह इकट्ठा करके उसे सड़कों पर फैलाने नालियों में जाने और गायों जैसे जानवरों के गलती से खा लेने से रोकता है। और सीमेंट का बेस देकर बनाया जाए तो बारिश में भी टिकाऊ रहेगा।
0: ओ, तो सिर्फ प्लास्टिक बैंक लगाना ही काफी नहीं बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका सही उपयोग हो और इनकी देखभाल होती रहे। इसके सही इस्तेमाल के लिए ग्राम पंचायतों को आगे आना होगा। पंचायत के साथ मिलकर जागरूकता फैलाकर और इस पहल को अपनाकर समुदाय भी इसमें अहम भूमिका निभा सकता है।
1: पंचायत ही क्यों, जैसे मैंने कहा स्कूल कॉलेज बैंक सरकारी और प्राइवेट दफ्तर कोई भी लगा सकता है, लेकिन भर जाने पर इन्हें खाली करना और उस प्लास्टिक को रिसाइकल या इस्तेमाल के लिए कदम उठाना जरूरी है।
0: लेकिन पंचायतों को क्या करना चाहिए?
1: पंचायतों को खुद आगे आकर लोगों को जोड़ना चाहिए। महिला मंडली युवक मंडली और स्कूल मिलकर इसे आंदोलन को बढ़ा सकते हैं।
0: और महिलाएं भी क्या इस काम में भाग ले रही हैं?
1: हाँ, बहुत से स्वयं सहायता समूह अब इस पर काम कर रहे हैं। हमारी समिति ने भी अब तय किया है अब से कपड़े के थैले ही चलेंगे। हमारे SHG की महिलाएं कपड़े के झोले बनाकर बेच रही हैं और प्लास्टिक बोतलें इकट्ठा करके रिसाइकल यूनिट को दे रही हैं।
0: और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कोई और समाधान अपनाए जा रहे हैं?
1: हाँ, कई गांवों में तो ग्रे वाटर यानी बर्तन और कपड़े धोने का पानी रसोई बगीचे में दिया जाता है। इससे सब्जियां भी उगाते हैं और पानी की बर्बादी भी नहीं होती।
0: और सरकार क्या कर रही है?
1: सरकार ने 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है। स्वच्छता भारत मिशन में प्लास्टिक कचरे का प्रबंध प्लास्टिक से सड़कें बनाना और कंपनियों को EPR के तहत अपनी पैकिंग वापस लेने की जिम्मेदारी सौंपी है।
0: भाभी, कोई और उदाहरण है आपके पास जो प्रेरणा दे सके?
1: तमिलनाडु के कुछ जिलों में प्लास्टिक से दीवारें बनाई जा रही हैं जो गर्मियों में इंसुलेशन देते हैं, और कुछ जगह पर बांस के पेड़ों के नीचे कूड़े केंद्र बनाए गए हैं ताकि बदबू ना फैले।
0: और बच्चों का रोल?
1: बच्चों को शुरुआत सिखाना होगा कि प्लास्टिक जहर है। हमारे स्वस्थ सिंह अब स्कूल में स्टील की बोतल और टिफिन ले जाता है और भी बच्चों को प्रेरित किया है उसने। यही आदत बदलाव लाएगी।
0: बहुत सही कहा भाभी, लेकिन कई लोग के मैसेज आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कहें उन्हें?
1: श्रोताओं, छोटा छोटा बदलाव ही बड़ा परिवर्तन लाता है। आप ये तो आज से ही शुरू कर सकते हैं। बाजार जाते समय थैला साथ रखें, प्लास्टिक बोतल दोबारा इस्तेमाल ना करें, बच्चों को टिफिन और पानी स्टील के बर्तन में दें, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करें, प्लास्टिक बैंक की पहल को समर्थन दें।
0: प्लास्टिक बैन का मुद्दा तो पंचायत के चुनाव में भी उठाया जाना चाहिए।
1: बिल्कुल, जब लोग वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए क्या आप प्लास्टिक के खिलाफ काम करेंगे, क्या गांव में कूड़ा प्रबंध की व्यवस्था बनाएंगे।
0: दोस्तों, जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी कोई भी योजना पूरी नहीं हो सकती। सरकार और संस्थाएं तभी सफल होंगी जब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और एक प्लास्टिक फ्री माहौल के प्रति प्रतिबंध रहेंगे।
1: सोचिए क्या हम ऐसा भविष्य चाहते हैं जहां हर नदी, हर खेत, हर शरीर में प्लास्टिक भरा हो, या फिर ऐसा भविष्य जहां हमारी धरती मुस्कुराए, हवा शुद्ध हो और पानी निर्मल हो। दोस्तों प्लास्टिक नहीं, प्रकृति से प्यार करो, धरती माँ को अब और न बीमार करो।
0: वाह भाभी, यही भावना हमें चाहिए। तो साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब 4R को अपनाने का संकल्प लें, यानी प्लास्टिक को रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करें। हम अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए आज हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं।
1: मैं शपथ लेती हूँ, मैं प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करूंगी, अपने परिवार और गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 4R का पालन करूंगी और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगी।
0: साथियों, यही हमारी असली सेवा है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पर्यावरण बचाइए, प्लास्टिक से दूरी बनाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं लेता हूँ अभी के लिए अलविदा। आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। जल्दी मुलाकात करेंगे एक और नई एपिसोड के साथ, एक नई बात के साथ जो आपकी सेहत के लिए हो सकती है लाभदायक।

0: भरत जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 और हम बात करने वाले हैं सेहत से लाभ कई। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो थोड़ा अलग है। सच कहूँ तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने बहुत ही सरल लगता है, लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत रखता है। और इस विषय को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी बताते हैं, आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आज के शो में।
2: आर्जेरीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। आपने सारे प्यार और भरोसे के लिए आज तो आपने शुरुआत ही इतनी भावुक कर दी है कि लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। आर्जेरीना,
1: बात तो सच में बहुत ही बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाला कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है, या मैं पूरी तरह गलत सोच रही हूँ?
2: अरे आर्जेरीना, नहीं नहीं, आप पूरी तरह भी गलत नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चे के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगाकर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है, इसीलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
1: अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बात, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं, तो फिर इस तरह के तरीके की जरूरत क्यों आई?
2: देखिए, यही वो जगह है जहां हम सच्चाई को समझते हैं, और हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले 4 हफ्तों में ही दुनिया छोड़ जाते हैं। सोचिए, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती है और खत्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चों की देखभाल कितनी जरूरी है। आर्जेरीना,
1: ये तो सच में बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है भैया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
2: जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है, बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की जरूरत होती है आर्जेरीना, जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती है।
1: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इलाज होता है? जैसे मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
2: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहा जाता है। ये मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्म और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि हर जगह ये उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गांव और दूर दराज इलाकों में। और हाँ, जहाँ उपलब्ध होती है वहाँ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है।
1: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया, अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए, तो परिवार क्या करे?
2: यहीं पर कंगारू मदर केयर की उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी और चीज की। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श और उसका प्यार, उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती हैं और अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है, जो उस माँ के गर्भ से मिलती थी और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा देता है।
1: सिर्फ माँ के स्पर्श से ये बात सुनने में तो बहुत ही अद्भुत लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रही है कि ये आखिर संभव कैसे है। क्या सच में सिर्फ पास रखने से ही बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
2: देखिए आर्जेरीना, यह कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ सीने से लगाकर सीधा रखती है, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं, जिसे कंगारू अपने छोटे बच्चों को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगाकर रखती है और इस दौरान बच्चे को न केवल गर्मी मिलती है बल्कि उसे पूरी तरह सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद ही जरूरी है।
1: ओहो, तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे को गोद में ले लिया जाए वही काफी है?
2: नहीं आर्जेरीना, सिर्फ गोद में लेना ही काफी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधा शरीर से लगाकर रखा जाता है ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क

0: संपर्क में रहे। इससे बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी से संतुष्ट रहती है और वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और ये एक तरीका बच्चे को वही माहौल देता है जैसे उसे गर्भ में मिलता था।
1: सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीका सच में इतना असरदार है?
0: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल असरदार है। कई शोधों में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई है उनकी मृत्यु दरें कम हो रही हैं और उनका वजन तेजी से बढ़ रहा है, वो ज्यादा स्वस्थ पाए गए हैं। यहाँ तक कि लंबे समय से भी ऐसे बच्चों के शरीर और मानसिक का विकास बेहतर देखा गया है।
1: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे के जिंदगी बचा सकता है, ये सोच कर ही मन भर आता है।
0: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल। और इस साल का यह संदेश भी है, साइलेंस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है आर्जेरीना।
1: वाह, ये बात दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। अच्छा सेहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर पर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
0: जी हाँ आर्जेरीना, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चा घर लौटते हैं तो वही इसे भी जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्यकर्ताओं की सलाह जरूर ली जाए।
1: तो फिर इसे सही तरीके से करने का तरीका क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि सभी श्रोताएं समझ सके।
0: बिल्कुल आर्जेरीना, इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सिर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह रखा जाता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि वह हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
1: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
0: आर्जेरीना, इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध ही दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है। जो ताकत उसे माँ का दूध दे सकता है वो कोई और नहीं, और सबसे अच्छा पोषण होता है माँ का दूध, जो ताकत भी देता है, बीमारियों से भी बचाता है और उसके विकास में भी मदद करता है।
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है, यानी एक ही तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
0: बिल्कुल आर्जेरीना, आपने बिल्कुल सही समझा, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ को स्पर्श करके और माँ के दूध से बच्चे की सुरक्षा और पोषण और सुकून तीनों ही मिल जाते हैं।
1: अरे भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है, पर जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
0: देखिए आर्जेरीना, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है, उसकी सांसें भी ज्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती हैं। ऐसे में बच्चा आम तौर पर ज्यादा समय तक आराम से सोता है, कम रोते हैं और उनका वजन भी सामान्य तेजी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शरीर और मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
1: ये तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका असर माँ पर भी पड़ता है?
0: जी हाँ आर्जेरीना, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध बेहतर तरीके से बनने लगता है, साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता भी बनता है, जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि माँ वो अपने बच्चे को अच्छे से उसकी देखभाल कर पा रही है।
1: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ, इतनी साधारण सी चीज लेकिन असर इतना गहरा। अच्छा सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है, हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी भूमिका होती है या ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही होती है?
0: आर्जेरीना, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो यह है कि पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
1: अच्छा, मतलब पिता भी अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदे दे सकते हैं जो माँ देती है?
0: जी हाँ अर्चरीना, पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब भी पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनका बच्चा उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
1: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
0: देखिए अर्चरीना, बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो ना सिर्फ बच्चे को फायदा होता है बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो भी अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और परिवार का माहौल सकारात्मकता से भरा होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
1: तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखें। अगर पिता भी इसमें शामिल होते हैं तो बच्चों को दुगना प्यार और देखभाल मिलता है। लेकिन सेहतिया भैया, हर चीज के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी होती हैं। क्या कंगारू मदर केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: बिल्कुल, कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए तो उस समय मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखें ताकि पूरी तरह बच्चे पर आप फोकस रहें। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कोई तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है यानी छाती का हिस्सा, वह भी साफ और स्वच्छ होना चाहिए अर्जेरीना।
1: ओहो, और इसे कितने देर तक करना चाहिए? क्या इसका कोई समय होता है?
0: कम से कम अर्जेरीना एक घंटा तो इसे लगातार ही करना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा समय दिया जा सके उतना ही बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं, जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
1: सेहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी। शुरुआत में थोड़ा झिझक थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए।
0: बिल्कुल अर्चरीना, यही तो हमारा मकसद है, जानकारियों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना, ताकि हर परिवार अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर सके। और अगर कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी ना खोए।
1: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से सही जानकारी जरूर ले। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होता है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं आज की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त होगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही लाभ कई। श्रोताओं, मिलेंगे फिर आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास सेनू अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुजाता जी।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
1: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
0: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
1: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
0: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
1: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए। उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं, तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
0: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
1: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है

0: होगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
1: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है।
0: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
1: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
0: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
1: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
0: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का आप प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
1: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
0: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
1: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
0: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है लेकिन इसके साथ कैसे प्रसार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी, तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
1: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
0: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे, तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें। कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
1: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
0: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
1: सर आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
0: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता ये स्वास्थ्य की कुंजी है और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हिंदू सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर, जाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए शो लेकर आ गए हैं सोच बदलो, जो कि अक्सर आप आनंद को और प्राची को ही सुनते थे, लेकिन आज रीना, खुशी और प्राची भी आप सभी के साथ है। हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं सोच बदलो शो में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सोच बदलो, और आज का सवाल है क्या आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे या फिर उन बचपन बदल गया है। तो ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले, यानी कि देखिए, अब बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो हमारा बचपन था और आजकल के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर किया जाता है। उनको अगर मतलब थोड़ी सी भी धूल लग जाती है ना तो मम्मी पापा बोलते हैं यार धूल लग गई, इनको साफ करो जल्दी जल्दी, कीटाणु लग गए हैं। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, हम कितने धूल मिट्टी में खेलते रहते थे, लेकिन मम्मी फिर भी यही बोलती थी अरे और खेलो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी धरती माँ है और धरती माँ के गोद में तो हमें खेलना ही चाहिए। तो प्राची मैं तुमसे बोल पूछना चाहूंगी कि तुम क्या कहना चाहोगी।
1: बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पहले जो बच्चे होते थे वो गली मोहल्लों में खेला करते थे। जैसे कि आपने बताया कि हम सबका बचपन ऐसे बीता है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें वो सारी चीजें मिली जो शायद आजकल के बच्चे मिस कर रहे हैं। पेड़ों पर चढ़ना, और फिर हम जो लोग हार जीत हमारी रहती थी खेल में, और फिर हम लोग मम्मी के पास जाते थे कि इसने मुझे मतलब मैं हार गया, तो मतलब मम्मी हमें समझाती थी, हमारी मम्मी, कि हार जीत तो होती ही रहती है खेलों में। तो वो सारी चीजें, नेचर के साथ जो हमारा लगाव था, वो आजकल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मिस हो चुका है। एक तो हम देख रहे हैं कोविड टाइम आया, और भी बहुत सारी ऐसी पैंडेमिक होती ही रहती हैं। अब तो एक तरह से हर वक्त एक नया दौर आ जाता है, हर साल कोई नई चीज ऐसे आ जाती है जिससे जो है हमारे बच्चों के अंदर, इवन हम बड़ों के अंदर भी ये रहता है, मतलब वो हम सोचते हैं और अपने घरों में हम एक तरह से क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को, और नेचर से बच्चों का ही नहीं हम सबका जो अटैचमेंट है वो बहुत कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं हम चिंता का विषय।
2: मीडिया, कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, ना मोबाइल था, ना हमारे पास कोई इंटरनेट की ऐसी सर्विस थी। एंड पहले के टाइम में क्या होता था कि देखिए हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते थे बहुत ज्यादा, वो तो ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन पहले के बच्चों में धैर्य था, पेशेंस था, लेकिन आजकल के बच्चों में वो पेशेंस ही नहीं है। उनको अगर कोई चीज चाहिए तो मतलब चाहिए ही, उनको ये नहीं है कि उनको पेशेंस नहीं है उनके अंदर। आज के बच्चों में पेशेंस नहीं, लेकिन पहले के बच्चों में बहुत ज्यादा पेशेंस होता था। अगर फैमिली बोलती थी कि शाम को तुम्हारे पापा आएंगे तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, तो बच्चा इंतजार करता था कि शाम को पापा आएंगे चॉकलेट लेकर आएंगे, कितना खुश होते थे। और प्रकृति से जुड़ाव आजकल के बच्चों में कितना कम हो गया है। बस बच्चों को आजकल के क्या चाहिए, एक मोबाइल, एक रूम, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं लेना, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं। लेकिन पहले के टाइम में प्राची, हमारा और आपकी बचपन के टाइम की अगर हम बात करें, तो हम पहले कितना प्रकृति से जुड़ते थे, सुबह सुबह बाहर खेलने जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। एंड आजकल ये सब चीजें कितनी कम हो गई ना एक्टिविटीज। बच्चे लेट नाइट सोते हैं आजकल के, और जब लेट नाइट सोएंगे तो फिर लेट नाइट उठेंगे। बाकी हम प्राची से भी जानते हैं, प्राची आप क्या कहना चाहिए?
1: बिल्कुल खुशी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बच्चों

0: पेशेंस जो एक हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हम ह्यूमन बीइंग्स की, जिसके बिना मुझे लगता है हम सब अधूरे हैं, और ये हमें अपने अंदर जरूर इनकलकेट करने की जरूरत है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात की है। लेकिन एक बात और है, पहले के बच्चों के पास शायद इतने खिलौने नहीं थे, लेकिन कल्पनाएं बहुत थी, वो मिट्टी में खेलकर भी खुश हो जाते थे। और पता है, जब आजकल ना हर चीज है आपके पास, जो भी आप चीज चाहो कि ये वाला खिलौना मेरे पास होना चाहिए तो वो आपको मिल जाता है। पहले के टाइम में ये सब चीजें नहीं होता था, हम मिट्टी से बर्तन बनाते थे, मिट्टी से खिलौने बनाते थे, तो उससे खेलते थे, और उसमें ना एक अपनापन होता था। हम जैसे सारे बच्चे, मोहल्ले के बच्चे ना एक साथ एक बैठ जाते थे, और सब मिट्टी अपने अपने घर से लेके आते थे, उसको अच्छे से गूंथते थे, अच्छे से मतलब मिट्टी बनाने के बाद फिर उसके हम बर्तन बनाते, फिर उसका इंतजार करते थे सूखने के लिए।
0: आजकल तो आपको पता है, बच्चों को ये नहीं पता होता आजकल हमें कि हमारी साइड में कौन रह रहे हैं, है ना, हमारे नेबरहुड में कौन कौन लोग रहते हैं, कुछ नहीं पता है हमें। बहुत अकेलेपन और एक फोन की डिजिटल दुनिया में हमको।
1: तो क्या होता था, वो सूखने के बाद ना हम उसपे कलर करते थे, बर्तन के ऊपर, खिलौने के ऊपर,
0: चीजें हमें कितनी अच्छी लगती थी।
1: और हम बच्चे खुद का मतलब, अब क्या है इतना उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है पहली बात तो, और फिर हम पहले मतलब खुद का घर बनाते, ये इसका घर है, वो उसका घर है, फिर हम सब छोटी मोटी कीर्तन करते थे।
2: मैं कहना चाहती हूँ रीना, जैसे प्राची भी बता रही थी कि पहले हम ईंट से हम घर बनाया करते थे, और उस पर हम फिर हम उसे सजाया करते थे पत्तों से एंड फूलों से, तो कितना वो हैप्पीनेस वाला टाइम था ना। आगे आप प्राची क्या कहना चाहते हो,
1: तुम बताओ पहले, तुम क्या बचपन में कैसे खेलती थी? मैं तो सच बताऊं, मिट्टी के बर्तन बना के गली मोहल्ले में हम सब बहुत खेलते थे, और जब भी मतलब कुछ ऐसा फेस्टिवल जैसे घर पे अभी मनाते हैं, दिवाली वगैरह, तो हम वैसे बच्चों बच्चों में ही दिवाली वगैरह मनाते थे, मिट्टी के ही मिठाइयां बनाते थे, फिर उनको बांटते थे, घर घर भी जाते थे, मैंने कहा लो आज दिवाली, हैप्पी दिवाली, मिठाई ले लो, घर वाले बोलते थे।
2: अमेजिंग टाइम था। आज के बच्चे बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं।
1: हाँ, और जो साइकिल की जो टायर होती थी ना, उसको भी लेके मैं बहुत घूमती थी।
2: हाँ, वो
1: हम सभी कहते थे कि साइकिल है हमारा।
2: चलाया प्राची ऐसा वाला,
1: और उससे ना बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाती थी, और हाइट भी बहुत बढ़ती थी उस टाइम। आजकल के बच्चों हाइट इतनी नहीं बढ़ती है,
2: नहीं बढ़ती, और प्रॉब्लम्स कितनी है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर नई नई बीमारियां आ रही हैं।
1: वो एक्टिविटी नहीं करते ना, एक तो उनको घर से बाहर नहीं भेजते, नेचुरल हवा नहीं उनको मिल पाती है, बाहर जाते तो यही सोचते कि इसके साथ कुछ हो ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। मतलब एक अगर बच्चों को बाहर भी लेकर जा रहे हैं तो पार्क में लेके जाते थे, इसके अलावा कहीं और नहीं। अगर बच्चा छत पे भी घूम रहा है तो अरे तुम छत पर मत जाओ यार, धूप बहुत है, मिट्टी लग जाएगी, चोट लग जाएगी। मतलब आजकल हम बच्चों को ना स्ट्रॉन्ग बनाने की जगह उनको फूल बना रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चों के पास टाइम भी नहीं है ज्यादा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि हमने उन्हें नेचर से बहुत अलग कर दिया है। तो और बल्कि अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे आसपास का एनवायरमेंट, चीजें ऐसी होनी चाहिए कि हम उन्हें नेचर के साथ जुड़े, क्योंकि और बच्चे इंटरेस्ट लेते भी हैं। अगर हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिसमें नेचर इन्वॉल्व है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते भी हैं। पर कहीं ना कहीं ये हमारा ही एटमॉस्फेयर और जैसी आप ब्रिंगिंग हम उन्हें दे रहे हैं, तो वो चीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि हमारे बच्चे नेचर के साथ टाइम बिताए,
2: जुड़े नेचर से जुड़े। दोस्तों, एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद अभी हम लौट कर आते हैं।

दोस्तों, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना और इसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है सोच बदलो। और दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या हमारे बच्चे सच में बचपन जी रहे हैं? सुबह उठते ही मोबाइल फोन, फिर वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया। धीरे धीरे बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ना उन्हें चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, ना ही पेड़ों की ठंडी छाओं का एहसास होता है। लेकिन सोचिए, जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, अगर बच्चे उसी से दूर हो जाएं, तो उनका जीवन कितना अधूरा हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों को रोज कुछ समय खुले वातावरण में बिताने के लिए प्रेरित करें, उन्हें पार्क में ले जाएं, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, पक्षियों की आवाज सुनने दें, घर में एक छोटा सा पौधा लगवाएं और उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दीजिए। जब वह पौधों को बढ़ते हुए देखेगा तो उसके अंदर प्रकृति के प्रति प्यार, अपनी प्रकृति के लिए प्यार अपने आप जागेगा। छुट्टियों में सिर्फ बच्चों को मॉल या मोबाइल नहीं, बल्कि किसी बगीचे, खेत, नदी या प्रकृति स्थल की सैर भी करवाएं। और सबसे जरूरी बात, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, ग्रीन टाइम बढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ सुंदरता नहीं सिखाती बल्कि धैर्य, संवेदनशीलता और जीवन का असली संतुलन भी सिखाती है। याद रखिए श्रोताओं, बच्चों को मोबाइल की दुनिया से जितना बाहर निकालोगे, वे प्रकृति की दुनिया से उतने ही जुड़ेंगे। और जो बच्चा प्रकृति के करीब होता है, वही मानसिक रूप से अधिक खुश, स्वस्थ और रचनात्मक बनता है। तो दोस्तों, अभी हम आपसे करेंगे और भी बातें, आप बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी हम मिलते हैं आपको कुछ और म्यूजिकल

0: जी, वेलकम बैक है। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। और देखिए, जैसे कि खुशी ने बताया है कि बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए, फोन से दूर रखिए। जितना आप उनको प्रकृति के साथ जोड़ेंगे, उतनी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो और भी सुखमय रहेगी और प्रकृति के साथ कनेक्ट रहेगी। सोचिए, अब क्या है, बच्चों को ना सुबह सुबह उठते ही उनको फोन पकड़ा देते, या फिर बच्चे जिद करने लग जाते हैं कि हमें फोन चाहिए, हमें गेम खेलना है। अगर वो खाना भी खाते तो सिर्फ और सिर्फ कार्टून देख कर ही खाना खाते। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, पूरी फैमिली वाले एक साथ बैठकर खाना खाते थे, कब टाइम निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब हर किसी के पास फोन है, अलग बैठा है, कोई इधर कोने में बैठा है, और टाइम का तो मतलब पता ही नहीं चलता। इसीलिए आजकल के बच्चों को भी चश्मे बहुत जल्दी जड़ रहे हैं। एक तो खान पीन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर से हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, सो चश्मे भी चढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि स्क्रीन जो टाइम है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि वो पढ़ रहा है। जब वो खेलेगा तभी तो उसका माइंड है वो रिफ्रेश होगा, फिर वो कुछ नई चीजों को सोचेगा। और प्रकृति के बारे में अगर उनको कनेक्ट करते हैं तो वो हर चीज के बारे में जानेंगे। इनफैक्ट कुछ बच्चों से पूछ लो कि ये किस चीज का पौधा है तो वो बता नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि ये तोरी का बेल है या फिर किसी और फल का पेड़ है, बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को जितना हो सके पेड़ों के बारे में नॉलेज बढ़ाए, उनको बताए किस चीज का पेड़ है, ताकि उनको भी पता रहे। अदरवाइज आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता रहता। खुशी,
1: बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बच्चे आजकल प्रकृति में समय कहाँ बिता, उनको क्या पता, बस उनको सोशल मीडिया से मतलब होता है एंड कार्टून से मतलब होता है कि कौन सा कार्टून कब आने वाला है, कौन सा गेम है। एक्चुअली इस तरह के गेम्स आजकल सोशल मीडिया पर बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कि बच्चे जब गेम्स खेलते हैं ना तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि हमें खाना खाना है या नहीं खाना है। जैसे
0: कोई आवाज लगा रहा है, कोई आवाज नहीं लगा रहा, बिल्कुल उनको सुनाई नहीं देता, बहरे हो जाते हैं।
1: हाँ, तो बस यही है, हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आज के हमारे कार्यक्रम में, कि अपने बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा बाहर लेकर जाएं, प्रकृति से कनेक्ट करें, उनको पार्क में लेकर जाएं इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में, उनके साथ आप भी समय बिताएं। एंड जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ घुलता मिलता है, बातचीत करता है, तो उनका मानसिक संतुलन भी स्ट्रांग होता है, वो हैप्पी फील करते हैं, उनको लगता है कि कोई तो है जो हमारी बातें सुनता है, हमें समझता है।
0: और दूसरी बात ये कि बच्चों को जब तक वो 12th पास आउट ना कर ले, आप उनको फोन मत दे दीजिए। एक बार आपने उनको फोन की लत लगा दी तो फिर आप उनसे छुटा नहीं सकते हैं। इसीलिए 12th के बाद फोन दीजिए, क्योंकि पहले के बच्चे भी तो, हम सबने भी तो पढ़े हैं, यानी कि हम, सच बताऊं मुझे भी जब मैं कॉलेज में सेकंड ईयर में जाने के बाद मुझे फोन मिला, ये देखो तुम।
1: अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन किया है तब मुझे मोबाइल मिला है,
0: तो हमने भी तो पढ़े हैं बिना फोन के, बिना ना, हमें भी तो नॉलेज है।
1: पर वो विदाउट फोन वाली दुनिया बहुत खूबसूरत थी,
0: बहुत। एक तो सच बताऊं मैं अभी भी जैसे फोन 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ तो आंखों को बहुत रिलैक्स मिलता है,
1: सुकून मिलता है।
0: और जिस जब भी मैं फोन चलाना स्टार्ट कर देती हूँ फिर से पेन शुरू हो जाता है।
1: हाँ, इसीलिए
0: तो इसीलिए श्रोताओं, बच्चों को फोन मत दीजिए और यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अभी हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे।
1: आज से एक छोटी सी शुरुआत करें और अपने बच्चों को फिर से पेड़ों, फूलों, तितलियों और खुले आसमान के करीब लेकर जाएं। मैं आपकी दोस्त आरजी खुशी और आप सुन रहे हैं सोच बदलो। सोच बदलिए, क्योंकि छोटी सी सोच का बदलाव ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशि

0: का गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आज फिर आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं कुछ खास बातें लेकर, कुछ नई बातें लेकर जिसके बारे में हमें अक्सर पता नहीं होता है। सो आज के यानी कि लीगल टॉक्स शो में बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। आजकल एक ऐसा अपराध तेजी से बढ़ रहा है जो बिना हथियार के भी आपकी मेहनत की कमाई पर हमला कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। एक छोटी सी गलती, एक अनजान लिंक पर क्लिक या किसी फर्जी कॉल पर भरोसा करना और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, फेक ओटीपी कॉल्स यानी कि सोशल मीडिया हैकिंग और डिजिटल ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक या सरकारी स्वास्थ्य कंपनी संस्था कभी भी फोन पर आपका ओटीपी, एटीएम और पेन या पासवर्ड नहीं मांगती है। इसीलिए सतर्क रहिए और कभी भी आपके पास ऐसी कॉल आए, ऐसे लिंक्स आ रहे हैं जो आपको बोला जा रहा है कि उस लिंक पर आप प्रेस करें, तो करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। कुछ ऐसे कॉल्स आ जाते हैं जो हमें लालच देते हैं और हम उस ठगिया यानी कि शिकार बन जाते हैं। और ऊपर से ये भी बोला जाता है कि आपके पास ये कॉल आया तो प्लीज किसी के साथ शेयर मत करिएगा, वरना आपके साथ और भी गलत हो सकता है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर डर जाते हैं। सो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध सर। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी।
0: तो सबसे पहले आप बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपका शो का बहुत वेट कर रहा था कि जल्दी से शो में मैं आऊं और कुछ नई बातें जो अपने लिसनर से, जो कम्युनिटी रेडियो के आपके जो लिसनर्स हैं उनको कुछ नॉलेज मिल पाए और हम लोग नए नए टॉपिक्स के बारे में लीगल टॉक्स कर पाए उनके साथ में।
0: क्या बात है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले सर, मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि आप पहले मतलब पीएचडी भी कर रखी है आपने, फिर एडवोकेट।
1: पीएचडी मेरी ऑनरिस कोर्स में है, मानत उपाधि जिसको बोलते हैं, तो मुझे फ्रांस की एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो उनके द्वारा समाज में, जो सोसाइटी में मेरे द्वारा जो भी काम किया गया है, जो मैं लीगल अवेयरनेस लोगों को फैलाता हूँ या उनको नॉलेज मिलती है, उनको हेल्प करता हूँ, तो उसके लिए मुझे उन्होंने सोशल वर्क के लिए मुझे उन्होंने ऑनर किया था।
0: तो मतलब पीएचडी के बाद मतलब हाँ एडवोकेट के लिए कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में?
1: देखिए, जर्नी मेरी जो हुई थी वो एक जॉब से शुरू हुई थी और जॉब से पहले मैंने होम ट्यूशन पढ़ाता था मैं। अच्छा, उससे अच्छा। पहले फिर जॉब के बाद सोचा नहीं क्यों ना मुझे जो है एमबीए करना चाहिए, किसी अच्छे कॉर्पोरेट में काम करना चाहिए। फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए के बाद मैंने एक मीडिया कंपनी में जो है मैं एसोसिएट रहा, उनके लिए मैं मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड जो भी उनका स्ट्रेटेजी होती थी वो मैं उसके लिए प्लानिंग करता था। और जो है उसके बाद फिर कुछ लाइफ में कुछ ऐसा है, कुछ घटित हुआ, कुछ हैपनिंग हुई। मैंने कहा नहीं, अगर लीगल लॉस की बार हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है किसी ना किसी क्राइम का डेली हिस्सा बन सकते हैं।
0: और मुझे लगता है कि सर, जब चीजें खुद पर बीतती है तो हमें उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो सर, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि साइबर क्राइम आखिरकार होता क्या है?
1: देखिए, हम कोई भी चीज अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर कोई भी विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो हमें प्रलोभन दिए जाते हैं कि अब ये आप भी जानते हैं कि अगर किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए है, वो एकदम 10 रुपए में मिलती है, तो कस्टमर क्या होता है, एकदम अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई आज तो बेनिफिट मिल रहा है, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही है। उसी लालच में हम क्या करते हैं, किसी अननोन लिंक को हम खोजने लगते हैं और उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके क्या होता है, जैसे कई एक जो मैलाफिशियस वायरस होता है फोन में आ जाता है, या कोई ऐसा लिंक होता है जिससे हमारे फोन का एक्सेस
0: उसके फोन में कनेक्ट,
1: दूसरी तरफ बैठे हुए जो साइबर अपराधी है उनके पास चला जाता है उसका एक्सेस, और उस एक्सेस को प्राप्त करने के बाद जितनी भी हमारी निजी जानकारियां हैं, हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, एटीएम का पासवर्ड क्या है, कोई हमारा ऐप है फाइनेंशियल उसका पासवर्ड क्या, वो सारी डिटेल उसके जो साइबर अपराधी बैठा हुआ उसके पास चली जाती है, और जिससे हमें नुकसान हो सकता है वो हमारा बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है, उसको हैक कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज, एक चुनौती जो ये है कि अगर सामने से कोई दुश्मन आ रहा है, और हमें पता है कि भाई ये जो है हमें डैमेज कर सकता है, हमें हार्म कर सकता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन साइबर की दुनिया में ऐसा कि हमें सामने वाले का फेस नहीं दिखाई देता।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: पीछे कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, उसकी लोकेशन हमें नहीं पता है, उसका फेस हमें पता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं पता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज देखने में आता है कि जो साइबर अपराधी हैं वो दूसरे कंट्रीज में बैठे होते हैं, दूसरे सिटी में बैठे होते हैं, और कई बार पुलिस को भी बहुत बड़ी जो है एक चैलेंजेस हो जाते हैं कि साइबर अपराधियों को ढूंढना है।
0: लेकिन
1: आज के युग में जो एक हमारी जो टेक्नोलॉजी एक जो इतना ज्यादा एडवांस हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी है, कहीं ना कहीं फायदे भी है। तो साइबर क्राइम एक तरीके का अपराध है, और वो अपराध है जैसे घर में किसी के चोरी करना, यहाँ तो आपको चोर दिखाई दे रहा है, वो ताला तोड़ देता है, लेकिन यहाँ किसी चोर को किसी का फेस नहीं होता, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वो छुपा हुआ होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो श्रोता, हमें से यही पता चलता है कि अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक आता है या टेक्स्ट मैसेज आते हैं या कॉल्स आते हैं, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ, समझदारी के साथ आपने वहां पर काम लेना है। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या साइबर अपराध आज पारंपरिक अपराधों से ज्यादा खतरनाक हो गया है?
1: हाँ रीना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। साइबर अपराध जो है पारंपरिक जो अपराध आजकल होते हैं उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डेंजरस और खतरनाक हो गया है। क्योंकि देखिए, साइबर अपराध में जैसे मैंने आपको बताया, आपके शहर में नहीं बल्कि किसी दूसरे स्टेट में बैठा हुआ हो सकता है, किसी कंट्री में बैठा हो सकता है, ठीक है। वो एक दिन में एक के साथ चोरी नहीं कर रहा है, उसके जो निशाने पे कई एक जो है ऐसे अकाउंट्स रहते हैं, कई एक ऐसे जो यूजर्स रहते हैं, तो वो टारगेट करता है कि भाई जो ज्यादा एक्सेस करता है, ज्यादा प्रलोभन देखता है, वो वहां से बैठे बैठे हमारी सारी एक्टिविटीज को नोट कर रहा होता है, जो भी साइबर अपराधी होता है। तो एक तरीके से एक अपराधी एक दिन में हजारों लोगों को वो निशाना बनाता है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, पहचान छुपा लेता है वो अपनी, और इसलिए साइबर अपराधी तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और प्रभाव साइबर अपराध का जो प्रभाव है बहुत बढ़ चुका है आज की डेट में।
0: वो तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, आजकल ओटीपी फ्रॉड सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, ओटीपी इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है?
1: देखिए, ओटीपी आपके बैंक खाते तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका माना गया है,
0: एक आसान जरिया।
1: आसान जरिया, ठीक है। अब कोई आदमी आपका ओटीपी पूछ रहा है, तो निश्चित तौर पे वो आपका अकाउंट का एक्सेस करना चाह रहा है, उसमें से कुछ उसकी मैलिफाइड इंटेंशन है, ठीक है। यदि किसी अपराधी को आपका कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या पासवर्ड मिल जाए, तब भी वो बिना ओटीपी के लेन देन पूरा कर सकता है। इसलिए किसी भी अनजान को आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल है वो बिल्कुल ना दे। और याद रखिए, ओटीपी आपकी तिजोरी की चाबी है।
0: बिल्कुल
1: आपने एक तरीके से अगर उसको अपनी चाबी दे दी आपने, तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया, उसने ओटीपी डाला अपने आपके अकाउंट से, जो भी उसको चीज
0: पैसे चाहिए थे
1: या जो भी उसको फाइनेंशियल एक्सेस चाहिए था आपका, उसने जो उसको यूज कर लिया।
0: मतलब एक तरीके से ये होता है कि पूरा डाटा ही स्टोर कर लिया उसने।
1: एक तरीके से ओटीपी देने का मतलब आपने चोर के हाथ में चाबी
0: दे दिया।
1: तो जब आपने ओटीपी दे दिया तो आपने उसे सारी चीज दे दी, चाबी दे दी, तो आपका अकाउंट उसके नॉलेज में आ गया, उसको एक्सेस मिल गया, उसने उसमें जो क्राइम कर दिया।
0: और बहुत से तो ऐसे हैं सर कि जैसे एक ही नंबर एक ही होता है उनके पास, तो वो हर चीज से उनका लिंक होता है।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपका फोन एक तरीके से हैक हो जाता है। बिल्कुल, वो आपकी जो स्क्रीन पे आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो उनके पास जो साइबर अपराधी बैठे होते हैं दूसरी तरफ, वो एक्सेस फोन का उनको मिल जाता है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो सब उनको पता चलती रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमें कभी भी श्रोता ओटीपी कोई भी हो देने से पहले एक बार उसकी पुष्टि जांच जरूर करिए। सो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या बैंक कभी ओटीपी, पैन या पासवर्ड मांगते हैं?
1: नहीं, बैंक की तरफ से आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बैंक किसी भी कस्टमर से फोन पे, मेल पे कोई भी पासवर्ड या कोई भी ऐसी जो जानकारी है जो उसके बैंक खाते से जुड़ी हुई है नहीं मांगता है। आरबीआई के साथ साथ जितने भी सरकारी विभाग है, चाहे वो वित्तीय संस्थाएं, वो कभी भी ओटीपी, पिन, एटीएम या सीवीवी या पासवर्ड कभी भी नहीं मांगते। ये ऊपर से आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है, और जो बैंक की तरफ से भी दिन प्रतिदिन जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है कस्टमर्स के लिए, तो आप कभी भी जो है इस तरीके की कोई जानकारी अगर फोन पे मांगे तो उसको बिल्कुल साझा ना करें।
0: बिल्कुल श्रोताओं, नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि बैंक से कभी भी आपको अगर कॉल आता है तो इस तरीके से वो बातें करते ही नहीं है, पहली बात। तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से लोग कैसे ठगी का शिकार हो जाते हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है आज की डेट में कि लोग सोचते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा एकदम आ जाता है, ठीक है, जबकि सच्चाई ये है कि अधिकांश मामलों में क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डालने का मतलब पैसा भेजना होता है, ना कि आना।
0: बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आपने अगर क्यूआर कोड स्कैन किया और आपने पिन डाल दिया तो पैसे आपके चले गए एकदम, आते नहीं। तो कई केसेस में हमने ऐसा देखा है कि सामने वाले ने उसको फोन करके कहा मैंने आपको क्यूआर कोड भेजा, आप उसको स्कैन करके अपना पासवर्ड डाल दीजिए, आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने पासवर्ड डाला तो उसके अकाउंट से पैसे चले गए उतने।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप पहले उसको चेक करें कि उसमें रिसीव लिख के आ रहा है या सेंट में लिख आ रहा है। तो आप अगर क्यूआर कोड किसी ने आपको भेजा है तो उसमें डिटेल थोड़ी सी नीचे लिख के आती है, और अननोन कोई अगर आपसे पैसे का आदान प्रदान करने के लिए कह रहा है तो बिल्कुल भी उस पर विश्वास ना करें, तत्काल उसको फोन को ब्लॉक कर दें। और कोई भी ऐसा लिंक जो आपको लगता है कोई मैलिशियस हो सकता है या वायरस हो सकता है तो उसको कभी भी उसको टच ना करें बिल्कुल भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम आजकल डिजिटल जमाना है सर, कहीं भी सामान भी लेने जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत रेयर होंगे जिनके पास कैश वो रखते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास ऑनलाइन पैसे रहते हैं, चाहे आप ऑटो में जाइए 10 रुपए।
1: एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन नहीं डालना पड़ता है। अगर मुझे किसी से पैसा प्राप्त तो मैं क्यों पिन डालूंगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जिसको पैसा भेजना है वो पिन डालता है, ठीक है। तो यदि कोई कहे कि पैसा लेने के लिए पिन डालिए तो समझ जाइए कि वो आपसे ठगी का प्रयास कर रहा है।
0: अब उसने सीधा कह दिया पैसा लेने के लिए, तो मतलब कि वो डालेंगे।
1: अगर मेरे को वो पैसा भेज रहा है तो मैं क्यों पिन डालूंगा? तो पिन आपसे अगर वो मांगे और कहे कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ कि पिन दे दीजिए, तो समझ जाइए वो ठगी का प्रयास कर रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर आगे बढ़ते अपने शो में। श्रोताओं, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। सर आजकल हैकिंग का बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ चुका है, यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टा हैक हो जाता है, फेसबुक हैक हो जाता है, तो मतलब इससे कैसे बच सकते हैं इंसान?
1: देखिए, सबसे बड़ी तो एक चीज ये है कि आप फोन अपना जैसे यूज करते हैं तो किसी अननोन के हाथ में अगर आप फोन दे रहे हैं तो अपने फोन को आप पहले लॉक लगा के रखिए, ठीक है। क्योंकि फोन पे क्या होता है, आपने किसी अननोन ने आपका फोन उठाया, अगर उस पर लॉक नहीं है तो उसने उसको स्क्रीन उसकी खोली, स्कैन क्यूआर कोड से स्कैन करके उसका एक्सेस किसी और डिवाइस पे ले लिया, और वो वहीं से जो है उसको एक्सेस करेगा और सारी जितनी भी डिटेल्स है आपकी वो उसके पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से तो आपने बिल्कुल जो है अपने सारी जो निजी जानकारी है जब आपकी फोन का एक्सेस चला गया तो सब शेयर हो गई, तो फिर क्राइम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपराधी किसी भी बहाने से अगर वेरिफिकेशन कोड प्राप्त करने की कोशिश करे, जैसे ही वो कोड साझा करता है व्हाट्सएप अकाउंट अपराधी के मोबाइल में सक्रिय हो जाता है, तो इसके बाद वे आपके रिश्तेदारों को मित्रों को फोन कर सकता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: पैसे की जरूरत, आपने देखा होगा कई केसेस में कि फेसबुक पे मैसेंजर पे पैसे की डिमांड करते हैं, तो इस मोस्टली इन केसेस में हमने यही देखा कि फोन व्हाट्सएप माध्यम से उसने क्यूआर कोड प्राप्त कर लिया और फोन का एक्सेस चला गया उसके पास में, तो आपके जितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो सब जगह उसने रिक्वेस्ट भेज दी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये
1: आपकी फोटो लगा लेते हैं व्हाट्सएप पे, जिससे उनको आपके रिलेटिव्स को यकीन हो जाए भाई
0: ये बिल्कुल
1: भाई रीना को पैसे की जरूरत है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो इस चीजों से आपको सतर्क रहना है, और किसी को भी आप अपना फोन अननोन को तो बिल्कुल भी आपको
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: देना है,
1: और अपने फोन में पासवर्ड जरूर लगा के रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सही कहा आपने कि अपने फोन में पासवर्ड लगा कर रखना चाहिए श्रोताओ। और
1: व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड भी ओटीपी जितना ही गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको भी साझा ना करें।
0: बिल्कुल। और जैसे कि सर ने बताया कि आपके पास कोई मैसेज करता है, जैसे कि मेरा नाम ही लेके आपको कोई मैसेज कर दे कि रीना को पैसे चाहिए और मैं रीना ही बात कर रही हूँ, तो कभी कभी हम यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों का ना आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भी पता है कि काफी टाइम से आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसके नोन में है, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो एकदम कैसे आपसे बोल सकता है कि मुझे पैसे चाहिए? तो इसके लिए आपको पहले पुष्टि करनी चाहिए, यानी कि उससे कॉल करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि वाकई में कि रीना ही है जो मुझे मैसेज करिए कॉल पैसे के, मतलब पैसे के लिए कि मुझे पैसे चाहिए, है ना सर? ये मतलब हमें पूछ लेना चाहिए,
1: आपको पूछ लेना चाहिए, नहीं तो अगर किसी को जरूरत होगी तो आपको खुद फोन करेगा पैसे के लिए।
0: बिल्कुल, मैसेज क्यों करेगा? क्योंकि आजकल इतना मुझे लगता है कि बिजी शेड्यूल है सर, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हाँ हम व्हाट्सएप एकदम ओपन करके देख लें, इंस्टा एकदम ओपन करके देख
1: लें। आप जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लें कि वास्तव में कोई जो है आप आपका कोई रिलेटिव वो उसी ने मैसेज किया है या वेरीफाई आपसे फोन पे बात ना हो जाए, व्यक्तिगत मिल के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे किसी के कहने से और व्हाट्सएप पे मांगने से आप पैसे बिल्कुल ट्रांसफर ना करें।
0: चलिए आगे बढ़ते अपने शो में श्रोताओं। आजकल डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बहुत ठगी हो रही है, यह क्या है सर?
1: देखिए डिजिटल अरेस्ट जो होता है, जो अपराधी आजकल क्या कर रहे हैं, वो एक डर बैठालते हैं। कभी वो पुलिस अधिकारी ऑफिसर बन के फोन करेंगे, कभी वो कहेंगे ईडी से हम बोल रहे हैं, कभी सीबीआई से कभी वो सीबीआई या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आपका जो है एक क्राइम हुआ था, मर्डर में आपका नाम आया है, किसी और बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस केस में वो बताते हैं कि भाई आपका नाम आया है, आपकी फैमिली मेंबर का किसी का नाम है, तो एक डर बैठाल देते हैं वो।
0: बिल्कुल,
1: डर बैठाल के वो क्या करते हैं, वो डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कई केसेस में भी आपने भी न्यूज में भी सुना होगा, और कई केसेस भी ऐसे आए कि एक जो प्रोफेसर थी, लेडी थी, मुंबई का केस था, तो उसको डिजिटल अरेस्ट करके कई लाखों करोड़ों रुपए की उससे ठगी कर ली थी।
0: क्या बात।
1: और कानूनी प्रक्रिया, कानूनी जो लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ कानूनी, तो उसमें भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है।
0: नहीं है,
1: ठीक है। किसी भी किताब में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई पावर ऐसे किसी भी सरकारी एजेंसी को, पुलिस को नहीं दी गई है। तो आप इस बात से बिल्कुल सतर्क रहिए, अगर कोई आपको फोन करके डराए कि आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका कोई रिलेटिव जो है इस तरीके से क्राइम में नाम है उसका, और जो है आपको जो है उसमें ये आपको फर्जी कोई वारंटी फोन पे दिखाए, तो आप पहले उसको बार अपने वकील से, जो भी आपका वकील हो, आपका एडवोकेट हो, उसको आप उसको नॉलेज में करें या नजदीकी थाने में आप उसको जरूर एक बार इंक्वायरी जरूर करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, और ये केसेस बहुत आज की डेट में बढ़ गए हैं। हालांकि हमारी जो सरकार है वो भी काफी कदम उठा रही है और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में जाने और इस तरीके की फर्जी कॉलों से और स्कैम से सावधान रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ते हैं शो में, यानी कि सोशल मीडिया पर लोग कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं?
1: देखिए लोग सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये कि अपने परिवार के साथ वो कहीं अगर यात्रा कर रहे हैं या जा रहे हैं वो फोटोज डाल देते हैं, या बैंक की जानकारी देते, आपका जन्मदिन है उसकी डिटेल्स मिल जाती है, मोबाइल नंबर अपना, या अपनी निजी फोटो सार्वजनिक तौर पे वो पोस्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अपराधियों को इनकी जानकारी का पूरा ब्यौरा मिल जाता है और वो उसको उपयोग करके विश्वास पैदा करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अब आप ही कहीं अगर जाते हैं, आपने फेसबुक पे डाल दिया भी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको पता चल गई, फैमिली के फोटो उसको पता चल गए, ठीक है, बैंकिंग की जानकारी उसको पता चल गई, तो वो क्या करेगा, वो आपके जो भी ग्रुप्स हैं, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मिसगाइड करेगा, एक फर्जी अकाउंट बना सकता है आपका।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपकी फोटोज दिखा के उस पे फेसबुक पे लगा के, तो उससे क्या होगा, एक सामने वाले के पास वो क्या करते हैं,
0: तो प्रूफ मिल गया उनको,
1: फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले वो भेजते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनको लगता है कि सामने वाले को यकीन आ गया कि जो है आप ही हो, तो उससे पैसे की डिमांड कर सकता है या और किसी तरीके से जो है कुछ और जो है अपने क्राइम में वो कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ और गलत जो है जो भी वो ठगी का प्रयास करना चाहेगा वो कर सकता है वो।
0: सर बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमें बहुत सी जानकारियां देकर जाते हैं, इनफैक्ट हमारे श्रोताओं को भी, हमें भी नहीं पता इन चीजों के बारे में और हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि यार डिजिटल आजकल जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो सर एक बहुत कॉमन है जो कि इंसान चाहता है कि घर बैठे उसके पास सामान आ जाए, चाहे शॉपिंग हो, चाहे खाना हो, मतलब व्हाटएवर कुछ भी हो, हम चाहते कि घर बैठे बैठे हमें वो चीज मिल जाए, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए आजकल लोग बहुत इजी टू एक्सेस लाइफ जीना पसंद करने लगे हैं ना, वो चाहते हैं कि वो एकदम एक क्लिक पे सारी चीज मेरे सामने हो, घर पे सामान आ जाए,
2: बाजार ना जाना पड़े। अब थोड़ा देखिए कहीं ना कहीं आसानी तो है ऑनलाइन शॉपिंग से, लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है तो साइबर अपराधियों को एक नए नए जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है। वो सोचते हैं कि ये तरीका अच्छा है तो क्राइम करने की सोचते हैं उससे। तो अगर कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो एक तो ये है कि आप विश्वसनीय वेबसाइट से ही खरीदारी करें, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई छूट देने वाला ऑफर अगर आ रहा है कुछ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उससे थोड़ा सावधान रहें, अलर्ट रहें, उसको थोड़ा सा डीपली चेकें।
0: यानी कि सस्ते की चीज में हमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए।
2: नहीं, ऑफर कई बार ऑथेंटिक भी होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे ऑफर्स होते हैं जो एकदम आदमी एकदम क्लिक कर देता है बिना सोचे समझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और एक क्लिक पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जा सकती है। तो आप पहले उसका URL चेक करें, पहले आप उसका वेबसाइट का URL जांचे। अज्ञात लिंक से खरीदारी बिल्कुल ना करें, जैसे किसी ने आपको लिंक भेज दिया कि इस तरीके से आपको साहब मूवी की 2 टिकट मिल जाएगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ठीक है, या आपको इतने परसेंट छूट मिल जाएगी या कैशबैक मिल जाएगा, आजकल बहुत आ रहा है आपने देखा होगा। तो इस तरीके के लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लें बिल्कुल भी। और जहां संभव हो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुने। अगर आप कोई ऑप्शन कोई आप ले भी रहे हैं, कोई शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प लें कि जब सामान आपके पास में आ जाए तो उसका आप पेमेंट करें।
0: क्या बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बच्चे और युवा भी साइबर अपराधियों के निशाने पर है?
2: जी देखिए, बच्चे और युवा तो सबसे ज्यादा आज की डेट में है, क्योंकि हर हाथ में तो मोबाइल एक्सेस हो गया है। और बच्चों को अभी इतनी डीप नॉलेज नहीं है, वो एकदम से क्या करते हैं, कोई भी लिंक आता है उसको क्लिक करके जो है देखने लग जाते हैं कोई क्यूरियोसिटी। ऐसी युवाओं का भी आज की डेट में, जैसे कोई एकदम एडवर्टीजमेंट कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आया, उन्होंने एकदम उसको क्लिक किया और जो है उसकी डीप में और ज्यादा विंडो जो है URL पे जाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है उनके चांसेस और बढ़ जाते हैं रिस्क के। तो सबसे बड़ी चीज है कि युवाओं को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए हर चीज को। हर चमकती हुई चीज जैसे सोना नहीं होती, उसी तरीके
0: बिल्कुल,
2: से
0: बिल्कुल
2: स्क्रीन पे हर चीज आपके बेनिफिट की नहीं होती है ना। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और किसी भी अननोन लिंक पे बिल्कुल क्लिक ना करें एकदम।
0: बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है श्रोताओ, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सोच समझ के जरूर करिए। सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर होने वाली ठगी से लोग कैसे बचे?
2: देखिए मोस्टली लोग आजकल स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, तो जितने भी साइबर अपराधी हैं तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि वो एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे और ठगी करने लग गए हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा दुगना करने का वादा कर रहा है एक सर्टन डेज में कि भाई इतने निश्चित रूप में इतने दिन में दुगना कर दूंगा और बिना कोई रिस्क के आपको मुनाफा मिलेगा, तो सबसे बड़ी चीज है वो कुछ ना कुछ जो है फ्रॉड हो सकता है, तुरंत अलर्ट हो जाइए।
0: बिल्कुल।
2: दूसरी चीज, दुनिया में कोई भी वैध निवेश 100% गारंटी नहीं देता। जो वैलिड इन्वेस्टमेंट होगी, जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होगी, वो कभी आपको गारंटी नहीं देगी कि आपका पैसा जो है 100% दुगना हो जाएगा।
0: दुगना हो जाएगा।
2: तो निवेश से पहले अगर आप कोई शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या किसी और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कोई भी ऑनलाइन लेते हैं, तो सबसे पहली चीज कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए उसका, ठीक है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: उसका लाइसेंस उसका चेक करिए, उसकी विश्वसनीयता जब आप जांचे तभी आगे बढ़िए उसको।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी।
0: यदि किसी व्यक्ति के खाते से पैसे कट जाए तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
2: देखिए अगर आपके कोई आपने कोई अननोन लिंक पे एकदम आपने क्लिक किया है और आपको लगता है कि वे एकदम जो है पैसे आपके खाते से कट गए हैं, तो सबसे पहले तो आप बैंक को सूचित करें, खाते को आप एकदम जो उसको फ्रीज कराइए ताकि उसमें अगली कोई ऐसी ट्रांजेक्शन ना हो पाए, ठीक है। तुरंत आप राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, नंबर आप नोट कर लीजिए, जब भी कोई साइबर घटना हो तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। हाँ, इस पे कॉल करके आपको तुरंत कंप्लेंट अपनी लॉन्च करनी है। जितनी जल्दी शिकायत होगी उतनी जल्दी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी आपका पैसा रिफंड आने की बन जाती है, ठीक है। पैसे को रोकने की संभावना उतनी अधिक होगी अगर आप जितनी जल्दी कंप्लेंट अपनी लॉन्च कराएंगे, तो पैसे की वापसी चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: तो क्या सर ठगी जो पैसे हो जाते हैं क्या वापस मिल सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, कई मामलों में संभव है। अगर आपने टाइमली कंप्लेंट लिखा दी है, टाइमली आपने एक्शन लिया है, तो आपको जो है ठगी आपके साथ हुई है तो पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिकायत कितनी जल्दी करी
0: जल्दी करी है। बिल्कुल, मतलब जल्दी की जाए तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आपके पैसे
2: आपके वापस हो सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल टाइमली एक्शन लिया है, आपने साइबर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप कंप्लेंट लॉक कराइए एकदम, और जो है ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए धनराशि को फ्रीज करने की, उससे क्या होता है उनको टाइम मिल जाता है, जो अधिकारी होते हैं वो फ्रीज कर देते हैं उस अकाउंट को, जिस अकाउंट में पैसे आपके गए हैं, तो वहां से वो जितना पैसा आपका गया तो वापस दिलाने के लिए वो उसमें सदैव तत्पर रहते हैं।
0: क्या बात है। तो श्रोताओं, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो सोचिए मत, सीधा बैंक जाइए, वहां पर उनको जानकारी दीजिए कि जो भी आपके साथ दिक्कतें होती है, ताकि आपका पैसा जल्दी हो सके और जल्दी आपको मिल सके।
2: खाता तुरंत फ्रीज कराना जरूरी होता है, क्योंकि वो साइबर अपराधी जिसने करी है तो दोबारा भी ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश करेगा। जब आपका अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा तो पैसे से ट्रांसफर होगा नहीं उसमें, और कंप्लेंट आप लॉक करा देंगे तो आपके अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर होगा किसी अन्य खाते में गया होगा तो ट्रेस हो जाता है।
0: अच्छा।
2: तो जब अकाउंट ट्रेस हो जाता है तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारा जो रकम हमारे अकाउंट से गई है वो वापस आ जाए।
0: सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रोताओं के लिए आपकी सबसे 5 महत्वपूर्ण सलाह क्या हो सकता है।
2: देखिए, मैं सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है यही एक एडवाइस करूंगा, तो पहला तो ये कि आप कभी भी अपना OTP किसी को मत दीजिए, पिन आपका है, पासवर्ड है, कभी किसी के साथ भी शेयर ना करें बिल्कुल भी। दूसरा ये कि कोई भी अननोन लिंक आए तो उस पे आपको क्लिक नहीं करना है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दे,
0: इग्नोर करना है।
2: तीसरा ये कि QR कोड सोर्स समझकर स्कैन करें, जैसे हमारी आता था ना, हम कहीं भी QR कोड स्कैन कर लेते हैं। कहीं भी पेमेंट ले रहे हैं दे रहे हैं तो सोच समझ के स्कैन करें उसको, ठीक है। चौथा ये कि जल्दबाजी में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, कोई भी वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में ना लें। और पांचवा ये है कि अगर ठगी होती है आपके साथ तो सबसे पहले आपको 1930 पे साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन जो नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर, इस पे तुरंत शिकायत अपनी जो है दर्ज कराएं, अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराएं।
0: क्या बात है। सर, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे।
2: देखिए, कम्युनिटी आपका रेडियो है तो आप कम्युनिटी के बात करते हो, और हर बार आप अवेयरनेस की कुछ ना कुछ लोगों को इतना आप जो है अवेयर करते हो, आपके माध्यम से जो है हमारी श्रोताओं से बात हो पाती है। तो मैं यही बस अभी आपके कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स है कि साइबर सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है बल्कि आवश्यकता है ये हमारी, है ना, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी नीड है। और घर का ताला टूटने से तो नुकसान सीमित होता है, लेकिन मोबाइल अगर आपके बैंक खाते की जानकारी सुरक्षा टूट जाए तो जीवन भर की कमाई आपकी खतरे में
0: पड़ सकती है।
2: तो इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें, और अपने परिवार को भी साइबर सुरक्षा के नियम अवश्य सिखाएं। और जो है OTP, पिन और पासवर्ड आपकी तिजोरी की चाबी है, इन्हें कभी भी किसी के साथ भी साझा न करें। और याद रखिए, साइबर अपराधी आपके बैंक की सुरक्षा नहीं तोड़ते, वे आपकी सावधानी तोड़ते हैं।
0: बिल्कुल,
2: ठीक है। तो मैं इसी के साथ अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को एडवाइस करूंगा कि जो है अलर्ट रहें, अवेयर रहें।
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत। आई होप कि आपने बातें सुनी और अब इसको फॉलो भी करेंगे, और फिर हम मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई जानकारी के साथ, एक नई बातों के साथ, जिसके माध्यम से आपको अच्छी अच्छी जानकारियां मिलते रहे, इनफैक्ट हमें भी अच्छी जानकारियां मिलती है। और ये जो आजकल साइबर क्राइम जो हो रहा है, यानी कि जो बढ़ रहा है, इसके लिए तो बहुत हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो अभी के लिए साइनिंग ऑफ, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। बाय बाय।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: से 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: जनपद मुरादाबाद वासियों से अनुरोध है कि अच्छी व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं अपने बच्चे के विकास हेतु आज ही निकट के प्रसिद्ध विद्यालय में जाकर निःशुल्क प्रवेश कराएं। याद रहे, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की संपूर्ण शिक्षा फ्री पाएं और सभी सरकारी सुविधाएं जैसे निःशुल्क

0: entire round of 16. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने

सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले

0: करके कैसे अधिकतम मदद की जाए ने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे

एपिसोड में हम बात करेंगे जनगणना में क्या बताना सही है, क्या नहीं, और कैसे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। याद रखिए, सही जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ओटीपी, एटीएम, पीआईएन, बैंक पासवर्ड या मोबाइल पर आया कोई कोड किसी को भी नहीं बताना होता है। अगर कोई व्यक्ति जनगणना के नाम पर बैंक डिटेल या ओटीपी मांगे तो तुरंत सतर्क हो जाए, क्योंकि असली सरकारी कर्मचारी कभी ऐसी जानकारी नहीं मांगते हैं। तो चलिए आज के इस जरूरी और जागरूक करने वाली बातचीत के शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जनगणना की। जनगणना यानी देश में रहने वाले लोगों की गिनती और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी इकट्ठा करना। इसमें सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उम्र, शिक्षा, रोजगार और परिवार की जानकारी भी शामिल होती है। सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय करती है कि कहाँ स्कूल बनेगा, कहाँ अस्पताल की जरूरत है और किन इलाकों में सुविधाएं पहुंचानी है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, सही जानकारी देना ही जरूरी है।

0: नमस्कार श्रोताओं, एक बहुत ही प्यारे गाने के बाद फिर से हम आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं, जहां हम महिला मंच में जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सही जानकारी देना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सो अब हम बात करेंगे महिलाओं के लिए जागरूक सावधानी। अगर घर में महिलाएं अकेली हो तो किसी भी अनजान व्यक्ति को तुरंत घर के अंदर ना आने दे। पहले पहचान पत्र देखे, जरूरी हो तो पड़ोसी या परिवार के सदस्य को बुला ले। सुरक्षा और जागरूकता दोनों जरूरी है। याद रखे, सही जानकारी दे लेकिन अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे।
1: जागरूकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आपने कहा जैसे कि अकेली महिलाएं घर में होती हैं और कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाता है तो वो लाइक घर में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें तुरंत उनको अंदर नहीं अलाउ करना चाहिए। और आपको लगता है कहीं अगर कोई डाउट है कि ये व्यक्ति सही नहीं लग रहा है तो आप अपने पड़ोसी को भी बुला सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बुला सकते हैं, उसके बाद ही उनसे बातचीत करें। और कार्यक्रम को हम बैक टू बैक आगे बढ़ा ही रहे हैं, जानकारियां भी आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं। तो अक्सर लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं, आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जल्दी भरोसा कर लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें समझाइए कि OTP, ATM, पिन और बैंक पासवर्ड किसी को ना दें। अगर कोई फोन पर या घर आकर निजी जानकारी मांगे तो पहले परिवार के किसी सदस्य से सलाह लें। जागरूक परिवार ही सुरक्षित परिवार होता है रीना।
0: सिर्फ इसमें बुजुर्ग और महिलाएं नहीं बल्कि हमें बच्चों को भी सावधान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनसे जो पूछो वो सच ही बताते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि क्या हमें नहीं बता। इसीलिए अपने साथ साथ बच्चों को भी जागरूक करें। सो अब हम बात करेंगे बच्चों को क्या सिखाए। बच्चों को बचपन से ही सुरक्षा की बातें सिखाना जरूरी है। उन्हें बताइए कि घर की निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को ना बताएं। OTP और पासवर्ड क्या होते हैं ये सभी समझाइए। सुरक्षा की शुरुआत घर से ही होती है, क्योंकि जब आप बच्चों को सिखाएंगे, कहते हैं ना जैसा बीज बो फल भी आपको वैसा ही मिलता है। इस तरीके से जैसे आप बच्चों को समझाएंगे बच्चे वही काम करेंगे। और बच्चे सच बताओ बड़े सिंसियर होते हैं, क्योंकि एक बार आपने उस चीज के लिए मना कर दी कि ये काम नहीं करना है तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि बच्चों को समझाना उनके आगे भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है।
1: अच्छा रीना, कई बार ना फर्जी कॉल आ जाते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: और फर्जी कॉल से कैसे बचें दोस्तों, ये हम आपको बताते हैं। अगर कोई आपको फोन करके कहे कि जनगणना के लिए बैंक डिटेल दीजिए, सरकारी कर्मचारी फोन पर OTP या बैंक पासवर्ड नहीं मांगते। अनजान नंबरों पर भरोसा करने से पहले जांच जरूर करें, आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है।
0: और साथ ही साथ आपको भी पता है कि डिजिटल जमाना हो गया है, सोशल मीडिया पर आजकल हर चीज अवेलेबल है, आपको वहीं से जानकारियां भी मिल जाती है। और कभी कभी ऐसा फेक न्यूज भी आ जाता है जहां आपको कहा जाता है कि हम आपको लिंक शेयर करेंगे, आपको इसको फिल करना है, पूरी डिटेल्स भरना है। लेकिन इस चक्कर में ना कभी कभी हम भी सच मान लेते हैं, यार ये तो सच होगा, और घर बैठे बैठे हम अपना फॉर्म भर सकते हैं और इससे अच्छा क्या ही होगा। लेकिन याद रखिए हर बार सही जानकारी और लिंक आपको ऐसा नहीं मिलता है, इसीलिए जब भी आप कोई लिंक के सोशल मीडिया के थ्रू फॉर्म फिल करते हैं तो उन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आजकल लोग आधार कार्ड और निजी दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अपने जरूरी दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रखें और इंटरनेट पर सोच समझ कर ही कुछ पोस्ट करें। सुरक्षित इंटरनेट, सुरक्षित जीवन।
1: अरे वारीना, ये तो आपने बहुत कमाल की अपडेट बताई है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है रीना जी, सोशल मीडिया पर क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ कि हमें ना जैसे शॉपिंग को लेकर हो गया या फिर कोई ऐसी चीज है कि आपको घर बैठे जॉब मिल जाएगी, तो इस तरह से कि आपको ये आपको फॉर्म फिल करना है और आपको आसानी से आपको जो आप कोर्स करना चाहते हैं, चाहे मैनेजमेंट का हो चाहे वो ब्यूटी का हो, एंड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो फेक भी होते हैं, उनकी फेक वेबसाइट होती है। अगर आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी लें, उस वेबसाइट के बारे में पूरा जाने, उसके बाद ही आप किसी भी लिंक पर क्लिक करें। और दोस्तों अफवाहों से भी बच के रहिए, कई बार लोग अफवाहें फैला देते हैं लेकिन सही सरकारी प्रक्रिया में डरने की जरूरत नहीं।

0: होती है। बस जागरूक रहने की जरूरत होती है, सही जानकारी दें और अफवाहों से दूर रहें।
1: क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात कही तुमने। और जनगणना और गांव की बातें करेंगे हम। जनगणना सिर्फ शहर के लिए नहीं होती, गांव के लिए भी उतनी ही जरूरी होती है। इसी से पता चलता है कि कहां सड़क चाहिए, कहां स्कूल और कहां अस्पताल की जरूरत है। आपकी जानकारी गांव के विकास में मदद कर सकती है। इसीलिए जब भी आपसे कोई पूछने आए, जनगणना करने आए, तो आपने जो डिटेल्स है वो शेयर करिए। और आपको भी पता है कि OTP, आधार कार्ड ऐसा कुछ नहीं शेयर करना है। सो आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं, करेंगे ढेर सारी बातें। ये गाना एंजॉय करिए आप।

0: दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आपने एंजॉय किया आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और जनगणना और शिक्षा की अब हम बात कर रहे हैं साथियों। जनगणना से सरकार को पता चलता है कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कहाँ नए स्कूल की जरूरत है, यानी आपकी जानकारी बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। सही जानकारी देना देश की तरक्की में योगदान देना है।
1: सही जानकारी देश की तरक्की। सोचिए अगर आप बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं और देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में खुशी बहुत सी सुविधाएं बच्चों को मिलती है। इनफैक्ट ना कोई फीस लगता है वहाँ पर, ड्रेसेस और बच्चे के अकाउंट में पैसे भी आते रहते हैं
0: और बुक्स भी मिलती है।
1: हाँ, जूते, मतलब हर चीज अवेलेबल मिलता है वहाँ पर। तो मतलब यही है कि आप सही जानकारी देंगे तभी और भी सुविधाएं आपको मिल पाएगी। और अब हम बात करेंगे जनगणना और स्वास्थ्य। जनगणना से यही पता चलता है कि किस इलाके में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा जरूरत ज्यादा है, इसी आधार पर नई सुविधाएं शुरू की जाती है। इसीलिए आपकी सही जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कहीं पर आपको, क्योंकि देखा जाए हम पानी के वेस्टेज बहुत ज्यादा करते हैं, कहीं किसी इलाके में नल नहीं है तो आप उस चीज के बारे में भी खुलकर बताएं। कहीं आसपास आपके जो नाले हैं वो बहुत गंदे हैं, काफी टाइम से सफाई नहीं हो पा रही है, तो उसके बारे में भी आप बताएं। लेकिन डिटेल आपने सही जानकारी देनी है।
0: मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी रीना, जैसे आपने बोला कि यू नो साफ सफाई के बारे में भी हम बता सकते हैं कि कई बार क्या होता है ना अस्पताल के बारे में, कुछ गांव ऐसे भी हैं अभी जहां पर अस्पताल की सुविधाएं नहीं होती हैं। जब तक वो शहर पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए साथियों अगर आप सही जानकारी देंगे तो आपके गाँव में भी अस्पताल होंगे और जब अस्पताल होंगे तो जो मरीज को प्रॉब्लम है, जो पेशेंट होते हैं, वो जल्दी से उनको इलाज भी मिलेगा और जब इलाज सही समय पर मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य भी एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे, रीना जी बात कर रही थी स्वास्थ्य और जनगणना के बारे में। अब मैं बात करना चाहूंगी मोबाइल फ्रॉड के बारे में। मोबाइल फ्रॉड से सावधान रहें। अगर साथियों कोई मोबाइल पर लिंक भेजकर जानकारी मांगे तो तुरंत क्लिक मत कीजिए। फर्जी लिंक आपके फोन और बैंक खाते को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूं सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो साथियों अभी लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आपसे करेंगे और भी बातें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए। कार्यक्रम का नाम है महिला मंच, जहां पर महिलाओं की बातें भी होती हैं, बुजुर्गों की बातें भी होती हैं और छोटे बच्चों की बातें भी होती हैं और हम जैसे युवाओं की बातें भी होती हैं।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। और गाने के बाद फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिला मंच शो में, जहां हम बात कर रहे हैं जनगणना के बारे में। जागरूक नागरिक बनिए, देश की प्रगति सिर्फ सरकार नहीं बल्कि जागरूक नागरिक भी तय करते हैं। सही जानकारी देना और दूसरों को जागरूक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर जिम्मेदार

0: नागरिक बने। देखिए, अगर आपको पता चल जाए किसी चीज के बारे में कि हमें इसके ऊपर सही बोलना चाहिए, सही जागरूकता देनी चाहिए, तो आप अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं, जो बोलने से झिझकते हैं, आप उनको भी समझा सकती हैं साथ ही साथ।
1: और मैं अभी बताना चाहूंगी, परिवार की सुरक्षा जरूरी है। अपने परिवार को ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी के बारे में जरूर बताइए। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से जागरूक बनाइए। सुरक्षित परिवार ही खुशहाल परिवार होता है। देखिए, कई बार ऐसा होते ना श्रोताओं, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी फैमिली में बड़े बुजुर्ग होते हैं और आजकल तो फोन हर किसी के हाथ में होता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या फिर हम जैसे यूथ हों। तो हम तो क्या होता है, कई बार जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इतना एजुकेटेड नहीं होते हैं, और कई बार होते भी हैं तो उनको फोन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। कभी कभी वो क्या करते हैं, जैसे ऑनलाइन कॉल्स आ जाते हैं, बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं, फ्रॉड कॉल्स आ जाते हैं, जिस पर वो कॉल पर जानकारियां मांग लेते हैं आपकी पर्सनली होती है। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को समझाइए, छोटे बच्चों को भी बताइए कि ऑनलाइन कोई भी अगर फोन पर कोई लिंक आ रहा है तो उस पर तुरंत क्लिक ना करें, पहले घर में जानकारी लें, उसके बाद ही उसको टच करें, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती ना बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।
0: जब कोई सरकारी अधिकारी आए तो सहज से सहयोग करें, जरूरी सवालों के सही जवाब दे, और किसी भी बात को समझने में परेशानी हो तो पूछने में संकोच ना करे। जागरूकता और सहयोग दोनों जरूरी है। क्या होता है ना श्रोताओं, कभी कभी कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती है और वहां पर हम झिझकते हैं कि यार मैं इसे दोबारा पूछूं या ना पूछूं, कभी ये कुछ बोले ना। देखिए, आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, आप जितनी बार हो सके उतनी बार आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आपको सही सवाल पता होगा तभी आप सही जानकारी दे पाए।
1: अब दोस्तों, हमारे जाने का भी वक्त हो गया है और जाते जाते बस अंतिम संदेश आपको हम देना चाहेंगे। साथियों, जनगणना देश के विकास का आधार है। सही जानकारी दीजिए, लेकिन OTP, ATM, पिन, बैंक पासवर्ड और निजी दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिए। जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए और देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। मैं RJ खुशी अब लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। सुनते रहिए, ऐसे ही बहुत सारी जानकारी वाले कार्यक्रम लेकर आते हैं हम आपके लिए एवरीडे महिला मंच में। तो अब हमें जाने की अनुमति दीजिए, मिलेंगे आपको कल नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: जनपद मुरादाबाद वासियों से अनुरोध है कि अच्छी वे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं अपने बच्चे के विकास हेतु आज ही निकट के प्रसिद्ध विद्यालय में जाकर निःशुल्क प्रवेश कराएं। याद रहे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की संपूर्ण शिक्षा फ्री पाएं और सभी सरकारी सुविधाएं जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, 1200 रूपए की DBT की धनराशि आदि का लाभ उठाएं। स्कूल चलो अभियान, बेसिक शिक्षा विभाग मुरादाबाद।

हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, आज तो मौसम ने दिल ही जीत लिया है। बारिश की ठंडी ठंडी फुहारे, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और चाय की प्याली बस जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का एहसास करा रही है। और इस सफर को सुहाना खूबसूरत बनाने के लिए खुशी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आप मुझे इस ब्यूटीफुल शो में कॉल लगा सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर मैं आपको बता रही हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। नंबर मैं बता रही हूँ 9837896896। जब तक आप मुझे कॉल लगाते हैं, तब तक मैं आपको एक खूबसूरत सा गाना सुनवाती हूँ जो आज के मौसम पे एकदम फिट बैठता है। तो चलिए सुनते हैं मिलकर सब ये बेहतरीन सा गाना।

0: दोस्तों आपने हमें याद किया और हम चले आए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर आपका फेवरेट शो लेकर हेलो फरमाइश। और ये अभी प्यारा सा ट्रैक आपने सुना साज भटकी बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। तो अभी बात करते हैं अपने कॉलर से कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है और जानेंगे उनको हमारी याद आती है या नहीं। हेलो फरमाइश। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: हाय दी, कैसी हो आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ। नाम तो बता दीजिए, आप इतनी गुमसुम से क्यों हैं आज?
1: मैं मुझे पता नहीं, आप लाइव आ रही।
0: हाँ जी, ऑन ईयर आ गए हैं हम आपको। इंतजार हमने आपको ज्यादा नहीं करवाया, हमने क्या, चलिए बात कर लेते हैं अपनी।

0: अब बताओ कौन सा गाना सुनोगे आज?
1: मैं कौन सा ना चाहती हूँ, नीले नीले अंबर पे
0: चांद जब आए। हाँ ओके, और ये गाना किन के लिए सुनना चाहते हैं आप?
1: ये गाना मैं अपनी बेस्टी रुकैया फातिमा के लिए।
0: ओके, और कुछ कहना चाहते हैं आप इन लॉन्ग टाइम के बाद जुड़े हुए आज हमारे शो में?
1: और बस यही कहना चाहती हूँ, सब अपना ख्याल रखे।
0: कैसा
1: बात हो रही है?
0: हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया। डियर, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक, आप भी अपना ध्यान रखिएगा।
1: मैम और कुछ नाम लेना चाहती हूँ सिस्टर के?
0: हाँ तो ले सकती हो, इतना सोच सोच कर आज बात क्यों कर रही हूँ, ध्यान किधर है आपका?
1: मैम ध्यान तो बड़े ज्यादा दिनों में बात हो रही है ना इसलिए।
0: ओहो, चलिए कोई बात नहीं है, बताइएगा। ओके, चलिए सभी के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए,
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम, बाय। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आएंगे हम, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाओ बिना किसी देरी के, नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अभी जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं ना, हाँ ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।

0: हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
2: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: कॉल 9045912348।
3: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और दोस्तों आपका फेवरेट शो चल रहा है। देखिए आज मौसम भी बहुत ही सुहाना है, रिमझिम बारिश हो रही है और हमारे साथ हमारी नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गई हैं। एंड ये जो लिस्ट अभी आपने ट्रैक सुना था बरसात के मौसम में, इस गाने की रिक्वेस्ट हमें एक सर ने भेजी थी एंड आई डोंट नो कैसे उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कुमार सानू, रूप कुमार राठौर जी की आवाज में ट्रैक सुना आपने और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम आयत है।
0: आयत, कहाँ से बात कर रही हो आप?
1: मुरादाबाद
0: से। ओके, अभी कौन सी क्लास में स्टडी करते हो आप? अभी कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो आप?
1: दूसरी क्लास में।
0: अच्छा, सेकंड क्लास में हो।
1: हाँ।
0: ओके, और रेडियो सुनते हो आप?
1: हाँ, सुनते हैं।
0: बताओ आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैं जलंधर मूवी सॉन्ग मैंने तो तेरे नाल नचना।
0: ओह हो, किसके नाल नचना है आपको? किसके नाल नचना है आपको बताओ मैनू, बोलो बोलो। हेलो,
1: रेडियो ट्यूनिंग पे।
0: अच्छा ओके, चलो ये गाना आपको सुनवाते हैं।
1: बाय
0: बाय। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक एंड आप भी मुझे कॉल लगाइए और अपना फेवरेट गाना आप सुन सकते हैं जो आपका दिल चाहे। चाहे आप डांस करो, चाहे आप कॉफी पियो या फिर आप कार में बैठकर एंजॉय करो ब्यूटीफुल ट्रैक को। एंड ड्राइविंग अगर आप इस समय कर रहे हैं राइट नाउ तो केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा और ये प्यारा सा गाना आप सभी इंजॉय कीजिए। बस मैं आती हूँ लौटकर अभी आपकी फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। समय में बता देती हूँ आपको, वक्त हुआ है 3:31 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। तो चलिए सुनते हैं शानदार गाना और आपको भी मुझे है फोन लगाना, नंबर मैं बता रही हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों ब्यूटीफुल ट्रैक ये इस बार मैं हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो लेकर हेलो फरमाइश। और अभी आपने धुरंधर मूवी से प्यारा सा ट्रैक सुना अफसाना खान जी की खूबसूरत सी आवाज, साथ में रिबल भी दे रही थी साथ। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कहाँ से जुड़ी हैं वो हम उन्हीं से बात करके जानते हैं। हेलो फरमाइश, रेडियो का वॉल्यूम प्लीज मैम थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए ताकि आपकी आवाज अच्छे से मुझे आ पाए। हाँ जी हेलो फरमाइश जी, क्या नाम है आपका? जी बताइए निशा, कैसी हैं आप? जी आपकी दुआएं हैं, हम भी ठीक हैं। आप बताइएगा आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: हम गाने के बोले आसिफ खुशी के गम के होते हैं एक जैसे।
0: अच्छा, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। ओके, और ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहते हैं आप या फिर किन के साथ सुना चाहते हैं ये बताइए हमें।
1: मेरी भाभी
0: जी ठीक है, आपकी पूरी फैमिली के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। दोस्तों आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, आप अगर आज सुहाने से मौसम में कोई भी गाना आपका सुनने का मन है, चाहे वो बारिश वाला हो या फिर वो जो भी आपका मतलब दिल करे, क्योंकि गाने वही अच्छे लगते हैं जो दिल को खुशी एंड सुकून पहुंचाते हैं, है ना? तो यहाँ पर खुशी आपकी पसंद के गाने प्ले करेगी। आपको बस सिंपल सा काम करना है, अपना फोन उठाना है और हमारा नंबर डायल करना है 9837896896। और मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से गाने के उस पार।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. शो चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल करके अपना फेवरेट गाना आप सुन सकते हैं. और दोस्तों, ये कार्यक्रम एवरीडे मंडे टू सैटरडे आता है. आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, पर एक छोटी सी शर्त है हमारी कि आप हफ्ते में सिर्फ एक ही बार कॉल लगा सकते हैं वीक में, ताकि नए लिसनर्स को भी मौका मिले और वो भी इजीली अपना कॉल लगा पाए. तो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई है. हेलो फरमाइश.
1: हेलो दीदी, नमस्ते.
0: क्या नाम है आपका?
1: नाम परी है.
0: परी? परी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी बर्थडे.
1: थैंक यू.
0: मोस्ट वेलकम. आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, एंड जो भी आपकी लाइफ में ड्रीम है सबको अचीव करो, और पढ़ लिख कर मम्मी पापा का नाम भी रोशन करो. मोस्ट वेलकम. बताओ परी, आप कैसे हो? हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ. और बताओ, परिवार में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: मम्मी पापा भी
0: सही हैं. ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है. सबको हमेशा ठीक रहना चाहिए. बताओ परी, आज आपका बर्थडे है, आप कौन सा गाना सुनोगे? ओके, तो चलो हम आपको सुनवाते हैं बर्थडे वाला सॉन्ग. ठीक है, आप एंजॉय करो और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो अपने बर्थडे को. एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू परी. मोस्ट वेलकम डियर. तो चलिए, ये परी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक. हरियाणवी ट्रैक है, लेकिन बहुत ही प्यारा है. तो सुनते हैं सब मिलकर, लौट कर आते हैं. एंड तब तक आप भी मुझे कॉल लगाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा.

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: फाइनली बर्थडे सॉन्ग के बाद हम आपके साथ फिर से कनेक्ट हो गए हैं दोस्तों, और आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896, और वक्त भी बता देती हूँ, समय हुआ है 3:50 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। एंड आप मुझे कॉल कीजिएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। नंबर मैं आपको बता रही हूँ 9837896896। इस नंबर पे आपको कॉल करना है और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है। जब तक आप मुझे कॉल करते हैं, तब तक मैं आपको सुनवाती हूँ एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गाना आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये गाना आज के मौसम पे एकदम परफेक्ट बैठता है।
1: जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों बरसी थी।
2: अरे सुन सुन।
3: यस मां।
2: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, अभी आपने जुबिन नौटियाल जी की आवाज में प्यारा सा ट्रैक सुना। सुन सुन सुन बरसात की धुन जैसे कोई मधुर गीत सुनाती है, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और हर दिल को महका जाती है। आज मौसम भी बस यही कह रहा है, कुछ पल के लिए ठहरिए और इस खूबसूरत बारिश का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, बारिश का आनंद तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में अगर अपने फेवरेट गाने भी हो जाएं तो फिर मौसम और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है ना। चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राधेश्याम टेलर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी आपको भी नमस्कार सर। बताइएगा राधेश्याम सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैं हूँ जिला मंदसौर तहसील शामगढ़ मध्य प्रदेश से।
0: जी
1: राधेश्याम टेलर।
0: जी बताइएगा सर, आज आपने कॉल किया है, वहाँ का मौसम कैसा है आपके यहाँ का, जरा ये बताइएगा।
1: मौसम तो काफी अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है, और यही सुहाने के मौसम में कुछ गीत, कोई प्यारा सा गीत यदि पहाड़ी के ऊपर हो, वो गीत सुनने को मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए।
0: जी बताइएगा आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: जी मैं सुनना चाहूँगा, फिल्म का नाम है कुर्बानी।
0: हाँ जी।
1: और गीत है अंतिम में।

0: बहुत खूबसूरत आपने गुनगुनाया है सर, और आपकी पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं। आपने कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: जी धन्यवाद, नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक, लेकिन उससे पहले कुछ शॉर्ट ब्रेक का टाइम हो गया है, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता रही हूँ 9837896896। मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त आरजे खुशी।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। हेलो फरमाइश में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, अगर आप अभी बैठे हैं राइट नाउ चाय या कॉफी का लुफ्त उठा रहे हैं, तो आप हमें भी फोन लगा सकते हैं। आप अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं। और दोस्तों, बड़ी खूबसूरत सी शायरी है कि किसी को चाहना आसान है, लेकिन उसे हर दुआ में शामिल कर लेना यही सच्चा प्यार है। क्योंकि कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं, दिल की सच्चाई से बनते हैं। और अगर आपके पास ऐसे रिश्ते हैं, तो उनको संभाल कर रखिए। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मोहम्मद आमिर अंसारी बोल रहे हैं
0: जी।
1: राम करेबी बरेली से।
0: बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बहुत बढ़िया है, आप सुनाए, आप कैसे हैं?
0: हाँ जी, हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा, आपकी क्या फरमाइश है आज?
1: आज हमारी फरमाइश है, एक एल्बम है जाने वाले, वो उसकी बी पारक और उनकी आवाज में है, पलक की आवाज।
0: बी पराग जी की आवाज में एंड पायल देव की आवाज में ये ट्रैक है, जिस गाने की आप रिक्वेस्ट हमें कह रहे हैं।
1: ये एल्बम सुनना चाहते हैं।
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं आपको।
1: और हमारे साथ सुनेंगे इस गीत को।
0: हाँ जी बताइए।
1: मेरे साथ इस गीत को नसीन अंसारी, तमा अंसारी, तमीम अंसारी
0: जी,
1: नूर अंसारी और सभी जो इस वक्त सुन रहे हैं, उन सभी के लिए।
0: ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एंजॉय कीजिएगा प्यारा सा गीत। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अभी मौका है। हाँ, 4:06 ही हुए हैं, तो कॉल लगा सकते हैं बेफिक्र होकर।

0: पीछे जो रेडियो चल रहा है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर दीजिए प्लीज, आवाज रिपीट हो रही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सेव, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मुरादाबाद से।
0: जी बताइएगा, क्या करते हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: मैं अभी ट्वेल्थ में हूँ।
0: अच्छा, ओके, स्टडी कर रहे हैं। इस बार 12th है आपका, तो कैसी चल रही है आपकी स्टडी, बताइए। तो रेडियो सुनने का शौक है आपको भी? जी बताइएगा, आप कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: एक दिन तेरी राहों में
0: ओके, और ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहते हैं?
1: भाई के लिए।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आपको मुझे कॉल लगाना है, बहुत सिंपल सा काम आपको करना है, और जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर आपका और फेवरेट गाना हम प्ले कर देंगे। तो उसके लिए जल्दी से कॉल लगाओ।

0: हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर, एंड खुशी आपके साथ तो है। एंड मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मुझे कॉल लगा सकते हैं बिना किसी देरी के, ये मौका आपके पास है, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे, जब आप मुझसे बात करें तो प्लीज़ रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर दें ताकि आपकी आवाज़ अच्छे से आ पाए, मेरी आवाज़ रिपीटेड मुझे सुनाई ना दे। उससे क्या होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्लियर वॉइस नहीं जाती है। तो प्लीज़ आप मुझसे बात करें, जब भी मुझे कॉल करें तो रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर लें या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें ताकि आपकी आवाज़ प्रॉपर मुझे मिल पाए। तो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश सर, आप भी रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास से मेरी आवाज़ मुझे रिपीट हो रही है। जी बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप?
1: मैं मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ, दिलशाद खान।
0: मुरादाबाद से बात कर रहे हैं, दिलशाद खान जी कहाँ से बात कर रहे हैं मुरादाबाद में आप?
1: मैं मुरादाबाद पुलिस लाइन से बात कर रहा हूँ।
0: ओके सर, तो इस समय आप अभी ड्राइविंग कर रहे थे राइट नाउ, राइट? ओके जी, तो बताइएगा सर आपको कौन से गाना सुनने हैं?
1: मैं मुझे गाना सुनना है जिस मूवी का ये कसूर है मेरा।
0: ओके, और अभी राइट नाउ कहाँ पर हैं आप? अच्छा बुद्धि बिहार, तो मौसम बताइए कैसे है, बारिश हो रही है क्या नहीं अभी?
1: नहीं, अभी निकल रही है,
0: बारिश बंद हो गई है। ठीक है सर, आप ये गाना एंजॉय कीजिएगा, थैंक यू कॉल करने के लिए। मोस्ट वेलकम, केयरफुली गाड़ी चलाइएगा और ये प्यारा सा गाना सुनते जाइए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से गाने के इस पर।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
2: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।
4: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
5: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
4: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org
5: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
4: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
5: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
4: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
5: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
4: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
5: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
4: EKCC साख से समृद्धि।
5: नियम और शर्तें लागू।

0: दोस्तों, एड ब्रेक के बाद हम फिर से आ चुके हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और वक्त हुआ है 4:29। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, क्योंकि वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: अर्श।
0: अर्श, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: लक्ष्मीपुर कटाई।
0: जी बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो अभी?
1: फाइव।
0: अच्छा, ओके, कक्षा 5 में आप पढ़ाई करते हो।
1: जी
0: और रेडियो सुनते हो?
1: जी
0: कौन कौन सुनता है आपके परिवार में रेडियो, बताइए।
1: सब लोग सुनते हैं ध्यान से।
0: अच्छा बताओ, आप कौन सा गाना सुनोगे ध्यान से?
1: अक्सर
0: आवाज नहीं आ रही मुझे, दोबारा बोलो।
1: अक्सर इस दुनिया में जाने मिलते हैं गाना।
0: ओके, अरे बाबा क्या बात है। चलो सुनवाते हैं गाना आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजाने राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं, है ना? कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, हम भले ही उनसे 1 मिनट 2 मिनट मिले हों, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में बस जाती हैं। तो चलिए ये गाना सुनते हैं फ्रॉम द मूवी धड़कन से। मैं लौट कर आती हूँ जब तक आप भी मुझे कॉल लगाएगा। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896।

0: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
4: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
8: हेलो, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है FM मुरादाबाद 89.6 पर, खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, शो चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं, हेलो फरमाइश एवरी डे आप सुन सकते हैं। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी नदिया के पार। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हाँ जी, क्या नाम है आपका? वैष्णवी। इतना धीरे धीरे बात क्यों कर रहे हो? बोलो बोलो। हाँ हेलो, अभी आवाज आपकी ठीक ठाक आई है, बताओ कैसे हो वैष्णवी?
9: ठीक हूँ, आप कैसे हो?
8: हाँ जी, आई एम फाइन। कहाँ से बात कर रहे हो आप?
9: मैं प्रकाश नगर, दिल्ली नंबर 2।
8: ओके, आप तो हमारे पड़ोसी हैं।
9: आप कहाँ रहते हैं?
8: हम तो आपके पास में रहते हैं।
9: आपका नाम क्या है?
8: मेरा नाम मुझे पता नहीं है, आप बताओ क्या है। बोलो बोलो। अच्छा मैं बताऊंगी आपको, आप पहले मुझे ये बताओ, रेडियो सुनते हो? तो बताओ इस समय कौन बात करता है? रेगुलर अगर सुनते हो तो बताओ।
9: मेरे को आपका नाम नहीं पता।
8: नहीं, रेडियो आपने कभी सुना है? तो कोई आरजी बोलता है, वो अपना नाम भी बताता है। बताओ किन किन को सुना है आपने?
9: नाम भूल गई।
8: नहीं, ऐसे नहीं होता है, नाम भूल गए, हम आपका छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं। बताओ बताओ जल्दी से, आप कौन कौन से आरजी को सुनते हो?
9: ज्यादा नहीं सुनते, तो मेरे
8: का नाम पता नहीं है। हाय रब्बा, मैं क्या करा। मेरा नाम खुशी है, आप जानते हो? नहीं जानते थे आप, पता चल गया है ना आपको? आपकी वॉइस नहीं आ रही प्रॉपर, क्या बोल रहे हो दोबारा बोलो।
9: आपका नाम खुशी?
8: यस, मेरा नाम खुशी है। आप बताओ कौन से गाना सुनोगे वैष्णवी? शीशा सॉन्ग सुनना चाहते हो आप? हाँ ठीक है, सुनवाते हैं आपको। थैंक यू वैष्णवी कॉल करने के लिए। और चलिए दोस्तों, ये ट्रैक सुनते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है एंड लड़कियां काफ़ी रील्स बना रही हैं, तो चलिए सुन लेते हैं प्यारा सा ट्रैक।

से पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफ एम मुरादाबाद 9.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना। एंड जब लड़कियां तैयार होती हैं ना, तो वो खुद को ही देखकर शर्मा जाती हैं। पर अच्छा लगता है खुद को थोड़ा, मतलब प्यार करना, खुद को शीशे में निहारना। और मुझे लगता है कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है, तो करना चाहिए खुद से। क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आपसे प्यार नहीं करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से प्यार कीजिए, खुद की केयर कीजिए, और यूं ही हमेशा हैप्पी रहिए, ऑलवेज। तो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी, हेलो फरमाइश।
1: यूपी बनारस से मोहसिन मंसारी बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: मस्त हैं, चकाचक हैं। और आप कैसे हो?
0: जी मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा बनारस का मौसम कैसे है सर?
1: आज तो दिन भर गर्मी पड़ रही थी, धूप निकला हुआ था, मगर अभी मौसम एकदम से चेंज हो गया है।
0: अच्छा, ओके।
1: हवाएं चल रही है, मतलब बारिश नहीं आ रही है।
0: ओके,
1: आपके इधर का मौसम कैसा है?
0: सर हमारे यहाँ पर तो सुबह से बारिश हो रही थी, शायद अभी थोड़ी धूप निकली है, ऐसा सुनने में मुझे आया है राइट नाउ।
1: तो थोड़ा सा इधर भी बारिश अभी तक नहीं आया।
0: ओके, तो आपके यहाँ पर भी आ जाएगी, थोड़ा सा इंतजार और कीजिएगा।
1: बिल्कुल कर रहे हैं, काफी दिन से कर रहे हैं।
0: जी जी जी, अब फाइनली। टेल मी बोलिए सर।
1: महीनों से कर रहे हैं मगर अभी तक बारिश आया नहीं।
0: हाँ, अब आ जाएगी,
1: काफी जगह आ भी गई है, बस मेरे यहाँ बाकी है।
0: अच्छा, अब आपके यहाँ पर आनी बाकी है, मतलब आ जाएगी। अब थोड़ा इंतजार जो आपने किया है, फाइनली उसका फल आपको मिलने वाला है। ठीक है,
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो एक गीत सुनना चाहता हूँ, वो गीत है आपकी पसंद का रहेगा मौसम के ऊपर।
0: ओके, तो चलिए हम एक प्यारा सा ट्रैक सुनवाते हैं, बाकी आप बताइए कुछ कहना चाहते हैं।
1: नहीं, कहना यही चाहते हैं कि कल मॉर्निंग में मिलेंगे।
0: ओके, अच्छा। मुझे लगा आप कुछ कहना चाहते हैं श्रोताओं के लिए एंड अपने दोस्तों के लिए।
1: नहीं नहीं, दोस्तों को याद करना चाहते हैं।
0: जी बताइए। ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं एक प्यारा सा ट्रैक अपनी पसंद का हम। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक और इसी गीत के साथ मैं लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान और यूं ही हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपनों के साथ रहिए और हर मौसम का लुत्फ उठाइए, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, या फिर कहते हैं ना कि जैसे लाइफ हमारी मौसम की तरह बदलती है, कभी खुशियां भी आती हैं तो कभी तकलीफें भी आती हैं, लेकिन आपको हर मौसम की तरह अपनी फैमिली के साथ हर सिचुएशन में साथ रहना है, चाहे वो खुशी का पल हो या वो गम का पल हो। जब सब मिलकर साथ रहते हैं ना, तो कोई भी परेशानी आती है तो उसका सामना करने का ना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हिम्मत आ जाती है जब अपने साथ होते हैं। तो चलिए मैं तो अभी चलती हूँ, लेकिन नेक्स्ट प्रेजेंटर यहाँ पर रीना जी आने वाली है, आपको एंटरटेनमेंट का डोज देने वाली है। तो आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 और मुझे दीजिए जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर।

0: ऐ मेरी हमराज, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
5: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
4: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
5: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
6: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
7: जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
9: उन्होंने बताया कि परियोजना से लगभग 75 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 98 लाख व्यक्ति दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4-6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल पूंजी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध उच्च गति संपर्क प्रदान करेगी साथ ही सागर भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए आगे की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। इसके अलावा समिति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति ने गृह मंत्री को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक अग्रिम जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने सीखने लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। कल मैक्सिको फ्रांस और नॉर्वे के अंतिम 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89
1: पर। जब उठो तभी सवेरा, गुड मॉर्निंग।
0: जी बिल्कुल, तुमने सही कहा, जब उठो तभी सवेरा। लेकिन मैं सुबह मॉर्निंग में उठ गई थी। गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो 5:08 हो चुकी है, यानी कि आज का जो वेदर है भाई साहब, बड़ा ही शानदार वेदर, यानी कि सुहाना वेदर है। सुबह सुबह उठते ही बारिश की फुहारे, अय हय। बस और अभी क्या है ना, हल्की हल्की से धूप निकल गई है। सूर्य भगवान ने कहा कि चलो बहन, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तुम आना, अभी मेरे को जाने दो। क्योंकि वो सज धज के आते हैं ना, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं सज धज के जाऊँ, मुझे सब देखे। और भाई जिनके घर में कपड़े सूखे नहीं है ना, वो थोड़ा सुखा लेंगे। तो आज 1 जुलाई है, नया महीना है, नई शुरुआत है। और बहुत से चीज़ें हैं जो हम यही सोचते हैं कि नहीं यार, 1 तारीख से शुरू करेंगे, 1 तारीख आएगी तभी शुरुआत करेंगे, जो भी कुछ लेना है उसी तारीख से लेंगे। रिचार्ज, इनफैक्ट रिचार्ज के लिए भी एक सोचते हैं, नहीं 1 तारीख से ही करेंगे, 1 तारीख से करेंगे तो सही चलेगा। तो आज 1 जुलाई है, बहुत सी चीज़ें चेंजेस भी हुई है, और आज बहुत स्पेशल डे भी है। तो हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। बस आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और श्रोताओं, आपसे मैं ये कहना चाहूँगी, कहीं नहीं जाइएगा, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमानी आपने, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और एक बहुत ही शानदार गाना जो आप सभी के लिए है, सो इस गाने को एंजॉय करिए, लौट कर।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए एएसके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां डीएलएड बीटीसी 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
2: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।
4: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
5: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
4: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
5: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
4: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
5: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन
4: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
5: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
4: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
5: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
4: EKCC, साख से समृद्धि।
5: नियम और शर्तें लागू।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज। साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूं तो 5:18 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में श्रोताओं। और ये समय यानी कि ऑफिस से घर के लिए हर कोई रवाना होता है। सो आप सभी से एक ही बात कहना चाहेंगे, देखिए वेदर तो थोड़ा मिजाज वेदर का है वो चेंज हो चुका है, यानी कि कूलिंग वाली वेदर है। सुबह कूलिंग और इस टाइम देखा जाए तो अच्छी खासी धूप निकली हुई है। तो एक ही बात आप सभी से कहेंगे, देखिए जब बारिश आती है ना तो गलियों में ना पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, सड़कों पर भर जाता है। तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे, जो बाइक चलाते हैं, जो कार में है, थोड़ा धीरे चलाए करिए उस टाइम, क्योंकि जो ई रिक्शा में होते हैं, जो पैदल सवारी होते हैं ना, वो जो आप स्पीड में चलाकर जाते हैं ना, जो पानी की उछाल ऊपर तक जाती है, समझिए उनको गीला कर जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इस मौसम में अगर कोई व्हाइट कलर के कपड़े पहन के चले जाए तो भैया मतलब व्हाइट कलर तो दिखता ही नहीं है। इसीलिए बरसात के समय जब थोड़ा सा पानी भर जाता है सड़कों पर, तो इस चीज का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। कि जरूरी नहीं है कि आप सेफ रहेंगे और दूसरा भीग जाएगा, क्या पता आप भी गीले हो जाए, आपके भी कपड़े गीले हो जाए। इसीलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आराम से गाड़ी चलाइए ताकि दूसरा इंसान भी बच सके, ई रिक्शा वाले भी, जो पैदल सवारी है वो भी बच सके। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपने ध्यान रखनी है, वो ये है कि बरसात के मौसम में बहुत से हैं कि भैया हेलमेट उतार देते हैं, थोड़ा सा बारिश का आनंद लेंगे, नहाते हुए घर जाएंगे, तो कौन ही देख रहा है। लेकिन और ऊपर से जो गाड़ी वाले भैया है ना, वो भी कहते यार आज कौन से खाकी कलर के मामा सामने खड़े होंगे जो मुझे बोलेंगे कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगा लो। तो मेरी जान, आपसे मैं बता दूं कि आप कैमरे की निगरानी में होते हो, आप चाहे हेलमेट लगाए ना लगाए, बरसात का आनंद ले, पैसे तो आपके गुल्लक से कटने कटने हैं, पॉकेट पर जो है वो बर्डन तो पड़ेगी पड़ेगी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, मौसम अपनी जगह है लेकिन अपनी सेफ्टी अपनी जगह है। और हेलमेट सीट बेल्ट पहनना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने घर सेफ पहुंचेंगे, तो बस पहन लीजिए, लगा लीजिए, क्या ही जाता है जी। अच्छा ये बताइए, चलान कटवाना अच्छा लगता है आपको? नहीं ना, जब चलान कट जाते तो फिर यही बोलते था तेरी की, इससे अच्छा तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा ही लेते यार, क्या ही जा रहा था। तो इसीलिए लगा कर रखनी चाहिए। और आप अगर ऑन द वे हैं और कहीं आपको ट्रैफिक जाम दिखे तो आपको

क्या करना है पता है ना? अरे हाँ हाँ मैं बताती हूँ आपने क्या करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896 पर हमें मैसेज करके बताना है, ताकि उस रूट से जो भी जा रहे हैं, दिल्ली रोड से, काठ रोड से, रेलवे स्टेशन की तरफ से, और बाजार में इस टाइम तो और भी ज्यादा क्राउड होगा और थोड़ा सा कीचड़ भी हो जाता है, तो उस वजह से भी क्राउड होता है, तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, ताकि उस रूट से और भी कोई जाने वाले हैं वो थोड़ा बच सके। तो चलिए, और इस मौसम में नाव चलाइए, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते भैया कि कागज के नाव बनाते हैं, वो घूम पानी में बहाने लग जाते हैं, तो ये बरसात का भी अपना अलग ही मजा होता है। सो अगला गाना बहुत ही शानदार है, उसके बाद लौट कर आते हैं और करेंगे ढेर सारी बातें। आज के डेज के बारे में बात करेंगे श्रोताओं, 1 जुलाई है और 1 जुलाई को क्या खास डे मनाया जाता है।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है अर्जुरीना के साथ। और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, क्योंकि देखिए जिंदगी में गुनगुनाना बहुत जरूरी है। और आज 1 जुलाई हमारे लिए बेहद बहुत जरूरी, बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए यानी कि 6 महीने कैसे पूरे हो गए इस साल के पता ही नहीं चला, और अगले 6 महीने कैसे पूरे हो जाएंगे वो भी नहीं पता चलेगा। इसलिए श्रोताओं, आप सभी से ये कहना चाहूंगी, जो भी करना है कल के ऊपर डिपेंड बिल्कुल मत रहिए, जो भी करना है आज ही करेंगे, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। हम अक्सर 1 तारीख का इंतजार करते रहते हैं, तो 1 तारीख है, जो भी आपने चेंजेस करने हैं आज से शुरू करिए, क्योंकि कल का दिन कभी नहीं आता है। सो आज 2 डेज है जो बहुत ही हमारे लाइफ में बेहद खास, बेहद इम्पोर्टेंट है। उनमें से है पहला यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे, साथ ही साथ आज मनाया जाता है सीए डे। इन दोनों की ईमानदारी हमारे जिंदगी को और भी ज्यादा खास, स्पेशल बना देती है। डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो भगवान के दूसरे रूप माने जाते हैं, जो कि दिन रात बिना थके हमारी सेहत की सुरक्षा करते हैं। आप 24 घंटे हॉस्पिटल खुले रहते हैं, एट अ टाइम जब भी जाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हर चीज का आपको उपचार मिलेगा। तो डॉक्टर्स हमारे जिंदगी में ना भगवान से बढ़ के हैं, जो कि हमें, हम बीमार होते हैं तो हमें मेडिसिन मिल जाता है जाने पर, कोई भी प्रॉब्लम हो हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है। और दूसरा सीए की अगर मैं बात करूं, जो सिर्फ हिसाब किताब ही नहीं संभालते बल्कि लोगों के सपनों, कारोबार और देश की आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज दिल से हमें धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर्स को, सीए को, कि मेहनत और ईमानदारी हमारे जीवन को और बेहतर बना देती है। इन दोनों की मेहनत से हम अपने घरों में सेहत को अपनी सुरक्षित रखते हैं। और दूसरी बात यही कहना चाहूंगी, देखिए जब भी हम लगे कि बॉडी में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई दिक्कत ही हो, आपको देखिए कम से कम हमने अपने फुल बॉडी की एक बार चेकअप जरूर करा लेनी चाहिए, कि क्या पता अंदर कोई दिक्कत हो, आपको जल्दी पता चल जाए। हालांकि हम ऐसे करते हैं कि भाई जब बीमार पड़ते हैं, जो बॉडी में कोई दिक्कतें दिखती हैं, थकान फील होता है, तभी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन कभी सोचा आपने कि अपने लिए एक कदम हम खुद बढ़ा ले आगे? जिस दिन आपने ये सोच लिया कि अपने लिए, खुद के लिए कदम बढ़ाना है, उस दिन आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति कहलाएंगे, क्योंकि आपने खुद के लिए डिसीजन लिया है। चलिए फिलहाल हम बातें तो करते रहते हैं, बहुत बातें करती हूँ मैं, चुप नहीं होती हूँ। फिलहाल एक गाना आप सभी के लिए, सो इसके बाद लौट कर आते हैं और करेंगे ढेर सारी बातें। आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि कहीं नहीं जाने जी, आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहना है, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया श्रोताओं।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
3: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
2: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ। और समय की बात करूँ तो 5:39 हो चुके हैं श्रोताओं। और वेदर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, बरसात तो शुरू हो चुकी है, यानी कि 1 वीक के लिए बताया जा रहा है बरसात आएगी। साथ ही साथ बिहार, हरियाणा, पंजाब में भी बारिश आने की संभावना जताई जा रही है, जो कि हमें 1 हफ्ते तक गर्मी से थोड़ा राहत मिलेगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि यानी कि जुलाई का जो महीना है वो हमारे लिए राहत भरा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, आगे आगे बहुत गर्मी आएंगी। इस गर्मी में हमें अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। और इस गर्मी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप खाते हैं, आपकी बॉडी का जो तासीर है वो ठंडा रखता है। उसमें से एक फेवरेट वाला होता है लस्सी। और लस्सी को हम कभी कभी सोचते हैं यार लस्सी मसालेदार वाली होनी चाहिए थी, है ना, उसमें थोड़ा नमक मसाला वगैरह डाल दिया जाए तो और भी स्वादिष्ट हो जाता है, और जो ना भी पीना चाहे लस्सी वो भी पी लेता है। सो आप देखिए, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाहर जाते हैं तो वहाँ की लस्सी पीते तो मज़ा आ जाता है ना, लेकिन घर की वही पीते हैं तो वो लगता है कि नहीं यार कुछ तो कमी है। तो उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है मैं बताती हूँ आपको। आपको नोट करना पड़ेगा, देखिए तभी आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज फिर भूल जाएंगे, दिमाग से स्किप हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बोल दूंगी और फिर आप सोचेंगे कि होए यार मैं तो लिख नहीं पाई तो कैसे सोचूं। सो बताती हूँ मैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी जो लस्सी है वो प्यारी बने, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सौंफ लेना है, जीरा, काली मिर्च, सूखे करी पत्ते और सूखा पुदीना, सेंधा नमक होना चाहिए। जो ये जो सूखे करी पत्ते हैं और पुदीना है उसको भी आपने पीस लेना है, जो काले मिर्च है वो भी पीस लीजिए, जीरा भूनकर पीस लीजिए, सौंफ है उसको भी पीस लीजिए, और इन सब को नमक के साथ मिक्स करके एक डब्बे में रख लीजिए। जब भी आप लस्सी बनाते हैं अपने लिए, उसमें बस आधी चम्मच डाला और बर्फ डाला, लो आपकी लस्सी रेडी हो चुकी है। तो श्रोताओं ये है, और बस इस गर्मी में एक यही दही होती है जो राहत भरी, और एक पानी पानी पीते रहिए। पक्षियों के लिए भी पानी भर कर रखिए अपने छतों पर, ज़रूरी नहीं कि बारिश आ गई तो हम पानी रखेंगे, पानी रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, दाना डालना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात आती है तो हम खाना तो नहीं छोड़ देते ना, तो इसीलिए उनके लिए भी, उनकी भी रक्षा हमें ही करना। और कुछ मैसेजेस आए हैं हमारे पास, चलिए उनको शामिल कर लें। रीना जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। और मैंने मॉर्निंग स्टार्टिंग में बोला था तो इन्होंने कहा कि सुबह का ध्यान है आपको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। विकी सागर जी कनेक्ट होते हैं, आज तो बारिश करा दी आपने, मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है, बिल्कुल जी, चैन की नींद लीजिए। और बहुत कहते थे ना, हाय राम इतनी गर्मी है कि हम सो नहीं पाते हैं, घर में अंदर कमरे में जाओ तो ऐसा लगता है कि भैया आग जला रखी है किसी ने। तो अब 1 हफ्ते के लिए आपको राहत मिलेगी, लेकिन उमस वाली गर्मी तो रहेगी रहेगी श्रोता, और जब तक बारिश रहेगी जब तक थोड़ा सही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ उसका जो उमस वाली गर्मी है वो भी रहने वाली है। अगर आप बाहर हैं, बाहर का वेदर देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं तो स्टूडियो में हूँ तो मुझे नहीं पता बाहर अभी धूप निकली है कि बारिश शुरू हो गई है, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करके बताना है, और ऐसे ही अपना ध्यान रखना है श्रोताओं, और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे। आप बने रहिए आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6। चलिए फिलहाल बहुत ही शानदार गाना प्ले करते हैं आप सभी के लिए सुहाने मौसम में।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और अब हम बात कर लेते हैं यानी कि 1 जुलाई को क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। यानी कि देखिए, पासपोर्ट बनवाना अब हो चुका है महंगा। अगर आपने 30 जून से पहले अगर आपने अपना पासपोर्ट है वो अगर ठीक नहीं करवाया है तो अब आपके पॉकेट पर थोड़ा सा बर्डन पड़ सकता है। और साथ ही साथ एलपीजी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें थोड़ी सी कमी आई है, जो कि हर महीने देखते थे कि एलपीजी सिलेंडर है वो गैस है वो महंगा ही होते जा रहा है, लेकिन अब 1.8 सस्ता हो चुका है। साथ ही साथ गाड़ी लेने की सोच रहे तो वो भी महंगी हो चुकी है जी। बिल्कुल, कुछ चीज़ें हैं जो हर चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं हर महीने। जैसे कि हम सोचते हैं हर पहली तारीख से कुछ नया शुरू करेंगे, तो सरकार भी यही चाहती है कि हर नए तारीख से आपको या तो पॉकेट पे आपके बर्डन पड़ जाए या थोड़ा सा राहत आपको मिले। तो देखिए, जहाँ राहत मिलती है वहाँ थोड़ा सा अप भी होता है, यानी कि कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं तो कुछ चीज़ें महंगी भी होती हैं। सो बस आपने ध्यान रखना है और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखना है और सुनते रहना है शहर अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए मिलते हैं आपको यानी कि 6 बजे के बाद, ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल के लिए गाना और भी शानदार।

0: उनसे जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
5: हेलो जी, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। गर्ल्ड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूं तो 6:07 हो चुके हैं श्रोताओं। और अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि 1 जुलाई है और 1 जुलाई से सभी बच्चों के यानी कि स्कूल्स खुल चुके हैं। सो आज सुबह सुबह बच्चों के ना थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा कि भैया 1 महीने छुट्टी के बाद जब स्कूल जाना पड़े तो बड़ा बर्डन सा पड़ जाता है। मन नहीं करता सच में जाने का, बिल्कुल भी स्कूल मन नहीं करता जाने का। और आज मम्मियों के थोड़ा सा परेशान होना पड़ जाएगा क्योंकि सुबह सुबह उठना, बच्चों के लिए टिफिन पैक करना बड़े टास्क वाली बात होती भैया, कि सुबह उठ के टिफिन पैक करो, फिर उनको स्कूल भेजो, स्कूल छोड़ कर आओ, फिर उनको लेने जाओ, यानी कि 1 महीने की राहत के बाद फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है। तो हमारे मम्मी पापा के बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब उनके जैसा किरदार ना दुनिया में कोई नहीं निभा सकता है, जो कि सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के लिए करती रहती है वो। और 1 जुलाई से ये भी अभियान शुरू हो चुका है, स्कूल चलो अभियान, यानी कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, उनको भी आपने प्रेरित करना है कि आप स्कूल जाइए, स्कूल में अच्छी अच्छी बातें सीखिए, आगे बढ़िए, जो भी आपका सपना है वो आप पूरा कर सकते हैं। तो स्कूल जाना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आज जैसे सुबह बारिश आई थी, बहुत से बच्चे छतरी लेकर, बहुत बस में, मतलब कैसे 1 महीने के बाद फिर से रूटीन शुरू होता है ना, तो बड़ा मजा आता है जब आप बच्चों को देखते हो ना, तो आपकी बचपन वाली दिनें याद आ जाती है। हम अक्सर स्कूल टाइम से ये सोचते हैं कि यार कॉलेज वाली लाइफ अच्छी होगी, अच्छा जो जॉब करते हैं ना उनकी लाइफ तो बड़ी अच्छी होगी ना, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो लाइफ स्कूल वाली लाइफ होती है ना, उससे बेटर कोई भी लाइफ नहीं होती है सच में। दोस्तों के साथ एंजॉय करना, पढ़ो, किसी भी चीज का बर्डन नहीं होता आपके ऊपर, तो स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा बेस्ट है श्रोताओं। और बच्चों से भी यही कहना चाहेंगे कि आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और जरूरी नहीं है कि पूरा दिन आपने पढ़ाई करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पढ़िए, लेकिन उस समय आपने क्या करना है, फोन आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सीधा ध्यान आपका बुक्स में होना चाहिए, बस इतना ही इनफ है यार। पूरा दिन पढ़ पढ़ के थोड़ा सा दिमाग को भी रिलैक्स देना जरूरी है ना, तो इसीलिए स्कूल से आओ पहले आराम करो, फिर इसके बाद उठो, फिर कुछ हल्का फुल्का खाओ, और फिर अपना काम करो, फिर खेलो शाम को, इतना ज़रूरी है। ये नहीं कि पूरा दिन आपने पढ़ना है, क्योंकि कुछ सोचने के लिए दिमाग को थोड़ा रिलैक्स देना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक कड़क सवाल लेकर आएंगे आप सभी के लिए, जो कि बहुत ही आसान होगा आज का कड़क सवाल। फिलहाल के लिए गाना लौट कर आते हैं जी।
6: DJ Lishkara on the beat.

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।

0: जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: हेलो जी, नहीं क्योंकि अब 1 जुलाई से यानी कि 15 जुलाई तक हर घर में और देखा जाएगा कि कौन बच्चा स्कूल जाता है, कौन बच्चा स्कूल नहीं जाता है। तो हमें सभी को प्रेरित करना है, शिक्षित होना हर किसी का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और इसी भाग दौड़ में ना हम एक ऐसी चीज है जो पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन, अरे बताते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सुन रहे हैं अपने शहर मुरादाबाद के एक लौते रेडियो को, जो कि कम्युनिटी रेडियो है, आप सभी के लिए सुबह से लेकर शाम तक फुल ऑफ अपडेट लेकर आते रहते हैं। और आप सभी को बस क्या करना होता है जी, सुबह से लेकर शाम तक जो आप सभी का इतना प्यार मिलता है ना, बस पूछिए मत। इस प्यार के, जब इंसान को इतना प्यार मिले ना, तो वो अपने आप आ जाता है, आप सभी की तरफ खींचे हुए आ जाते हैं। सो समय की बात करूं तो 6:18 हो चुके हैं। आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और एक ऐसी चीज जिससे हम भागते आते हैं, जब इसका डेज होता है, जब तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, जब बहुत एक्साइटमेंट दिखाते हैं अपने अंदर कि भाई हम हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट जो करना होता है, स्टोरी डालना होता है, व्हाट्सएप पर स्टोरी डालना होता है, हर किसी को दिखाना होता है, देखो भैया हम डेली करते हैं। लेकिन डेली बिल्कुल भी कतई भी नहीं करते। वो पता है क्या है, योगा। आज के टाइम में इतनी बीमारी क्यों बढ़ रही है, सोचा आपने? खाने बदल चुके हैं, हर चीज बदल चुकी है, और ना पहले जैसा काम है। पहले खेतों में हल चलाते थे, बैल को लेकर जाते थे, उसे हल चलाया जाता था, तो इंसान का जो खाया पिया होता था ना, वो ऐसे पसीने में निकल जाता था, उनकी बॉडी बिल्कुल लचीली और फिट रहती थी। आज के टाइम में क्या है, छोटे छोटे बच्चे, 15 साल के बच्चे, 25 साल के, 30 साल की एज में आते आते घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द है, कुछ कर नहीं पा रहे। मतलब छोटे छोटे बच्चे यहाँ तक बताते हैं कि पैर में दर्द हो रही है। वो सिर्फ रीजन ये है, देखिए खाना चेंज है, साफ इस पे तो कुछ बिल्कुल कह नहीं सकते। ऊपर से जंक फूड की जो स्टार्ट हो चुकी है, हर कोई जंक फूड की तरफ खींचा चला जाता है ना। घर का खाना तो हम खाना ही नहीं चाहते। ऊपर से तोरी लौकी अगर घर में बन जाए तो कलेश शुरू हो जाता है कि आज मैं तोरी नहीं खाऊंगा, आज मैं लौकी नहीं खाऊंगा, आज मैं बाहर से मंगाता हूँ, घर पे बिल्कुल नहीं खाना खाने वाला हूँ। तो हर चीज बदल चुकी है। तो हर सभी से, हर किसी से यही कहना चाहेंगे, सुबह खुद के लिए टाइम निकालिए। सुबह आपको टाइम नहीं मिलता, शाम को ज़रूर अपने लिए टाइम निकालिए। खासकर जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए कहना चाहूँगी कि, और बच्चों के लिए योगा ज़रूर करिए। बच्चों को अभी से सिखाइए, तभी वो आगे चलकर योगा करेंगे। योगा करना हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मन शांत होता है आपका, जो भी थकान होता है वो छूमंतर हो जाता है, आपकी बॉडी स्ट्रांग बनती है। तो इस चीज़ को अपनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप योगा अपनाते हैं तो जो आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहती है ना, सब छूमंतर हो जाएगा। जब तक आप अपनी बॉडी पर कष्ट ही नहीं डालेंगे तो सो ओवर थिंकिंग होएगी, साथ ही साथ बीमारियां घर करेगी। इसीलिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। जरूरी नहीं है कि जो डेज आते तभी हम करें, बिना डेज के भी करिए। और क्योंकि स्वस्थ सिर्फ आप रहेंगे, योगा कभी ये नहीं कहता कि मेरे को स्वस्थ करो, क्योंकि वो आपको स्वस्थ करता है। तो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। पानी पीते रहिए और अगला गाना भी सुनते रहिए, और आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहिए। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और अब लेकर आने वाले आप सभी के लिए क्या, अरे पता है ना आपको, कड़क सवाल लेकर आएंगे। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, पंजाबी सुनते हैं जी। मैं कह सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है, मैं

0: दूर थे हसी जाना है।
1: ठीक है फिर आज मैं तेरे तो पूरे 40 फुट दूर रहूंगा, देखते हैं किवें होंदी है प्रोटेक्शन मेरे बिना।

हाय क्या बात है जी। पंजाबी गाने सुनने के बाद तो वैसे ही मजा आने लग जाता है ना श्रोताओं। इसी बीच मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक कड़क सवाल। और समय की बात करूँ तो 6:28 हो चुके हैं श्रोताओं, और एक गाना तो है ही मजेदार, और साथ ही साथ आज के जो कड़क सवाल है वो भी बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक होने वाला है, जो आपने आसानी से बता देना है। अब देखना ये है कि आपको याद है या याद बिल्कुल भी नहीं है, आप अपनी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। आज का कड़क सवाल ये है, आपने बताना है विमेन हेल्पलाइन क्या है, मैसेज करके बताना है। नंबर है 8 9 3 7 8 8 9 6 8 9 6 पर आपने मैसेज करना है कि आखिरकार विमेन हेल्पलाइन क्या है। अब देखना यह है कि आपको याद है या नहीं है। सोचिए, क्योंकि मैसेज करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैसेज नहीं करेंगे तो बारिश नहीं आएगी। मैं भगवान जी से बोल दूंगी कि बारिश मत करी, क्योंकि मेरे पास उनका फोन नंबर है। अगर आपको भी चाहिए तो आपको मैसेज जरूर करना पड़ेगा, मैं आपको फोन नंबर दे सकती हूँ, सूर्य भगवान का दूंगी वो भी। तो विमेन हेल्प नंबर बताना है आपने, नंबर है 9 8 3 7 8 9 6 8 9 6 पर। चलिए फिलहाल एक और पंजाबी गाना, जो कि आप सभी का, आई होप कि आप सभी को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद हो।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: जी गुड इवनिंग है और समय की बात करूं तो 6:36 हो चुके हैं, यानी कि 36 का आकड़ा शोरगाओ। आज रीना के साथ आप कनेक्ट है और सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। तो देखिए भैया, बहुत से जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके लिए एक थोड़ी सी राहत कह लीजिए या फिर बर्डन वाली बातें कह लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जो घर पे बताते हैं, घर वाले नहीं मानते हैं, तो फिर क्या करते हैं, चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, है ना। यही डिसीजन लेते हैं हम लास्ट में, क्योंकि कोर्ट मैरिज करने के बाद तो घर वाले भी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो हम ये डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर आप ये अब सोच रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि हिंदू रीति रिवाजों के साथ अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं, विवाह करते हैं, क्योंकि पहले होता था कि हाँ ठीक है भैया, रजिस्ट्रेशन हो गई है, मान लिया गया है कि ये पत्नी है, ये तुम्हारा पति है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी कराया जाएगा, तभी वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज शादी का कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हिंदू रीति रिवाज से जो शादी होती है वो कहा जाता है लॉन्ग टर्म तक चलती है। आजकल के क्या है कि भाई, एक तो इंसानों के अंदर पेशेंस खत्म हो चुका है, थोड़ा सा भाई किसी के बारे में हमने बोल दिया तो एकदम आग बबूला हो जाता है और फिर एक्शन सीधा लिया जाता है कि मैं तो तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहने वाली हूँ। तो इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि अब कोर्ट मैरिज करना भी इतना आसान नहीं है। और साथ ही साथ आज का कड़क सवाल, जो कि बहुत ही आसान है और हर किसी को पता होना चाहिए, बस आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि आपको वाकई में याद है या नहीं है। सो आज का कड़क सवाल ये है, आपने बताना है विमेन हेल्प नंबर कौन सा है। नंबर है 9837896896 पर हमें मैसेज करके आप बता सकते हैं। देखिए आज का सवाल ना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और ये तो चीजें याद होनी चाहिए हमें कि आगे हमारे साथ कोई दिक्कत होती है तो आप कॉल तो कर सकते हैं ना। तो आपने बताना है विमेन हेल्प 9 नंबर बताइए, क्योंकि मैसेज भी शामिल करना है और गाना तो है ही, जो हम गाना सुनाएंगे आप सभी को बहुत ही शानदार। बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी,

सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ, माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई चीटिंग वाला केस बेबी, शरीफ हूँ।

0: 15 जुलाई तक प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: हेलो, आर्जुरीना के साथ समय की बात करो तो 6:47 हो चुके श्रोताओं, और बरसात के मौसम में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अपनी बालकनी को साफ रखिए, छत को साफ रखिए, और कूलर की जो पानी है उसको आप चेंज करते रहिए, क्योंकि मच्छर गंदगी में नहीं बल्कि साफ पानी में पनपते हैं और सुबह एक्टिव होते हैं। तो बरसात के महीने में इन चीजों का ध्यान रखना अपने लिए बहुत जरूरी है। और रात को अगर आप सोते हैं, छत पर सोते हैं या फिर बरामदे में सोते हैं, तो आपने क्या करना है, रूम में भी सोते हैं तो मच्छरदानी जरूर लगाना है आपको। मच्छरों से हमें बच कर रहना है, क्योंकि इस टाइम मच्छर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और डेंगू मलेरिया होने की चांसेस होते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिनका आप देख रेख करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और दूसरी बात ये कि व्हाट्सएप, अब जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी है, जो सेटिंग है, वो चेंज होने वाली है। ये कहा जा रहा है कि जैसे आप इंस्टा अकाउंट बनाते हैं जहां पर आप किसी को बस आईडी, यूजर नेम बताते हैं, ये मेरा यूजर नेम है, दैट्स इट, फिर आपके पास वो रिक्वेस्ट आ जाती है, वैसे ही अब व्हाट्सएप के लिए कहा जा रहा है कि पहले होता था कि मैसेज, अगर हमें किसी को व्हाट्सएप पर भी मैसेज करवाने या हमें किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है तो नंबर शेयर करते हैं, लेकिन अब ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत ही जल्द यूजर नेम से आप अपना इंस्टा अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट बना सकते हैं और कोई भी पूछे तो आप अपना व्हाट्सएप यूजर नेम बता सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। सो आपका नंबर सेफ रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि स्कैम से बचने के लिए। और आज का कड़क सवाल, जो कि आप सभी के मैसेज की बारी है और बारी है, और साथ ही साथ जो आज का कड़क सवाल ये है कि विमेन हेल्पलाइन नंबर बताना है श्रोताओं, मैसेज करके बताइए, नंबर है 9837896896, क्योंकि अगली बारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। चलिए जी, सोचिए और मैसेज करिए कि विमेन हेल्पलाइन नंबर क्या होता है, कौन नंबर है वो जिस पे विमेन कॉल करके जो कहीं भी दिक्कत हो, परेशानी हो, उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। फिलहाल ये गाना सेकंड हैंड जवानी, ये गाना सुनते हैं और लौट कर

चलिए जी आ गए हैं, क्या बात है जी, हरियाणवी गाना सुन रहे हैं। यानी कि जब भी कोई सवाल पूछो तो क्या आता है हमारे दिमाग में, गूगल। चलिए गूगल से सर्च कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं कि आखिरकार इसका आंसर क्या होने वाला है। लेकिन अब बारी आ गई है आप सभी के जो प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं वो शामिल करने के लिए। आज का हमारा कड़क सवाल यही था कि विमेन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। चलिए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट होते हैं। रीना जी जय श्री राम, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, ये कनेक्ट होती हैं ललिता कश्यप जी, और इनका कहने की हेलो रीना मैम, गुड वाला इवनिंग है, कैसी हैं आप? बिंदास गाने सुना रही हैं। हेल्पलाइन नंबर बताती है 1-8-1-8-1। ओह माय गॉड, चाय पी लीजिए। क्या बात है जी, मैम नींद मस्त आई रात को, क्या बात है जी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, मौसम ठंडा है इसलिए। अगले मैसेज की बात करूं तो राजकुमार जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि विमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091। अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, बबली अंजान जी कनेक्ट होते हैं। गीता कश्यप है, रीना मैम क्या आप, अच्छा बता दिया था हमने जी, तो इनका आंसर आ गया है कि विमेन हेल्पलाइन नंबर है 1090। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, रणवीर सिंह, जिंदगी का दूसरा नाम ही FM मुरादाबाद है, जैसे जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है वैसे ही खुश रहने के लिए FM मुरादाबाद सुनने की जरूरत है। वाओ फैंटास्टिक, क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि देखिए रेडियो है, रेडियो एंटरटेनमेंट आप सभी को करता रहता है सुबह से लेकर शाम तक। और इनके कहने की आज का जो कड़क सवाल है उसका आंसर होता है यानी कि विमेन हेल्पलाइन नंबर है 1090। अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे पास मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, इरशाद हुसैन हंसारी जी और इनके दोस्त है सैयद सारिक अली। गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और गाने बहुत अच्छे प्ले करती हो आप, थैंक यू सो मच। अगले मैसेज की बात करूं तो दीपक जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि विमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091। और सैयद जी भी कहते हैं कि इरशाद हुसैन अंसारी जी भी कहते हैं कि विमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091। और ये पूनम जी कनेक्ट होती हैं मुरादाबाद से और इनके कहने की विमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091। क्या बात है जी। और अगले मैसेज की बात करूं तो संजू जी कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि विमेन हेल्पलाइन नंबर है 1090। इन्होंने तो जीरो बता दिया भैया। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें चलती रहती है, गलतियां हो जाती है, अक्सर इंसान इंसान से गलतियां होती है जी। अगला मैं ये कहती है संजू जी कि मैंने सही जवाब दिया है। अच्छा जी, आपने सही जवाब दिया है लेकिन एक मिस्टेक कर दिया आपने। अब आप मुझे भगवान जी का नंबर दे दीजिए क्योंकि मुझे भगवान जी से 1000 रुपए की जरूरत है, भगवान जी से पैसे लेना चाहती हूँ मैं। देखिए वो सीक्रेट नंबर है, वो आपको मैं ऐसे नहीं बताने वाली हूँ, वो आपको तब पता चलेगा जब आप स्टूडियो आएंगी हमारे। तभी बता पाऊंगी ना, वो सीक्रेट नंबर है, वो सीक्रेट नंबर ऐसे रिवील नहीं होना चाहिए जी। तो चलिए इस शो में मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास राइट आंसर आया है

0: सो हमारे पास राइट आंसर आया है। सबसे पहले राजकुमार जी आप विनर बनते हैं, यानी कि इवनिंग मस्ती शो के इन्होंने सबसे पहले राइट आंसर पहुंचाया है कि विमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। आपने आपकी जो भी पसंद की चीज़ें आप वो खा सकते हैं, पेमेंट वाले ही आपको करना पड़े। और अभी के लिए मैं लेती हूँ आपसे जाने की इजाज़त। हम मिलेंगे क्या जी, कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, ढेर सारी बातें करेंगे। श्रोताओं बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपने किथे नहीं जाना है, आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहना है कि जहाँ पर होती है ढेर सारी बातें, तो जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जी। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान, ताकि हर बच्चा शिक्षा से हो अभिसंचित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा, तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
2: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था।
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेंटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वादों की नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नांगटाई। नांगटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे को और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें हर चीज़ सहायता देती है, चीज़ करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंसी की ओर जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज़ है, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती हैं उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नान कटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैसे स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो उठती थी वहाँ पर जाके बोली एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नान टाइप से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
0: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
1: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
0: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं मेरठ की विरासत है।
0: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
1: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट।

0: गारंटी मिशन बीवी द्विराम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: प्रोजेक्ट है, बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। BOT टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहाँ के विकास को और गति देगा।
2: दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं, जिससे भावी पीढ़ी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घटकर के आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए SIT ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने SIT को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को SIT के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीवी जीराम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
4: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सृजनशील योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनमोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, डीबीटी, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
5: टीईटी परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश भर में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन VVGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
6: No. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।
9: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 6 लेन के सुरंग निर्माण को मंजूरी दी। दिल्ली में आज से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लागू। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से राहत के लिए प्रतिवर्ष लागू होने वाले दिशा निर्देश अधिसूचित किए और दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों की आज नीलामी की गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण इसको मंजूरी दे दी गई है।
2: 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। दिल्ली में आज से नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी पॉलिसी 2026 लागू हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्च 2030 तक परिवहन व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव, चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार और विभिन्न वाहन श्रेणियों के चरणबद्ध विद्युतीकरण का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने वालों को 30,000 रूपये, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदने वालों को 50,000 रूपये और N1 कैटेगरी के हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए 1,00,000 रूपये की सब्सिडी मिलेगी।
3: N1 उस पे 1,00,000 रूपये की सब्सिडी सरकार ने देना मंजूर किया है और जितनी भी हमारी 30,00,000 रूपये से नीचे की गाड़ियां हैं उस पे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स पूरी तरीके से माफ है और किसी को अपना पुराना व्हीकल चेंज करना है नई व्हीकल में तो स्क्रैपिंग पे भी इंसेंटिव दे रही है सरकार। 2 व्हीलर पे भी, 3 व्हीलर पे भी, 4 व्हीलर पे भी, सब पे इंसेंटिव मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2028 की 1 अप्रैल से दिल्ली में नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2027 की 1 जनवरी से L5 श्रेणी के नए ऑटो रिक्शा का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज राष्ट्र निर्माण की सेवा में निरंतर समर्पित सभी डाक कर्मियों को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी डाक कर्मियों के परिश्रम से देश में संचार सुविधा निरंतर मजबूत हो रही है। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने आज लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया। दिल्ली विधानसभा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, बार बार होने वाले चुनावों से होने वाली रुकावटें कम होंगी और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है और निर्वाचन आयोग, विधि आयोग तथा अन्य विशेषज्ञ निकायों ने समय समय पर इसकी सिफारिश की है। एक देश एक चुनाव पर श्री चौधरी ने कहा कि इससे आदर्श आचार संहिता के बार बार लागू होने की स्थिति भी कम होगी।
4: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हुआ।
1: सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के लोकतंत्र को अधिक सशक्त सुव्यवस्थित प्रभावी और स्थिर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे समय धन और संसाधनों की बचत होगी तथा शासन व्यवस्था में निरंतरता और दक्षता को नई मजबूती मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से राहत के लिए प्रतिवर्ष 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहने वाले व्यापक और स्थायी दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विभिन्न आदेशों को एकीकृत कर एक स्पष्ट सरल और सख्त व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी विभाग संस्थान और नागरिक निर्धारित नियमों के अनुसार समयबद्ध कार्रवाई कर सकें। एक रिपोर्ट।
5: नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरे वर्ष केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल डीजल सीएनजी और एलपीजी पंपों का ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 के नीचे के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं उन्होंने बताया कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा और सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू रहेगी। बड़े वाणिज्यिक भवनों और निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन और मिस्ट सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। मतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हरित और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। श्री सूद ने आज जन सुनवाई के दौरान नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। उन्होंने जन सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में हिस्सा लेते हुए अपना गणना प्रपत्र जमा किया। उन्होंने लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया। दिल्ली में SIR 30 जून से शुरू हुआ है। श्री बिधूड़ी ने दिल्ली के सभी मतदाताओं से अनुरोध किया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी SIR अभियान में हिस्सा लें और अधिकारियों को सहयोग करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ मानहानि वाले सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पोस्ट हटाने के लिए कोई व्यापक अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने उन 5 पोस्ट को हटाने का आदेश दिया जिन पर श्री चड्ढा ने आपत्ति व्यक्त की थी। न्यायालय ने कहा कि ये मुकदमा व्यक्तित्व अधिकारियों से संबंधित नहीं है। श्री चड्ढा ने इससे पहले कथित दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत सोशल मीडिया पोस्टों के प्रकाशन के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. निखिल टंडन ने आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर इस वर्ष के विषय हीलर को हील पर बताया कि चिकित्सा सिर्फ एक पेशा या कमाई का माध्यम नहीं है। डॉ. टंडन ने कहा कि इसमें मेहनत लगन और डटे रहने की आवश्यकता है और इसके लिए व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि डॉक्टर भी उन्हीं की तरह इंसान हैं और उनसे फैसले लेने में गलतियां हो सकती हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री चौहान ने बताया कि यह अधिनियम लाखों श्रमिक ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
6: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके बदल दिए हैं। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में आज प्रसारण भवन ने फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया। इस फोटो गैलरी का उद्घाटन पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने किया। इस गैलरी में विदुषी एमएस सुब्बुलक्ष्मी, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर और डॉ भूपेन हजारिका सहित भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के चित्र शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान संगीत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पंडित रूपक कुलकर्णी द्वारा बांसुरी वादन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने में आकाशवाणी ने मुख्य भूमिका निभाई है। श्री द्विवेदी ने बताया कि आकाशवाणी अपने समर्पित चैनलों के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्मी संगीत, रवींद्र संगीत और संगीत की अन्य विधाओं के लिए मंच प्रदान कर रही है जिससे भारत की सांस्कृतिक पहचान और एकता मजबूत हो रही है।
7: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: दिल्ली पुलिस ने आज किंग्सवे कैंप में न्यू पुलिस लाइंस के परेड ग्राउंड में औपचारिक परेड के साथ कमिश्नरेट डे मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस को बधाई दी। दिल्ली पुलिस ने आज चाइल्ड सेफ्टी मंथ पहल के तहत 2 दिवसीय ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम का भी आयोजन किया। ये पहल दिल्ली के शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा और बचाव को मजबूत करने के लिए लागू की जा रही है। ये कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट के तीसरे संस्करण के लिए आज खिलाड़ियों की नीलामी की गई। नीलामी में 8 पुरुष और 4 महिला फ्रेंचाइजी अपनी टीमें तैयार करेंगी। इस नीलामी में 400 से ज्यादा पुरुष और 200 से अधिक महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ऋषभ पंत, मयंक यादव, सुयश शर्मा, हिम्मत सिंह और कुलदीप यादव इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और बात मौसम की, दिल्ली में आज बादल छाए रहे जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल के दौरान बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 6 लेन के सुरंग निर्माण को मंजूरी दी। दिल्ली में आज से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लागू। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से राहत के लिए प्रतिवर्ष लागू होने वाले दिशा निर्देश अधिसूचित किए और दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों की आज नीलामी की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
5: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
4: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG।
5: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
4: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
5: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज बिना लाइन,
4: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
5: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
4: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
5: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
4: EKCC साख से समृद्धि।
5: नियम और शर्तें लागू।

0: मेरे को एक ऐसा थॉट आ रहा था कि कोई बड़ा सा बंदा आएगा, बहुत बड़ा सा होगा, भारी भरकम टाइप का, एकदम से कुछ बड़ी बड़ी किताबें शिताबें लाएगा। लेकिन जब मैं इनसे मिला तो ये तो बिल्कुल मेरी सेम एज का, मतलब मेरी ग्रुप का बंदा, मेरी एज का बंदा, बिल्कुल मेरी तरह है, एकदम फिट एंड फाइन, एकदम बढ़िया सा। सो हे हाउ यू, कैसे हाल चाल है ब्रो? अब जरा इनसे आपको तारीफ कराते हैं। और आज ये क्या लेकर आए हैं ये मैं नहीं यही बताएंगे, आज आपको ये क्या स्पेशल सुनवाने वाले हैं। एंड आई एम श्योर ये कॉन्वर्सेशन में ना आपको बहुत मजा आने वाला है एंड आप बहुत सारा इंजॉय करने वाले हो। सो सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारे आज के एक अमेजिंग गेस्ट का, जिनका नाम है हर्ष। हर्ष जी आपका स्वागत है, कैसे हैं आप जैन साहब?
1: बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया हूँ। एंड आई ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ग्रेट कन्वर्सेशन, राइट? मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि जो सामने वाला सुन रहा है उसको भी फन आए एंड दे आर गोना एंजॉय इट।
0: एब्सोल्युटली
1: हियर विद अ लॉट ऑफ वन लाइनर्स एंड अ वेरी गुड स्टोरी टू टेल यू अबाउट द स्टार्टअप्स एंड यस।
0: क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, इतनी बढ़िया बातें आप कर रहे हो तो ये कहीं सोच साच के आए हो या बस अपना शुरू से चलता आ रहा है ऐसा कुछ?
1: नहीं, इट इज वेरी मच स्पॉन्टेनियस। लाइक मैं जब आया था तो मैं बस यही सोच के आया था कि ठीक है जाएंगे, जो कॉन्वर्जेशन होगी उसमें जो मेरा पीओवी होगा हम वो रखेंगे एंड वील बिल्ड द कॉन्वर्जेशन देन एंड देयर ओनली।
0: वही ना सर, मतलब ये बंदा मुझे लगता है कि फुल ऑन तैयारी से आया कि भैया लिख के कुछ नहीं जाएंगे, जो रैंडम होगा उसको रैंडम ही उसका आंसर्स करेंगे, राइट? क्रिएटिविटी के साथ।
1: यस,
0: दैट्स वेरी ग्रेट। थोड़ा सा अपने बारे में हर्ष बताओ, मुरादाबाद में आप कहां से हो, क्या करते हो?
1: मैं मधुबनी कॉलोनी में रहता हूं एंड वी हैव अ फैमिली बिजनेस। वी हैव टू शॉप्स नेम्ड जेनसन्स एंड वल्लभ गारमेंट्स। एंड मैं 2024 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आई वर्क्ड इन अ स्टार्टअप फॉर 6 मंथ्स वेयर इन आई पेड ₹20,000 टू देम टू वर्क एंड got nothing out of then in stumper my case or allegations aa gaye the, that is a very good story I'll tell you in the conversation. And after that I worked in my brother's company and now I'm working with in my family business and side by side I'm doing this comedy part and content creation.
0: ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। अच्छा ये स्टोरी तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा भाई, क्योंकि मुझे लगता है कुछ कुछ स्टोरीज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ना एक मोटिवेशन का काम करते हैं, कई बार वो हमें बहुत सारी चीजों से बचा भी लेते हैं।
1: यू
0: गेटिंग माई पॉइंट? सो उस पर डेफिनेटली बात करेंगे अभी हर्ष से। लेकिन हर्ष अभी तुम यहाँ पे आए हो तो ऑफकोर्स ये जो कॉन्वर्सेशन है बेसिकली इट्स नॉट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। यहाँ पे हम कुछ जोक्स करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो सकता है, जो आपको अच्छा है आपके अंदर है, आपके टैलेंट की कुछ अलग पहचान हो, बिकॉज यहाँ पे वही लोग आते हैं क्योंकि तुर्रम खा होते हैं और आई एम श्योर आप भी वो हो इसलिए आप यहाँ पे आए हो। तो वैसे आप अपने अगर पर्सनल की मैं बात करूँ तो तुम कौन सा तुम्हारा जोनर है, क्या तुम करते हो बेसिकली, मतलब शेरो शायरी पोएट्री या जो कॉमेडी, क्या क्या मतलब आप करते हो?
1: मैं कॉमेडी करता हूँ, वन लाइनर्स मेरा एक वो है कि हाँ कोर है, ठीक है। एंड इंस्टेंट में आई राइट सेट्स, मैंने कई बार परफॉर्म भी करा है ओपन माइक्स में, मैंने शोज भी करे हैं अपने पर्सनल, ठीक है। दोज वर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बट यस दे वर गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो इन टू शेरो शायरी, आई राइट अ फ्यू शेरो शायरीज एंड दैट्स इट।
0: अच्छा कहीं ओपन माइक वगैरह करते हो कुछ ऐसा?
1: या आई हैव डन मल्टीपल ओपन माइक्स।
0: दैट्स ग्रेट। अच्छा तो हर्ष के साथ ना कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक, एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे फिर हर्ष के साथ जो एक कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और ये क्या आज आपको सुनाने वाला है, कैसे आपको हंसाने वाला है, वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आज हर्ष का होने वाला है, नॉट मी। हाँ मैं सपोर्ट में रहूंगा बट सारी कॉन्वर्सेशन को हर्ष हैंडल करेंगे। सो अभी मिलते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। आप आनंद के साथ हैं ऑफ कोर्स एंड आई हैव विद मी हर्ष जैन। हाय हर्ष, वेलकम बैक यू वंस अगेन ब्रो। आपको बोरिंगनेस फील तो नहीं हो रही ना? एकदम बोरिंग शोरिंग तो नहीं लग रहा ना आपको यहाँ पे?
1: बिल्कुल भी नहीं,
0: होना भी नहीं चाहिए यार, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है यार। यहाँ पे हमें फन करना है, एंजॉय करना है, ढेर सारे गाने हैं, म्यूजिक है, मस्ती है, तो मुझे लगता नहीं है कि यार आपको एंजॉय करने में मजा नहीं आ रहा होगा। टेल मी,
1: इट्स गोइंग गुड एंड होपिंग फॉर ग्रेट अहेड।
0: या श्योर। अच्छा तो हर्ष, अभी कुछ सुना दो यार। मैं चाह रहा हूँ यार, आजकल ना धोखे शोके बड़े मिल रहे हैं, चाहे वो प्यार श्यार में हो या इंस्टाग्राम पे एवे किसी फ्रेंड के साथ हो, तो आजकल ये धोखाधड़ी वाला सीन बहुत ज्यादा हो रहा है यार। तो इस पे कुछ है तुम्हारे पास, कोई बढ़िया सी पोएट्री या कोई शायरी?
1: बिल्कुल है। सो आई विल टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी, राइट? मैं जब कॉलेज गया था ना, सो आई एम सिंगल फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। मैं स्कूल में भी सिंगल था, मैं आज तक की डेट में सिंगल हूँ, बट
0: मैं तो अखंड सिंगल हूँ भाई।
1: Same goes with me. एंड मीन वाइल ना, मुझे एकदम जैसे हमारे ग्रुप में सब लोग रिलेशनशिप्स में आ गए थे, तो मुझे भी लगातार रिलेशनशिप में आना चाहिए, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स। एंड यू विल बी लाफिंग लिसनिंग टू दिस, मेरे को 6 अटेम्प्ट्स लगे गर्लफ्रेंड बनाने में।
0: Oh my God,
1: राइट? एंड मैं तब ये सोच रहा था 5 में सीए हो जाती है कंप्लीट, और मैं 6 में गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ, इससे अच्छा मैं बीबीए क्यों कर रहा हूँ, फिर मैं सीए कर लेता यार, दैट वुड हैव बीन अ लॉट इजी।
0: ट्रू ट्रू।
1: एंड उसने भी ना धोखा दे दिया, वो पता नहीं किसी और के साथ चीटिंग वगैरह कर रही थी एंड स्टफ। तो हम लोग का लगभग 7-8 दिन के बाद वो रिवील हो गया, ठीक है? तो फिर जब भी कोई प्यार मोहब्बत तैयारी करता है ना, तो मैं उसको 2 लाइन अपनी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़का धोखा दे जाता है। आई एम नॉट, इट्स वेरी जेंडर न्यूट्रल, बट मैं इसमें कहना चाहूंगा, मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि माना वो हर किसी से कम बोलती थी, माना वो हर किसी से कम बोलती थी, हाथ छूटा तब पता चला वो 2 और को हम बोलती थी।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: उसने इतना ऐसा धोखा दिया ना कि दीस लाइंस हैव स्टेड विद मी फ्रॉम देन एंड ऑनवर्ड्स।
0: ऑलराइट, बट प्लीज यू कैन रिपीट दिस लाइन, मैं दोबारा से इसको सुनना चाहता हूँ।
1: तो लाइन ऐसी थी, माना वो हर किसी से कम बोलती थी,
0: माना वो हर किसी से
1: कम बोलती थी, हाथ छूटा तब पता चला वो 2 2 और को हम बोलती,
0: 2 और को भी हम बोलती थी। वाह वाह वाह वाह। इस स्टोरी का, इस लाइन का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो?
1: सी, बहुत लोग कहते हैं ना कि यार जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तो वो दूसरे लोगों से कम बात करता है, वो आपसे ज्यादा अटैच्ड होता है। मैंने भी मान लिया, मेरी वाली भी दूसरों से कम बोलती थी इन फ्रंट ऑफ मी, और जैसे ही मैंने उसका हाथ छूटा ना, सो व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप यू डोंट कॉल आई, यू कॉल हम, राइट? हम अपनी बात नहीं करते ना, मेरी, हम कहते हैं हमारी, राइट? तो वो भी जब हाथ छूटा तब पता चलता था वो खाली मुझे नहीं, वो 2 और लोगों को हम बोलती थी।
0: ऑलराइट,
1: सो दैट इज हाउ इट वेंट।
0: ऑलराइट, मतलब अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पिक्चर की बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है। एंड आई डोंट थिंक, यार मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें ना बहुत सारे लोगों के साथ होती है, नॉट यू नॉट मी, एंड बहुत सारे ऐसे लोग जब स्कूल्स में जाते हैं, जहाँ कॉलेजेस में जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार अब हमारी लाइफ में सब कुछ मिल गया है हमें।
1: yeah.
0: जब उस पहले इंसान को देखते हैं और हमारे अंदर दिल के अंदर तोते तोते वाले तार बजते हैं, तो हमें लगता है बस यही सब कुछ हमारा, एवरीथिंग इज मी फॉर मी, मेरे लिए वो है ना, बट बाद में पता चलता है कि नहीं भाई,
1: वो किसी और के लिए भी है।
0: हम गलत फहमी में है,
1: डेफिनेटली। ये तो बहुत होता है, एंड आई हैव सीन दैट सो मेनी टाइम्स। मेरे जब मेरा फिर ब्रेकअप हुआ तो फिर सब मेरे पूरा,
0: मतलब इस लड़के का ब्रेकअप भी हो गया भाई, आप सोच रहे हो ये कैसे?
1: दैट वाज इवन लेस देन अ सब्सक्रिप्शन पैकेज। मेरा सब्सक्रिप्शन आप कोई ले जाओ, ट्रायल भी आजकल 10 दिन का होता है, मेरा रिलेशनशिप 7 दिन का था।
0: आई कांट बिलीव दिस कि भैया आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं, सोचिए हम अभी भी अखंड सिंगल है।
1: मेरा ट्रायल पे खत्म होने से पहले ब्रेकअप हो गया।
0: ओ भाई साहब, मतलब तुम्हारा थोड़ा तगड़ा वाला था आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। सी, अच्छा यू नो हर्ष, ऐसे बहुत सारी कॉन्वर्सेशन में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं, हम लोग उनसे बात भी करते हैं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कुछ ऐसा होता है कि किसी की लाइफ में पहला प्यार होता है, तो आपको कैसे पता लगा कि आपका ये यू नो फर्स्ट टाइम वाला है? यू नो
1: फर्स्ट टाइम वाला भी द सिचुएशन वाज समथिंग लाइक कि उसने मुझे सामने से प्रपोज किया था, देन
0: कितने साल के थे जब तुम्हें ये प्रपोजल वाले यू नो पिक्चर्स और ये आने लगे?
1: मेरे को आज तक नहीं आया, मुझे
0: वेकेशन आया तुम्हें कोई ऐसा?
1: नहीं, मुझे आज तक बस एक ही लड़की ने अप्रोच करा है, मैंने उसको हाँ बोल दिया था, एंड वो 7 दिन बाद उसने धोखा दे दिया। मेरे को लगता है शायद इसीलिए धोखा दे दिया।
0: अच्छा, तुम इस बात को मानते हो यू नो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है?
1: डेफिनेटली यस।
0: अगर सपोज दैट वो 7 दिन के बाद ना देखे, 7 सालों बाद देखी थी, तो सब ज्यादा दुख होता है,
1: तो ज्यादा दुख होता
0: है ना। 7 दिन में दे दिया तो एटलीस्ट
1: रियलिटी पता लगी।
0: एंड आई थिंक अगर हम अभी भी सिंगल है तो अपनी लाइफ में हम बहुत हैप्पी है,
1: डेफिनेटली
0: यू नो सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से कि ठीक है यार सिंगल है, बट आई थिंक हैप्पी है।
1: मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए।
0: एब्सोल्युटली, और जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, इसी चक्कर में फिर आप जो है ना बेवकूफ बनते रहते
1: हैं
0: कई बार. सो गाइज, आपको वो चीज नहीं करनी है. एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो भैया पहले रिसर्च करो, उसके बाद ही जो है किसी की तरफ आप हाथ बढ़ाओ. वेल, आगे बढ़ते हैं, हम एक गाने की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे. आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6.

0: रिसेंटली एक रिसर्च हुआ था और उसमें ना एक फैक्ट चेक किया था, तो रियलिटी चेक में पता लगा कि जिनकी बड़ी हाइट होती है ना, उनकी रात को सोने से पहले हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है। एंड जब मैंने ये रिसर्च किया तो मुझे लगा नहीं यार, ये तो मुझे खुद पे अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद ही मैं इस पे यू नो ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो आज रात को मैं अपनी हाइट सोने से पहले जरूर नापूंगा, बट उसके लिए फिर मुझे सुबह में भी नापनी पड़ेगी ना यार, तो वो कल वो प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा। बट उससे पहले मैं, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन भी है और एक रिसर्च भी है, तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि अभी हाइट के ऊपर कुछ सुनने वाला हूँ मैं हर्ष से, तो मुझे लगा पहले आपको ही काम की बात बताता हूँ। हर्ष, आपको पता है ऐसा कुछ फैक्ट और रिसर्च?
1: यार हाइट से तो मैंने बात करना छोड़ दिया, बिकॉज हाइट इज द ट्रॉमा फॉर मी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा रिसेंट ब्रेकअप हुआ, मतलब रिसेंट क्या, मेरा एक लौता रिलेशनशिप ब्रेकअप ट्रायल बैकअप
0: सब कुछ एक ही था,
1: वो सब कुछ एक ही था। और वो भी जो हुआ ना, उसका कोर रीजन जो था, कोर रीजन भी ये था कि इसने, उसने स्टार्टिंग में ऐसा बोला कि इंटेलेक्ट बहुत कम है तुम्हारा, तुम ना बातें अच्छी नहीं करते, तुम ना ठीक से नहीं रहते एंड ऑल। तो मैंने कहा यार ये सब तो पहले भी था, सो यू स्टार्टेड लाइकिंग मी फर्स्ट, है ना, तो ये सब तो पहले से था। सो देन शी सेड यार अब क्या रीजन लाऊं, तुम्हारी ना हाइट मुझसे कम है।
0: ओह माय गॉड,
1: एंड दैट हिट मी सो हार्ड, सो फकिंग हार्ड, कि मैं सोच रहा हूँ यार ये तो गलत हो गया। एंड ऑनवर्ड्स मैंने फिर हाइट पे बात करना ही छोड़ दिया। मैं कहता हूँ ठीक है, आपकी हाइट मेरी हाइट, मेरी हाइट।
0: एब्सोल्युटली, और वो मुझे लगता है कि इस पे तो जजमेंट होना भी नहीं चाहिए यार।
1: डेफिनेटली
0: आई थिंक ये तो हमारे और आपके हाथ में है ही नहीं यार।
1: हाँ,
0: है ना, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो ऊपर वाला डिसाइड करके भेजता है
1: बस, तो वो मेरे कंट्रोल में
0: नहीं। आप अपनी हाइट बढ़ाने के लिए जरूरी थोड़ी ऊंची ऊंची हील्स पहन के जाओगे, तो हम थोड़ी बोल रहे हैं आपको यार,
1: वो बिना हील्स के मुझसे बहुत ऊंची थी।
0: अरे यार, तो फिर उसमें फिर आपको प्रॉब्लम, यू नो, आपने सोचने का और अपने फैसले में थोड़ी जल्दबाजी कर ली आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है। गाइस, आप क्या कहते हो, आप जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन। वेल टेल अस, इसके ऊपर तुम कुछ सुनाने वाले, सो आई थिंक मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, आई एम श्योर।
1: मैं आपको एक वन लाइनर, एक दो वन लाइनर से शुरू करते हैं।
0: डेफिनेटली श्योर।
1: नेम एन एक्ट्रेस, आनंद भाई आप मेरे को एक एक्ट्रेस का नाम बताओ जिनको कोई रास्ता नहीं मालूम होता।
0: यार सच बताऊं तो मुझे खुद को ही रास्ते नहीं मालूम होते, क्योंकि मैं मुरादाबाद में खुद नया हूँ, तो तुम एक्ट्रेस की बात पूछ रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है यार।
1: कोई एक्ट्रेस, एक रैंडम गेस के, उन्हें आपको भी पूछ लो कि ये रास्ता कौन सा, उन्हें कोई नहीं पता होगा।
0: ओके, सी आई थिंक अनन्या पांडे, उसको सब्जियों के नाम नहीं पता, तो उसको रस्तों के नाम कहां से पता होगा।
1: अनन्या पांडे को पता हो सकता है, बट देयर इज दिस वन एक्ट्रेस नेम्ड दिशा पतानी।
0: दिशा पतानी, ओ
1: सो शी मस्ट नॉट बी नोइंग ऑल द रूट्स।
0: दिशा पतानी, ओ भाई कहां दिमाग लगा रहे, क्या बात है यार, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। अच्छा, और ऐसा तुम्हें दिमाग में क्यों आया, यू नो, ये वाला?
1: सो देर वॉज दिस वन पिक्चर दे वर प्रमोटिंग, आई डोंट रिमेम्बर द नेम।
0: वेलकम टू द जंगल।
1: हाँ, वेलकम टू द जंगल।
0: रिसेंटली
1: मैंने उनको देखा, एंड जैसे ही मैंने उनको देखा ना, बिकॉज दे केम टू टॉयर, तो मैंने वहां जैसे ही उनको देखा ना, रियलाइज यार ये तो बहुत अच्छा जोक निकल के आ सकता है यहाँ से। सो दैट इज हाउ।
0: आप गए थे वहाँ पे?
1: नहीं।
0: अच्छा, आपने सोशल मीडिया पे देखा?
1: ऑन सोशल मीडिया।
0: ऑलराइट डन। सो यार लेकिन ये बड़ा अल्टीमेट था, मतलब इतना फॉन्टेन यूज कैसे हो सकता है बंदा, किसी एक्ट्रेस के नाम से तो मैंने और आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा, उसने तुरंत उसका दिशा पाटनी का दिशा क्या है?
1: पता नहीं
0: बताओ यार। अच्छा, और भी ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके ऊपर आप ऐसे करते हो या फिर कभी किया ट्राई?
1: लेट्स मूव ऑन फ्रॉम सेलिब्रिटीज टू फ्रूट्स, ओके?
0: हाँ, टेल अस,
1: कौन सा फ्रूट कहता है कि जी मैं सबसे खड़ूस हूँ, मैं एकदम बिल्कुल
0: यार, सच में मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इस मामले में बहुत खराब है। मैं बहुत ही, मेरी मतलब बहुत ही गंदी वाली आदत है कि मैं इन चीजों में थोड़ा कम रिसर्च रखता हूँ, बट अब आप ही मुझे सजेशन दो यार।
1: ओके, एनी रैंडम गेस
0: जो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा
1: खड़ूस हूँ, अड़ियल हूँ, और मैं मतलब गुस्सेल रहता हूँ थोड़ा सा, ऐसा
0: ऐसा कौन सा फ्रूट हो सकता है गाइस? सीरियसली आई हैव नो आइडिया, मैं किसको बोलूँ, सारे फ्रूट्स तो इतने सॉफ्ट और इतने प्यारे से होते हैं।
1: Shall I tell you the name? Yes.
0: तू बताए।
1: It's guava.
0: Guava.
1: I'll tell you ना, ask me why is so guava.
0: यार मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या क्या चूज करूँ, किसको क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, तू बोल दे यार अपना जो।
1: बिकॉज गुआवा सेज अमरूद,
0: ठीक है? ओह, गुआवा इज,
1: गुआवा इन हिंदी इज अमरूद।
0: अमरूद, अमरूद,
1: अमरूद।
0: अमरूद मतलब इसने अमरूद को कर दिया आई एम रूट। ये मुझे लग रहा है कि जापान से तो नहीं आया गाइस, ये मतलब सारे फ्रूट्स को उल्टे से सीधे और सीधे से उल्टे लेके जा रहा है भाई, ये करने के कितने पैसे मिलते हैं आपको
1: अभी? तो मैं या फिर देता हूं
0: या फिर क्रिएटिविटी कर रहे हो अभी?
1: जस्ट राइटिंग, तुम
0: कहीं पे कुछ ज्वाइन वाइन किए हो क्या, ऐसे कॉमेडी डार्क कॉमेडी क्लास आप कर रहे हो?
1: जस्ट माई फेवरेट कॉमेडियंस मधुर वेल्ली, कविराज एंड रवि गुप्ता।
0: अच्छा, तो आप इनको देखते हो? अच्छा, मतलब यू नो
1: टू मच, आई जस्ट लव देम।
0: वेरी नाइस। तो गाइस ये जो कॉन्वर्सेशन है इसको हम इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे, ऐसे ही हर्ष के साथ ढेर सारी बातचीत हो रही है और होती रहेगी। फिलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हर्ष से भी हम इजाजत लेंगे, एंड आई एम श्योर आपको भी मजा आ रहा होगा। अगर आपके पास भी ऐसे अल्टीमेट टैलेंट है तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एफ मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलता है ऑफिशियल आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रियो वाला आनंद के नाम से आपको मिल जाता हूँ, अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है तो डेफिनेटली आप मुझे डीएम कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे आप डीएम कर सकते हैं अपना नाम और अपना टैलेंट. हो सकता है अगला नंबर आपका हो यार. फिलहाल एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद वी कम बैक.

0: आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: माना वो हर किसी से कम बोलती थी,

0: हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन। यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद और आज की शाम हम हर्ष के साथ ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। आई हैव विद मी हर्ष। हर्ष, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है तुम तो इंग्लिश मीडियम वाले हो भाई। तो ये हिंदी मीडियम वालों की, इंग्लिश मीडियम वालों की आज वैसे अच्छी खासी जम रही है। वेल, मैं सच बताऊं तो मेरी बहुत कम बनती है यार, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं इंग्लिश में ही पाता हूं यार। इंग्लिश से मेरे को बड़ा डर लगता है, मैं बहुत भागता हूं। अच्छा, क्या डिफरेंस है इंग्लिश मीडियम वालों में ऐसा?
1: यार आई बिलीव ना कोई डिफरेंस है नहीं।
0: वेल, हम लोगों ने क्या इसको बना दिया है?
1: ये हम लोगों ने बना दिया है, और वरना इसमें कोई मतलब डिफरेंस है नहीं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आई विल टेल यू। मेरी, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, आई वोंट बी टेलिंग द नेम, ठीक है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, हमारे स्कूल की जो इंग्लिश की टीचर्स थी वो भी हिंदी के लिए एक दवा देती थी।
0: ओ भाई साहब,
1: तो सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी मेरी क्यों बन पा रही है।
0: आई हैव नो आइडिया, बट जो भी बन रही है अच्छी बन रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम सुपर हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय द वे यार, तुम्हारे पास कुछ है जाते जाते जो तुम थोड़ी सी नो?
1: सो जाते जाते, बिकॉज ओके, सो देयर इज दिस वन सैड स्टोरी। वेल, आई डिड वांटेड टू एंड इट ऑन अ सैड नोट, बट आई रिसेंटली लॉस्ट अ वेरी लव्ड वन ऑफ माइन, माय ताऊजी, एंड ही वॉज अ वेरी प्योर सोल। एंड वो मुझसे हमेशा ये कहते थे कि यार तू हंसी मजाक ज्यादा करता है, थोड़ा काम पे भी ध्यान दिया कर। एंड नाउ आई वांटेड टू टेल हिम कि मैं ये हंसी मजाक को अपना काम बनाने की तरफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ व्हेन वी हैव लॉस्ट हिम, सो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड इफ एनीबॉडी देयर हैज लॉस्ट देयर लव्ड वन, ठीक है, तो उनके दिमाग में भी क्वेश्चंस आते होंगे, बहुत सारी चीजें आती हैं वो तीन चार दिन जो होते हैं ना फ्यूनरल के बाद के सबके। तो मैंने उसके लिए बस एक छह लाइनें लिखी थी जो मैं पूछना चाहता हूँ भगवान से। ठीक है, तो ये लाइनें कुछ ऐसी है, मैं सुना
0: श्योर डेफिनेटली।
1: तो लाइनें कुछ ऐसी है कि हे भगवान, सुना है आप अच्छे दिल वालों को दी बुला लेते हो। हे भगवान, सुना है आप अच्छे और साफ दिल वालों को
0: जल्दी बुला लेते हो।
1: फिर पूछते क्यों हो कि मेरी बनाई इस सृष्टि में इतने पाप क्यों है।
0: बिल्कुल ठीक
1: है भगवान, सुना है आप साफ दिल वालों को जल्दी बुला लेते हो, फिर पूछते क्यों हो कि मेरी बनाई इस सृष्टि में इतने पाप क्यों है। आपने दिल तो इतना साफ बना दिया, फिर बताओ उनके जीवन में इतने साफ क्यों है। आपने दिल तो इतना साफ बना दिया, फिर बताओ उनके जीवन में इतने साफ क्यों है।
2: साफ किया है परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
3: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में, कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर हमीरपुर महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
2: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
4: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
5: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
6: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
2: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
2: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
8: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
2: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मैं सुना
0: sure, definitely.
1: तो लाइनें कुछ ऐसी हैं कि हे भगवान, सुना है आप अच्छे दिल वालों को दी बुला लेते हो। हे भगवान, सुना है आप अच्छे और साफ दिल वालों को
0: जल्दी बुला लेते हो।
1: फिर पूछते क्यों हो कि मेरी बनाई इस सृष्टि में इतने पाप क्यों है।
0: बिल्कुल ठीक
1: है। हे भगवान, सुना है आप साफ दिल वालों को जल्दी बुला लेते हो, फिर पूछते क्यों हो कि मेरी बनाई इस सृष्टि में इतने पाप क्यों है। आपने दिल तो इतना साफ बना दिया, फिर बताओ उनके जीवन में इतने सांप क्यों हैं। आपने दिल तो इतना साफ बना दिया, फिर बताओ उनके जीवन में इतने सांप क्यों हैं। चलो मान लिया आपकी बात। जब आप कहते हो कि भाई पुण्य है तो पाप भी होगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा। मैंने मान लिया आपकी बात। जब आप कहते हो कि पुण्य है तो पाप भी होगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा। मैंने बीच सपने उसको गुजरते देखा है। और आप कहते हो पार्थ तू सपना देख पूरा भी होगा।
0: वाह, सपना देख
1: पूरा भी होगा। पार्थ जो अपने बच्चों को कहते हैं।
0: समझ गया मैं। बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत ही अच्छी थी ये लाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओरिजिनल वाली क्लास। और मैं बताऊं हर्ष, ये बहुत ही सच्ची और एकदम दिल से निकली हुई बात है। एंड मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी ना कुछ चीजें जो हमारी कलम से निकलती है वो एक्चुअल में हमें रूबरू कराती है असलियत से।
1: डेफिनेटली
0: है ना। तो वो चीज हर कोई नहीं कर सकता, वो वही कर सकता है जो अपने ओरिजिनल कॉन्टेंट को लिखना जानता हो। तो अभी तुम्हारी हॉबीज क्या है, क्या चल रहा है इसके अलावा? और अभी
1: इसके अलावा I am into family business. I am doing open
0: बस आगे mics. अब आपको यही इसी पे फोकस करना है, family business.
1: Family business alongside I'll be taking this my profession as a content creator or a comedian.
0: All right, very nice sir, very nice. मतलब मुझे लगता है कि आज के जमाने में इस चीज पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे।
1: Yes.
0: है ना, तो थोड़ा सा समय के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। बहुत अच्छा था ये सफरनामा मुझे जो आपके साथ करने को मिला आज, एंड रैंडमली हम लोगों का कन्वर्सेशन हुआ और रैंडमली हम लोग यहाँ पे आज शो भी कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड था, इट्स नॉट अ प्लान, बिकॉज ये कैसे हुआ आई डोंट नो, बस एक रैंडम शो था, एक आया एकदम से, हम लोगों ने इनको बुलाया, ये भी हाजिर हो गए। बहुत मजा आया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: कुछ कहना चाहोगे? तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं रेडियो पे।
1: मैं बस ये कहना चाहूंगा गाइज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों से बैर ना रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो

0: कब अपना पराया मतलब वो चला जाए,
1: एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि लाइफ में ना छोटी छोटी चीजें अगर हम इनको अपने दिमाग में और अपने जहन में रखेंगे तो शायद हम किसी के साथ ईर्ष्या में रह ही नहीं पाएंगे। यू नो पॉजिटिविटी मेंटेन रखिए, ऐसे मुस्कुराते हुए अपने बेहतरीन से सफर की शुरुआत के लिए ट्यूनिंग रखिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि स्माइलिंग, ऐसे ही स्माइल करते हुए आगे बढ़िए, बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो आनंद विद यू, और अभी मैं लूंगा आपसे जाने की इजाजत क्योंकि समय हमें और इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपसे और ढेर सारी बातचीत करें। लेकिन हाँ, अच्छे गाने आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जो आपको थोड़ा सा हैप्पी फील कराएंगे। तो बस ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, मिलेंगे जरा सी देर में। हाँ जी, मतलब कुछ और कॉन्वर्सेशन के साथ हम मिलेंगे आपको, बट इस वाले शो में नहीं, किसी और वाले शो में। हाँ जी, फिलहाल मैं कहना चाह रहा था, कुछ कहना चाह रहे हो तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ। ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, फॉलो कीजिए। और अभी के लिए मैं यहाँ से निकलता हूँ, सकता हूँ इस कॉन्वर्सेशन की कुछ कुछ क्लिप्स आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी डेफिनेटली देख सकते हैं। अभी के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कुछ अच्छे गाने, जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: जनपद मुरादाबाद वासियों से अनुरोध है कि अच्छी वे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं अपने बच्चे के विकास हेतु आज ही निकट के परिषदीय विद्यालय में जाकर निःशुल्क प्रवेश कराएं। याद रहे, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की संपूर्ण शिक्षा फ्री पाएं और सभी सरकारी सुविधाएं जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, 1200 रुपए की DBT की धनराशि आदि का लाभ उठाएं। स्कूल चलो अभियान, बेसिक शिक्षा विभाग मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट, विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
6: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
5: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए, ekcc.nabard.org।
6: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
5: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
6: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन,
5: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
6: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
5: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
6: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
5: EKCC, साख से समृद्धि।
6: नियम और शर्तें लागू।

नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग, ओनली ऑन 89.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम मुरादाबाद पे, आपका अपना ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो आज तो थोड़ा मौसम हो गया है बढ़िया, सुबह से रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम चली रही है और इस समय भी गाड़ी में आराम से एसी चला के जो आप चल रहे हो ना, बाहर के मौसम का थोड़ा सा आनंद लो, हवा का थोड़ा सा और मज़ा लो, शीशे नीचे करो, इधर उधर देखो, थोड़ी सी लाइटें तो पड़ेंगी दोस्त, मगर हाँ ये जो ताज़ी ताज़ी हवा है ना, इसका कुछ मज़ा ही अलग है। जब लगे पसीना आ जाए और हल्का सा कहते हैं कि इधर उधर बूंदे टपक जाएं आपके आसपास, तो वापस शीशे चढ़ा लेना, फिर से एसी ऑन कर लेना। और हाँ, हर रात की तरह इस बार भी हम लेके आए हैं कुछ दिल की बातें, कुछ ऐसी बातें जो आपको अंदर से ही कह देगी अरे आज तो कर ही लो यार, कुछ तो बोल ही दो। मगर आज का जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा अलग है, वो दिल की बातें निकालेगा ही, मगर आपकी जेब से भी जो जुड़ी हुई कुछ बातें ना, वो भी निकालेगा। और हम बात करेंगे यार डिजिटल मनी, UPI और ऑनलाइन पेमेंट की, कि कैसे एक क्लिक में सारी पेमेंट हो जाती है और क्या ये क्लिक जो है वो सेफ होता है। अपना अपना एक्सपीरियंस बताना, मैसेज करें 9837896896 पे, या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पे, और बताइए क्या कभी गलती से कोई ऐसी UPI पेमेंट हो गई या ऐसा कुछ जेब से निकल गया जो हमेशा मुस्कुराता है, याद आता है, जब भी आता है तो एक हल्की सी मुस्कुराहट जो है चेहरे पे आ जाती है। चलिए तब तक करते हैं इस गाने को एंजॉय इस बरसात में, और मिलते हैं इस गाने के बाद 9837896896। अगर नंबर बिजी जाए तो फ़ोन काटना नहीं है, दोबारा भी लगाना है।

0: से बात कर रहे हैं ये भी बताएं सर।
1: जिला रामपुर तहसील सुवार से जावेद अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: तो जावेद अंसारी जी, बाकी सब सही चल रहा है आसपास?
1: बिल्कुल सब बढ़िया है सर। अब जब से मौसम बदला है, चेंज हुआ सर, बहुत सुकून हुआ सर, गर्मी बहुत पड़ रही थी।
0: हाँ ये तो है, गर्मी तो पड़ ही रही थी सच में,
1: लेकिन अब बरसात का मजा ले रहा है, अच्छी हो रही है बारिश, मौसम भी ठंडा हो गया।
0: तो आज जो है अंसारी साहब, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिजिटल मनी के लेन देन में। कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कभी आप किसी और को पेटीएम कर रहे थे या किसी और को हो गया?
1: नहीं सर, ऐसा तो अभी हुआ नहीं है हमारे साथ में।
0: और कभी कोई इससे रिलेटेड कोई ऐसी बात, कैसा सही लगता है आपको ये डिजिटल मनी?
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया है सर, ये
0: आपके हिसाब से बढ़िया है?
1: जी जी बहुत बढ़िया है ये,
0: और हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं।
1: जी जी
0: चलिए साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कोई जो है, कहते हैं ना कभी कोई मेमोरी होती है, कोई कोई शायरी आप हमें बताएंगे, कुछ सुनाएंगे शायरी इस मौसम में?
1: सर शायरी तो आती नहीं है।
0: शायरी नहीं आती है?
1: जी
0: चलिए तो फिर आप अपने गाने की फरमाइश ही बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है गोपी किशन, गाने के बोल है छतरी ना खोल बरसात में, भीग जाने दे आधी रात में।
0: यार ये तो गाने के बोल तो ऐसे हैं, मगर वैसे हमें छतरी की जरूर जरूरत पड़ती है बरसात में।
1: जी तो छाता के तो सर इस टाइम बरसात का मौसम है, छाता होना चाहिए साथ में।
0: कभी कभी तो आपका ही मन करा होगा कि छाता नहीं चाहिए मुझे बरसात में, अगर छाता हाथ में भी है तो सोचते होंगे चलो आज भीग जाते हैं।
1: जी क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है मौसम के, नहाने का मन करता है तो सोचता आदमी चलो अब नहा ही लो, बरसात तो हो ही रही है, फिर गर्मी भी होती है।
0: उसके
1: और बारिश में तो नहाना भी जरूर चाहिए 2 दिन बाद बरसात के,
0: और उसके बाद अगर 2-3 छींके आ जाएं तो बस हो गया भैया, आज का इंतजाम हो गया, गोली खानी पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ेगी।
1: दवाई लेनी पड़ेगी, फिर वो काढ़ा पीना पड़ेगा, अदरक वाली जो है तेज पत्ती की चाय पीना पड़ेगी।
0: ये बात तो हमने सही कह दी, इस समय तो चाय जो पी रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि भैया थोड़ी सी बूंदे टपक जाए तो साथ में पकौड़ी और मंगवा लें।
1: जी जी जी, ये मौसम ऐसा होता है, इसमें काम मिलना तो होता नहीं है, तो जीप जो है ना चटाके मारती है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, जीप तो चटाके मांगती है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके अंसारी साहब, और ऐसे ही खुशमिना आप रहें और खूब हमें।
1: धन्यवाद
0: साहब, चलिए साहब, ओके सर। तो ये थे अंसारी साहब जो कह रहे हैं कि मौसम जब भी ऐसा हो जाता है तो आपकी जीप जो है चटकारे मारती है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, जीप तो चटकारे मारेगी, तो उसका इंतजाम करिए, और कहीं भी साइड में रोक के अगर हाईवे किनारे निकल रहे हैं तो कोई ना कोई तो ढाबा आपको मिलेगा ही, जहाँ पर रुक के एक बार एक प्लेट जो है ना मिक्स पकौड़ा का आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मौसम बढ़िया है और इसको लेते हैं मज़ा, और सर की सुनते हैं इस फरमाइश को।

0: वेलकम बैक है जी 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। ये जो हैजी वाला स्टाइल है ना, ये हमने आरजे रीना से सीखा है। वो हमेशा कहते हैं गुड इवनिंग है जी, तो हमने कहा हाँ जी वेलकम बैक है जी। और कहते हैं ना, जैसे बरसात का मौसम है, जब बरसात का मौसम चल रहा है तो गाने भी बरसात वाले ही चल रहे हैं। तो हमारे लिसनर्स बहुत ही एक्टिव हैं, वो जब भी कोई फरमाइश रखते हैं या कोई भी अपनी दिल की बात रखते हैं तो ज़रूर उस मौसम का भी ध्यान रखते हैं कि हाँ जी क्या बात करनी है। नहीं तो हमारे लिए हमारे एक लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए करते हैं उनसे कुछ बात, पूछते हैं डिजिटल मनी के उनकी राय। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: हेलो भैया जी, नमस्कार। मैं ठीक हूँ भैया जी, आप कैसे हो?
0: मैं बढ़िया हूँ, और आप क्या कर रहे हैं इस समय?
1: भैया हमने खाना बना लिया है और आपका शो सुनने आप खाना खाने की तैयारी करेंगे। आ जाइए, आप भी खा लीजिए भैया जी खाना।
0: तो ये काम तो सही है, आप तो दो दो काम एक साथ कर रहे हो, गाने भी एंजॉय कर रहे हो, खाना भी खाने वाले वो भी एंजॉय करोगे अब।
1: बिल्कुल भैया जी, इसके वजह तो हमारा काम नहीं चलता। एक बार हम टीवी ऑफ कर सकते हैं, हमारा FM ऑफ नहीं करते हम भैया जी।
0: चलिए सही है, आप अपना हमारे सारे श्रोताओं को अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं ये भी बताइए।
1: बहुत पुरानी लिसनर हूँ, मेरा नाम ललिता कश्यप है, नवीन नगर मुरादाबाद से बोल रही हूँ भैया जी।
0: आप नवीन नगर मुरादाबाद से बोल रही हैं
1: जी भैया जी?
0: तो सही है, बरसात में कहाँ वहाँ पे पानी वानी सब सही चल रहा है, बह रहा है सही से?
1: भैया जी घर से बाहर से निकले नहीं।
0: घर से बाहर नहीं निकले आप?
1: वैसे पानी तो अच्छा है भैया जी, थोड़ी गर्मी से तो राहत मिली है।
0: थोड़ा सा तो बाहर निकलना बनता है, जब बरसात हो जाती है ना तो आसपास मौसम अच्छा हो जाता है कि चलो जी थोड़ा सा तो घूम के आए।
1: भैया पर गंदगी बहुत हो जाती है, उससे डर लगता है।
0: हाँ ये बात भी है, मगर बच बच के छप छप करके, जैसे बचपन में छप छप करके निकलते थे तो वैसे ही करके निकलते।
1: बचपन की तो बात ये लगती है कि बारिश हुई नहीं कि चलो बाहर घूमने।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आज जो हम बात कर रहे हैं ना ललिता जी, वो कर रहे हैं डिजिटल मनी के ऊपर, कि कभी कैसा कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप पेटीएम से किसी को कर रहे थे अमाउंट और किसी और के पास पहुंच गया, या कभी फायदा भी हुआ हो ऐसा कि मेरे पास कैश नहीं था और मैंने फटाफट ऑनलाइन करके वो सामान ले लिया?
1: नहीं भैया जी ऐसा कभी नहीं हुआ।
0: चलिए तो कभी
1: मैं फोन बहुत कम यूज करती हूं भैया जी।
0: ये काम तो बहुत अच्छा,
1: FM का मुझे बहुत शौक है, एक मैसेज अपने FM के लिए जरूर करती हूं।
0: ये तो है, आपके मैसेजेस तो हम पे आते रहते हैं नो डाउट। हमारे जो रेगुलर मैसेज लिसनर्स वाले हैं वो उनमें आपका नाम सबसे ऊपर है।
1: थैंक यू भैया जी, तो पूरे 2 साल हो चुके हैं।
0: चलिए तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आज क्या सुनना चाहेंगे, अभी फरमाइश हुई?
1: भैया एक गाना है सलमान खान जी का है।
0: अच्छा
1: सर, कभी तू छलिया लगता है।
0: अच्छा
1: हमारे हस्बैंड जी को पसंद है, आज उनके लिए सुनना चाहते हैं।
0: आज उनके लिए सुनना चाहते हैं, तो आज हस्बैंड जी जो हैं परफॉर्म भी करेंगे नहीं करेंगे उस पे?
1: करा लेंगे भैया जी।
0: हस्बैंड साहब भी कह रहे होंगे भाई साहब गाना मेरी पसंद का और डांस ही मुझसे ही करवाया जा रहा है।
1: बिल्कुल भैया जी, घर में थोड़ा हंस बोल के ही रहना चाहिए।
0: तो मतलब उन्हें बोलने का मौका मिल जाता है?
1: बिल्कुल भैया जी, बोल तो बोलने में तो मैं हूँ भैया जी, मैं ही बोल देता तेरी पटर पटर। वो कम बोलते हैं।
0: तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दीजिए, थोड़ा सा सीख जाएंगे वो भी।
1: वो बस इतना बोलते हैं कि उन्हें अपना काम जरूरत पड़ती है बस, खाना क्या बना है वो खाना ला दो बस।
0: आप ये भी कह सकती हो कि उससे ज्यादा हम सुनते ही नहीं है उनकी।
1: नहीं भाई देखो, अगर उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा भैया जी, भाई ये तो वही है।
0: चलिए साहब, ऐसी ही आपकी पॉकेट मनी आपको मिलती रहे और ऐसी ही खूब मस्ती भरी चलती रहे, और कभी कभी बरसात के मौसम में भी आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखें कि कैसा चल रहा है।
1: उन्हें बहुत पसंद है बारिश तो भैया जी।
0: चलिए
1: तो
0: नमस्कार जी। तो ये थी हमारे साथ ललिता कश्यप जी, जो नवीन नगर मुरादाबाद से जुड़ी थी, और कितनी देख रहे हैं आप चटपटी बातें करी उन्होंने, कितनी दिल से निकली हुई बातें करी कि बचपन में तो वो भी जब भी ऐसे बारिश हो जाती थी तो मौका नहीं छोड़ती थी छमछम करने का, और आज भी उन्होंने जो गाना पसंद किया है वो भी वही गाना है कि अगर सुन लो एक बार तो खुद ही गुनगुनाने लगते हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी पसंद का गाना।

0: सजाना तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।

0: वेलकम बैक है 89.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और जी हाँ, अभी जो बातें चल रही थी डिजिटल मनी के ऊपर, कई लोग जो हैं अभी भी यूज़ करते हैं। जैसे उतरे भाई साहब, कोई एक सामान लेना हो या पानी की बोतल लेनी हो तो सिंपल है, कहीं भी भीग रहे हो मोबाइल को अपना बचा के रखो और उसी से ऑनलाइन पेमेंट कर दो। पॉकेट में कैश हो या ना हो, फ़ोन में UPI है तो टेंशन नहीं। ये बात हमेशा अपने पास ना आती रहती है दिमाग में कि यार चलो जब मोबाइल है तो टेंशन किस बात की है, वरना अगर कहीं नोट वोट भीग जाए तो कहते हैं ना सामने वाला तो भाई लेने से मना कर देता है। हमारे पास रोहित जी का मैसेज आया है सिविल लाइन से, कहते हैं मैं तो अपने सब्जी वाले को भी UPI करता हूँ। हाँ साहब, अब तो सब्जी वाले भी UPI डिजिटल हो गए हैं एकदम, जहाँ हों एकदम बारकोड लगा होता है उनके खीरे टमाटरों के सामने, एक बारकोड लगा हुआ है भाई साहब, जब लेने हैं तो इसी पे कर देना, मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है। एक शायरी हमारे पास आई है, मासूम जी ने शायरी लिखी है, अब पता नहीं वो कितने मासूम हैं मगर शायरी तो लग रही है थोड़ी सी मासूमियत होगी। सफ़र आसान हो गया है टेक्नोलॉजी के साथ, बस भरोसा किसी अनजान लिंक पर मत करना, पैसे कमाना मुश्किल होता है और खोना एक सेकंड का काम। क्या बात है साहब, ये तो आपने टेक्नोलॉजी वाली शायरी एकदम मासूम जी बहुत ही मासूमियत से भेजी है, मुझे लगता है आपने BTech सही से कर रखा है एकदम। और हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं, चलिए करते हैं उनसे कुछ गुफ्तगू। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
1: द्वार साहब मोहम्मद उस्मान।

0: साकी बोल रहा है की जारत के पीछे नाले के पास।
1: अब ये उस्मान जी हम पहचान गए, जैसे आपने लास्ट वाली लाइन बोली ना, हम उससे पहचान गए कि हमारे पास उस्मान जी का पहले भी हमारे एक्टिव कॉलर है। क्या कर रहे हैं उस्मान जी आप?
0: आपको शेर सुना देता हूँ।
1: शेर सुनाइए साहब, शेर सुनाइए।
0: इसकी किताब में गुलाब उनका था।
1: क्या बात है।
0: रात की नींद में ख्वाब उनका था, कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था।
1: क्या बात है साहब, बहुत ही बढ़िया लिखा आपने। लास्ट में जो उन्होंने जवाब दिया आपको, तो वो जवाब तो बहुत बढ़िया था कि भाई साहब मर जाएंगे आपके बिना।
0: जी सर।
1: ये शायरी आपने बहुत अच्छी लिखी है, मतलब आपने ये खुद की लिखी हुई है या आपने कहीं किसी से सुनी सुनाई है? सही है सही है। तो कोई ऐसा किस्सा भी है जो डिजिटल मनी आपको, जैसे आजकल है ना अपना डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल मनी कहीं अगर आपके पास जेब में पैसे ना हो तो आप कर दो फटाफट मोबाइल से पेमेंट, ऐसा कोई वाक्य है कोई आप यूज करते हैं, या कोई कभी किसी और को पेमेंट कर दिया हो, करना हो किसी और को?
0: अगर ऐसा होता है तो हम मोबाइल से पैसे डलवाए थे दीदी के, आज अगर किसी जरूरत होती है कि भाई पैसे डाल दो इनके खाते में।
1: ये काम आप अच्छा करते हैं साहब। चलिए आज आपकी फरमाइश बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: खुदा गवाह का पिक्चर का गाना है, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल।
1: क्या बात है साहब, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल।
0: आप जिस वक्त प्रस्तुत करते हैं ना तो वो छोटा बहुत खुश रहते हैं आपसे।
1: हम जो गीत जब प्रस्तुत करते हैं, जरीना मैडम नहीं है वो, रीना मैडम है हमारी, आरजे रीना जी, आपने उन्हें जरीना बना दिया है। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ कहूंगा उनसे कि साहब आपका भी नया नाम आ गया है जरीना, कल कहूंगा उनसे बात जब मिलूंगा।
0: बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं और एफएम डायरेक्टर साहब को भी मुबारकबाद हो।
1: धन्यवाद साहब, धन्यवाद, उनके पास तक आपका जरूर मैसेज पहुंचाऊंगा। और अभी आपको ये गाना आपकी फरमाइश का भी करते हैं, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ जनाब जुड़े हुए, और ज़ारत के पास और नाले के करीब से उन्होंने एड्रेस बताया। और ये जब भी ऐसी बातें बोलते हैं एकदम याद आ जाता है कि ये हमारे जो लिसनर हैं, हमारे पुराने लिसनर हैं, और बहुत ही शायरी, गजब की शायरी उन्होंने आज हमें सुनाई। सबको उसको कहते हैं ना कि एक बार गुफ्तगू की उस शायरी की, तो बहुत ही अच्छी शायरी थी। और आप ऐसी ही शायरी करते रहें और हमें सुनाते रहें, हमारे सारे बाकी जितने भी लिसनर्स हैं उन्हें भी अच्छी अच्छी शायरी सुनने का एक बार मौका मिले। तो चलिए अभी तो इस मौसम में आपको आपकी पसंद का गाना सुनाते हैं।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज़ एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। एक तरीके से कहा जाए तो आपका अपना ही रेडियो स्टेशन है। कम से कम अपने दिल की बात बहुत आसानी से आप पहुंचा सकते हैं 9837896896 पे। हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़े हैं, चलिए उनसे बात करते हैं, वो क्या बात हमसे कहना चाहते हैं। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप? और आपके पीछे जो ये एफएम बज रहा है उसकी आवाज़ थोड़ी हल्की कर लीजिए, वरना वो ही गूंजता रहेगा, आपकी आवाज़ हमारे पास तक नहीं आएगी।
1: सर, उसकी आवाज़ फोन पे आ रही है।
0: फोन पे आ रही है तो फोन पे उसे बंद कर लीजिए। हाँ, अब आई ना आपकी आवाज़। अब बताइए अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए हमें।
1: जी सर, मेरा नाम मनोज सिंह है, मैं मुरादाबाद से बोल रहे हूँ। सर,
0: तो मुरादाबाद से बोल रहे हैं, तो आप ये बताइए, आज हमारा शो सुन रहे हैं तो आपको पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं?
1: जी सर, वो तो सुन रहे हैं, लेकिन हम ड्यूटी से आ रहे हैं, अभी सुना है तो सर, अभी आपके पास फोन लगाना शुरू किया आपके।
0: तो आपने अभी अभी सुना है हमें?
1: जी सर।
0: तो चलिए साहब, हम आपको एक बार बता दें, आज जो हम बात कर रहे हैं दिल से दिल तक, वो ये बात कर रहे हैं कि आप अपने पास जो मोबाइल रखते हैं ना, और जो आप डिजिटल इंडिया जो सुनते होंगे कि डिजिटल इंडिया होता जा रहे हैं, हम सब, हमारा इंडिया जो है डिजिटल की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसमें एक होता है डिजिटल पेमेंट मोड। पेटीएम यूज़ करते होंगे या कोई भी और UPI ऐप जिसके थ्रू आप?
1: पेटीएम यूज़ करते थे, लेकिन इस समय मेरे पास कोई बड़ा फ़ोन नहीं, सब छोटे ही फ़ोन है।
0: छोटा फ़ोन है, तो कभी ऐसा कोई घटना हुई है कि आप पेटीएम किसी और को कर रहे थे, पहुंच किसी और के पास गया, या कोई एक ऐसा फ़ायदा जो लगा हो, कभी हाथ में पैसे ना हो कैश और कहीं करनी हो पेमेंट तो कर दिया हो आपने UPI फटाफट?
1: हाँ सर, ऐसा तो हुआ।
0: ऐसे हुए हैं आपके साथ? तो इसका मतलब अच्छा हुआ है आपके साथ, कोई अच्छे ही रूप में हुआ है सब कुछ। अगर एक दिन पेमेंट UPI बंद हो जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा? अगर आपके साथ सपोज करो एक दिन UPI बंद हो जाए आपका, तो क्या दिक्कत होगी? सबसे पहले ये बताओ, कोई फेवरेट चीज़ नहीं खरीद पाओगे या पहुंच ही नहीं पाओगे अपने ऑफिस तक?
1: नहीं सर, ऑफिस तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब कोई चीज़ है, जैसे आप घर से वापस आते हैं, बच्चों के लिए कुछ ले जाना हो तो उसके लिए दिक्कत पड़ता है, कैश ना हो जो कभी
0: तो ये तो सही है यार, इस बहाने कम से कम पैसा सेफ भी रहता है और जब जरूरत होती है तो आपको मिल जाता है। सही है, मगर इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी OTP हो किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा अगर कोई OTP आता है। चलिए, तो आज बताइए कि कौन से ये फरमाइश, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? ये बात तो है साहब, दोस्त इतना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में कि जब एक

0: कॉल मिलाओ, फटाफट हाजिर हो जाए और आपके कहने पे आपके पास आ जाए, तो दोस्ती की तो बात ही अलग होती है। किसे डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: हमारे दोस्त खास साहब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन सावन में जब भी सावन आने वाले होते हैं ना, लोग उसे याद करते रहते हैं।
0: चलिए तो साहब उस दोस्त को,
1: सावन में जैसे हरिद्वार ब्रजघाट जाते हैं ना, तो वो मेरे साथ ही गया था।
0: अच्छा, तो अपने दोस्त को हमेशा अपने दिल में ज़रूर ज़िंदा रखिएगा साहब, ठीक है ना मनोज जी? दोस्त जो होता है ना कभी जाता नहीं रहता, तो दोस्त हमेशा आपके पास रहता है, चाहे अगर आपसे दूर है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रहा है। तो कौन सा गाना आपने अब बताया था एक बार, ऐ मेरे दोस्त लौट के आ जा, तो ज़रूर मनोज जी प्ले करते हैं अभी आपके लिए, आपके दोस्त के लिए भी। तो ये थे मनोज जी जो हमारे साथ जुड़े थे और कह रहे हैं कि हाँ UPI का फ़ायदा तो होता है। अगर मैं ऑफिस से घर जा रहा होता हूँ और मुझे कुछ घर के लिए सामान लेना होता है या बच्चों के लिए कोई भी गिफ्ट लेना होता है, तो मैं फटाफट UPI के थ्रू उस चीज़ को पूरा कर लेता हूँ और अपना काम आसान कर लेता हूँ। और आज उन्होंने एक गाना अपने दोस्त के लिए भी डेडिकेट किया जिसकी उन्हें याद आ रही है और जो जिसके साथ उन्होंने बहुत वक्त गुजारा है। कभी भी हरिद्वार या गढ़ गए हैं तो अपने दूसरी दोस्त के साथ गए हैं, और आज वो दोस्त उनके साथ नहीं है मगर याद उसकी बराबर आती है इन्हें। तो हम यही कहेंगे कि दोस्त जो होते हैं ये बहुत कीमती चीज़ है, और आपके साथ दोस्त है यही अपने आपस में अपने में एक बहुत कीमती बात है। कहते हैं ना कि सब एक तरफ और दोस्त एक तरफ, तो सबका तो आपको पता चल गया कौन सब की बात कर रहा हूँ। तो उन सबसे भी भाई साहब आपको काम तो लेना ही है ना, मगर हाँ दोस्ती जो है अलग रहती है। जिसके साथ बैठ के आप गुनगुना रहे होते हैं, गाड़ी में चल रहे होते हैं, अगर बगल में बैठा होता है तो फिक्र नहीं होती है कि गिलास कहाँ गिर गया। वो इंतज़ाम कर ही देता है। तो चलिए दोस्त का भी एक गाना सुनते हैं, और उससे पहले हमारे पास मैसेजेस जो आए हुए हैं। रणवीर जी कहते हैं कि अखिल जी रात का समय है और गुड नाइट कहने का बात आ गई है, और हम सोचें आपको गुड नाइट बोल दें सितारों की पनाह में। क्या बात है रणवीर सिंह जी, आप मुरादाबाद से हैं और बहुत अच्छी अच्छी मैसेज और शायरी जो हैं करते रहते हैं और FM से जुड़े हुए हैं। ये तो कहते हैं ना, ये भी हमारे बहुत उन लिसनर्स में से हैं जिनके मैसेजेस हमारे पास आते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमें रणवीर सिंह जी, आपको भी बहुत बढ़िया वाली गुड नाइट, मौसम भी अच्छा ही हो रहा है इस समय। तो चलिए अपने दोस्त को सुनाते हैं ये गाना, और आपको भी कोई गाना अगर ऐसा सुनाना हो या कुछ कहना हो दिल की बात आज के टॉपिक के साथ, तो ज़रूर हमें मैसेज करें या फिर हमें कॉल करें 9837896896 पे।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज एफएम मुरादाबाद और आपका अपना रेडियो स्टेशन। तो हमारे साथ अभी चलने से पहले हमारे एक लिसनर हैं जो हमसे कनेक्ट हुए हैं और सुनते हैं उनकी ही बात दिल से दिल तक अखिल के संग। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: हेलो मुरादाबाद, नमस्कार अखिल भैया जी को।
0: क्या कर रहे हैं आप
1: जी? सर इस टाइम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठंड का मौसम का मजा ले रहे हैं, बारिश होकर निकली है और ठंडा मौसम हो रहा है।
0: अच्छा, ये अच्छा हुआ आपने बात क्लियर कर दी कि ठंड के मौसम का जो है मज़ा ले रहे हैं। अभी ठंड जो है चालू नहीं हुई, अभी तो आपको हल्की हल्की ठंडी ठंडी बस हवा मिल रही है।
1: फिर भी हमारा जंगल में मकान है, वहाँ ठंड का मौसम बढ़िया रहता है।
0: अरे साहब, जंगल के बीचों बीच में है क्या?
1: जी सर।
0: तो सही है साहब, आप भी हवा ले रहे हैं और आसपास के जितने भी जंगली जानवर हैं वो भी सब हवा ही ले रहे हैं इस समय।
1: आवाज़ें आ रही हैं सर यहाँ
0: है जी,
1: आवाज आ रही है जंगली जानवरों की, पेड़ पौधे बढ़िया हवा आप दे रहे हैं।
0: सही है। आप सर कॉर्बेट सवारी का मजा ले रहे हैं
1: जी सर।
0: तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप
1: जी? सर गाना मूवी का नाम है निकाह, गाने के बोल हैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए।
0: मतलब जंगल के बीचों बीच घर है और आप गाना भी ऐसा सुनेंगे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए
1: जी सर? पसंद ऐसा गाना आ रहा है तो मैंने आज इसी को।
0: नहीं, अच्छी बात है। आज आपको पता है हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे
1: जी सर? आज मोबाइल में जो पेटीएम के बारे में बात कर रहे थे आप, जो पेटीएम से पैसे डालते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो उसके बारे में आप बोल रहे हैं।
0: तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कुछ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
1: जी सर, हम तो पेटीएम के द्वारा कोई यूज करते ही नहीं है। ये तो अगर पैसा हमारी जेब में है तो बरकरार है, तो ज्यादा पैसा है तो पेटीएम करते रहेंगे तो जेब भी कम हो जाएगी फिर।
0: सही कह रहे सर, फायदे हैं तो नुकसान भी है, पैसा तो कम ही हो रहा है सर खर्च करने के बाद।
1: नुकसान ही कहते हैं, उसमें फायदा नहीं है। अगर पैसा है तो खत्म होता है काफी जल्दी।
0: सही है, तो है। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े।
1: जी सर, बहुत दिन में आपसे बात हो रही है हमारी आज।
0: तो कोई शायरी सुना दीजिए फिर आज, अगर इतने दिनों बाद आपको बात है।
1: जी सर अखिल भैया जी, शायरी का शौक नहीं है, मैं बस आपसे बात हो जाती यही बहुत बढ़िया है।
0: चलिए धन्यवाद साहब, आपने यही बात कह दी, बहुत बड़ी बात हमारे लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे रामधन जी और ये कह रहे हैं कि इनका जो घर है वो बिल्कुल जंगलों के बीच में है। तो साहब ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपको हवा भी एकदम एकदम ताज़ी ताज़ी फ्रेश हवा का आप आनंद ले रहे हैं। और हमारे पास हमारे एक लिसनर का और मैसेज आया है, शुभम जी हैं। शुभम जी कहते हैं कि मेरे पापा एक बार फेक कॉल में ऑलमोस्ट फंस गए थे। हाँ, तो शुभम जी बिल्कुल सही कहा आपने, बताइए बात कि फेक कॉल जो है ना ऐसी होती हैं कि आप पता नहीं कर पाते कि कहाँ

साझा करता हूँ। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर मैसेज बैंक का नहीं होता, थोड़ा सा वक्त लेकर सोचिए, हो सकता है वही एक मिनट लाखों बचा दे। क्या बात कही है दिलीप जी कटघर से। दिलीप जी आपने बहुत ही मतलब एक कहते हैं शायरी शायरी में असली बात बोल दी कि हर चमकती चीज़ जैसे सोना नहीं होती, वैसी हर मैसेज जो है बैंक का नहीं होता। हाँ जी साहब, क्रेडिट कार्ड वालों का भी होता है और किसी की कोई ईएमआई रह रही हो पेंडिंग, उसका भी मैसेज होता है। तो कहीं ना कहीं तो मैसेजेस आपके बदलते रहते हैं, होते हो पैसे से जुड़े हुए हैं, और कहीं कहीं लॉटरी के भी आजकल मैसेज आ जाते हैं कि भाई साहब आपकी लॉटरी निकल गई है। तो कोई लॉटरी नहीं निकली है साहब, आराम से उसे मैसेज को डिलीट करें और कह भाई साहब जिसकी लॉटरी निकली है वो खुश रहे। तो चलिए साहब सुनते हैं गाना निकाह मूवी से, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अपने अपने अरमां को हमें रोक के रखना पड़ेगा और आंसुओं को बहने से रोकना पड़ेगा, मगर ये गाना सुनते हैं, इसकी बात ही कुछ और है।

तो चलिए दोस्तों, इसी गाने के साथ हम लेते हैं विदाई, और कल फिर मिलेंगे हम आपको 9 बजे से लेके 10 बजे तक आपके अपने FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे करेंगे दिल से दिल की बात। कहते हैं जब जब बात दिल से निकलती है ना तो बहुत दूर तक जाती है। इस शायरी के साथ इस सफ़र को आज हम बाय बाय करेंगे। ना नोट से मोहब्बत रखो ना फ़ोन से ज़्यादा लगाव, बस मेहनत की कमाई की इज्जत करो और हर ट्रांजेक्शन में रखो थोड़ा सा सोच विचार की परवाह। तो कोशिश तो पूरी शायरी जैसे ही बनाने की थी, मगर मैसेज तो आप लोगों के पास पहुंच ही गया होगा। रिश्तों की वैल्यू कभी ऑनलाइन नहीं होती और प्यार का पेमेंट QR कोड से नहीं होता, इसलिए वक्त अपनों को भी दीजिए क्योंकि असली दौलत वही होती है। तो जब असली दौलत पकड़नी है तो साहब अपनों के पास तो रहना पड़ेगा। तो मैं हूँ आपका दोस्त अखिल, और आपसे फिर मुलाकात होगी कल रात ठीक 9 बजे दिल से दिल तक अखिल संग में। तब तक के लिए डिजिटल रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। गुड नाइट मुरादाबाद।

0: जनपद मुरादाबाद वासियों से अनुरोध है कि अच्छी वे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं अपने बच्चे के विकास हेतु आज ही निकट के परिषदीय विद्यालय में जाकर निःशुल्क प्रवेश कराएं। याद रहे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की संपूर्ण शिक्षा फ्री पाएं और सभी सरकारी सुविधाएं जैसे निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, 1200 रुपए की DBT की धनराशि आदि का लाभ उठाएं। स्कूल चलो अभियान, बेसिक शिक्षा विभाग, मुरादाबाद।
1: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
2: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
0: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC, साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम

0: चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना,
1: एक चतुर नारक

जनपद मुरादाबाद वासियों से अनुरोध है कि अच्छी वे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं अपने बच्चे के विकास हेतु आज ही निकट के प्रसिद्ध विद्यालय में जाकर निःशुल्क प्रवेश कराएं। याद रहे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की संपूर्ण शिक्षा फ्री पाएं और सभी सरकारी सुविधाएं जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, 1200 रूपए की DBT की धनराशि आदि का लाभ उठाएं। स्कूल चलो अभियान, बेसिक शिक्षा विभाग, मुरादाबाद।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।